मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की तिथि 20, तदनुसार 10 जून सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:49 होने को हैं। आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है प्रातःकालीन दैनिक प्रसारण चिंतन।
1: अपन देश भारत प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली वाला राष्ट्र थिक। प्रजातंत्रक अर्थ होइ प्रजा वा जनताक शासन, एहन शासन जाहि में सब व्यक्ति के आत्मोत्थानक अवसर भेटे छन, एहन शासन जाहि में प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र निर्माणक महत्वपूर्ण घटकक रूप में अपन योगदान दै, अपन उत्तरदायित्व बुझे। ई स्थिति तो तखने आनल जा सके जखन कि स्थानीय स्वशासन के सुदृढ़ कैल जाए। भारतक 60 करोड़ से बेसी लोग गाम में निवास करे छथि। ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत प्रशासन आ प्रगतिक आरंभिक इकाई थिक। जो ग्राम पंचायत के एहि योग्य नहीं बनाओल जाए, जैसा कि ओ ग्रामवासिक आर्थिक आ सामाजिक उन्नति के उपाय कर सके, तो ग्राम पंचायतक अर्थे की? संप्रति तो नाम ले ग्राम पंचायत अछि पंगु निस्सहाय बनल अछि। एखन ग्रामीण जनता अपन उत्थानक लेल नौकरशाहीक कृपाकांक्षी बनल अछि, जे नौकरशाही एक सीमा तक सामान्य जनक प्रति उदासीन आ अनुत्तरदायी अछि। परिणाम ई अछि जे विकासक लाभ ग्रामीण स्तर तक पहुँचैत पहुँचैत किछु बाटे में बिला जाय छै। यत्किंचित जे पहुँचबो करै छै तकर सदुपयोग नहि भऽ पबै छै, आ तैं ग्रामीण स्थिति एखनो अभाव आ दन्य सँ भरल अछि। वर्तमान में स्थिति ई अछि जे ग्रामीण सामान्य जन के इहो नहि बुझल छनि जे प्रजातांत्रिक राष्ट्रक नागरिक हेबाक नाते हुनक की अधिकार छनि आ हुनका कोन कोन दायित्वक निर्वाह करक चाही। दोख हुनकर नहीं छन, हुनका आइ पर्यंत एहन अवसरे नहीं भेटलन जे ओ अपना दायित्व के बुझती आ ओकर निर्वाह करती। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहल करती जे बिना ग्राम पंचायत के मजबूत बनौने भारतीय प्रजातंत्र सफल नहीं भ सके। राष्ट्र निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहब छलन, बिना ग्राम पंचायत के सुदृढ़ केने विकास कार्य अपूर्ण रहत। ग्रामीण दशा में सुधार तो ग्रामवासी केने हेतन। ऊपर से जो क्यों चाहे जे बिना ग्रामवासी के सहयोगे हम ग्रामीण स्थिति में सुधार कर देव, तो एकरा अरण्य रोदने बुझल जाए, इस संभव कदापि नहीं अछि। आई से 30 वर्ष पहिने 2 अक्टूबर 1959 में महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर राजस्थान में नागौर नामक स्थान में ग्राम पंचायतक उद्घाटन करैत पंडित नेहरू बाजल रहे थे, लाखक लाख गाम के सुधारक बड़ गुरुतर काज अछि, एहि दिशा में प्रगति मंद अछि, जकर कारण ई अछि जे विकासक लेल भारतवासी सरकारी तंत्र पर निर्भर छथि, ई नहि हेबाक चाही। अधिकारी वर्गक यद्यपि प्रयोजन अवश्य छै कारण जे ओ विशेषज्ञ अछि, किंतु ग्रामवासी के योगदान तो अनिवार्य अछि। जावत ग्रामवासी के उत्तरदायित्व नहीं देल जतैन, तावत गामक वास्तविक कायाकल्प नहीं भ सकै छ। उत्तरदायित्वक ई अर्थ नै जे गौआ घरुआक मात्र परामर्श सँ काज कयल जाय, एकर ई अर्थ भेल जे विकास कार्यक अधिकार ग्रामीण जनता के देल जाय। पंडित नेहरू के स्पष्ट संकेत छलैन जे सत्ता केंद्रीकरण नहीं हो, सत्ता विकेंद्रित भ कऽ ग्रामवासी लोकनिक हाथ में आबैन, ओ अपन उत्तरदायित्व बुझथि। हुनका लोकन के बुझवा योग्य होइन जे ओ भारतक नागरिक छथि, हुनका स्वावलंबी बनबाक छैन आ ग्रामीण कायाकल्प करबाक गुरुतर भार हुनके कान पर छैन। ग्राम पंचायत व्यवस्था के सुदृढ़ केने एहि स्थिति के प्राप्त कयल जा सकै छ। गाम विकसित हैत तो भारत आर्थिक आ सामाजिक दृष्टिये सबल बनत, दोसर कोनो विकल्प नहीं अछि।
0: चिंतन, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये प्रातःकालीन दैनिक प्रसारण। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है कृषक श्रोताओं के लिए कार्यक्रम कृषि चर्चा। विषय है आम के फसल में कीट नियंत्रण, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं गोपी चंद्र झा।
2: श्रोता लोकन सुप्रभात, आज

कृषि चर्चा के संग उपस्थित छी हम गोपी चंद्र झा। आमक फसिल में लागे वाला प्रमुख कीट जेना मैंगो हॉपर, मिली बग और फल मक्खी के नियंत्रित करबाक लेल विभिन्न कीटनाशक, नीम आधारित तेल और यांत्रिक विधि के उपयोग कयल जाइत अछि। आमक फसिल में कीट नियंत्रणक लेल प्रमुख उत्पाद और

0: और यांत्रिक विधि के उपयोग कयल जाइत अछि। आमक फसिल में कीट नियंत्रणक लेल प्रमुख उत्पाद और विधि एहि प्रकार अछि। आमक हॉपर एहन आम कीट अछि जे मंजर और नव पातक रस चूसैत अछि। एकर नियंत्रणक लेल इमिडाक्लोप्रिड या थियामिनो का छिड़काव कयल जाइत। मिलीबग ई तना के सहारे चढ़ कर रस चूसैत अछि। एकरा रोकबाक लेल पेड़क तना पर ग्रीन बैंड बांधल जाइत अछि और डायमेथो एटक छिड़काव कयल जाइत। फल मक्खी ई पाकल आम में छेद कर अंडा देते। एकर नियंत्रणक लेल खेत में फेरोमोन ट्रैप लगाओल जाए। अनुशंसित कीटनाशक आ उत्पाद में आम के फूलक कीट से बचेबाक हेतु ब्यूवेरिया बेसियाना जेहन जैविक कीटनाशक पर्यावरणक लेल सुरक्षित होते। विस्तृत पोषक तत्व और फसिल संरक्षणक लेल आम फसिल कीट उत्पाद के उपयोग कयल जाइत अछि। यांत्रिक और जैविक विधि में झाड़ी के सफाई, खेत में खौर पात और सूखल टहनी के जलाकर नष्ट कर दी, गाछक धुलाई, सर्दी के मास में तना पर अलकतरा या ग्रीसक पट्टी लगेने मीठी बग के रोके में सहायता करैत अछि। लाइट ट्रैप राति में खेतक लग लाइट जला कर राखला से बहुत रास हानि कारक पतंग और कीट आकर्षित भ कर नष्ट भ जाए। आमक गाछ में कीड़ा के दवाई के रूप ब्यूवेरिया बेसियाना जेहन जैविक कीटनाशक उपयोग करी जे पर्यावरणक लेल सुरक्षित होते। आमक गाछ के कीट से बचावे में सहायता करैत अछि। संगे संग आम वृक्षक छेदक जे होया ओ शिशु निम्फ और वयस्क दोनों कोमल शाखा और पुष्प गुच्छ का रस चूसैत अछि, जैसे फूल का कली का मुरझेने और झरने आ शाखा और पात का सूखने और मुरझेने होइत अछि। संक्रमित गाछक फूलक डंठल और पात चिपचिपा भ जाइए, किया तो हॉपर्स जे या ओ अहाँका कीट द्वारा जे श्रावित मधुरस अछि ओ जमा भ जाइए, जैसे काले अहाँका कारी कालिक जेहन फफूंद के वृद्धि होइए। तो गैर पुष्पित मौसम में हॉपर्स छाल के दरार और खाँच में छिप कर रहिए। तब पेड़ का अहाँका गाछ का जे लॉग नहीं जबाके चाही, किया तो बेसी घना बगान में संक्रमणक बेसी खतरा होइए। बाग का साफ सुथरा रखबा के चाही, एहिके लेल हल चलेने और खर पात हटेने आवश्यक अछि। घनी छाया वाला जे शाखा अछि ओकरा छटाई करैत रहबाक चाही, ताकि हवा और रौद आसानी से पहुंच जाए और बेसी मात्रा में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के प्रयोग से बची। रासायनिक नियंत्रण डायमेथोएट 30 ईसी या मोनो क्रोटोफॉस 36 SL का 2.5 से लेकर 3.3 लीटर मात्रा, मिथिल डिमेटॉन 25 ईसी या मेलाथियॉन 50 ईसी का 1.5 से 2.0 लीटर मात्रा का 1500 से 2000 लीटर जल में प्रति हेक्टेयर मिलाकर छिड़काव करवा। एसी पेट 75 SP एट 1 ग्राम प्रति लीटर, फोसालोन 35 ईसी एट 1.5 मिली प्रति लीटर या नव अनुजेन प्रोफेजिन 25 SC एट 1.2 मिली लीटर जल, इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL से एट 2.4 मिली प्रति वृक्ष या लैम्बडा साइहलोथ्रिन 5 ईसी एट 0.5 से 1.0 मिली प्रति लीटर जल का 10 से 15 लीटर जल प्रति वृक्ष के अनुसार छिड़काव करवा। जैविक नियंत्रण में कोटो कीटनाशक में नीम का तेल 5 मिली प्रति लीटर जल मिलाकर छिड़काव कयल जाए। 3% नीमक तेल या 5% नीम बिया का गिरी का चूर्ण घोल का छिड़काव करी। आ क्षति का लक्षण जेना गुबरेला गाछ का शाखा का मुख्य तना के छाल में सुरंग बनाकर भोजन करिए, तो हमला का आरंभिक चरण में पात झड़ लागी है और शीर्ष का शाखा सूख जाइए। जो मुख्य तना का नुकसान पहुंचते तो पूरा गाछ मर जाइए। तो एक नियंत्रण के उपाय कि नीलम और हुमायुद्दीन जैन सहनशील आम का किस्म लगावी। गाछ का जो मरल गंभीर रूप से संक्रमित शाखा है जो काट कर नष्ट कर दी। छटाई करते समय तन का आधार पर चोट पहुंचावे से बची। मोरिंगा सहजन सिल्क कॉटन रुई जैन वैकल्पिक गाछ का आसपास हटा दी। आ गैर मौसमी अवधि में प्रत्येक गाछ के लिए 10 मिली मोनोक्रोटोफॉस 36 SL में भिगोल रुईया का फाहा तना पर बांधी। ध्यान रहा कि तना का अनावश्यक चोट नहीं पहुंचा। सुई या लंबी तार से बोर छिद्र से गुबरेल का निकाल दी। तो इस सब जो गप को ध्यान में रखब तो निश्चित रूप से आम का फसिल का कीट से नियंत्रण भेटत आ आम के उपजा निक जना है। अही के संगे कृषि चर्चा के समय संपन्न होते। गोपी चंद्र झा के आज्ञा दिया, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषक श्रोताओं के लिए हमारा कार्यक्रम कृषि चर्चा, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। प्रातः के 6 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज

0: भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से होर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा।
3: आज की स्वास्थ्य चर्चा में विषय है ब्रेन ट्यूमर लक्षण और इलाज। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एजाज आलम, जो जाने माने न्यूरोसर्जन हैं। डॉक्टर एजाज आलम साहब नमस्कार।
4: नमस्कार।
3: ये ब्रेन ट्यूमर है क्या?
4: ब्रेन ट्यूमर एबनॉर्मल टिश्यूज का एक कलेक्शन है, जो हमारी नॉर्मल कोशिकाएं होती हैं शरीर में, उसके बिना जो कुछ एबनॉर्मल कलेक्शन बन के गांठ जैसा बन जाता है, उसी को ब्रेन ट्यूमर कहते हैं आम भाषा में अगर हम बोले तो।
3: क्या ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकने वाली बीमारी है?
4: जी, शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। जब ये मस्तिष्क के अंदर होता है तो उसको हम लोग ब्रेन ट्यूमर कहते हैं।
3: इसके क्या कारण है?
4: इसका एग्जैक्ट कारण आज तक किसी को पता नहीं चला है। बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हेरिडिटरी, जिसको जेनेटिक भी कह सकते हैं, ऑक्यूपेशनल, जैसे केमिकल या रेडिएशन एक्सपोजर, जीन म्यूटेशन, प्लस जो आपका लाइफ स्टाइल है, अगर किसी को तंबाकू का सेवन है या अल्कोहल का सेवन है, ये सब चीज़ें एक रिस्क फैक्टर होती है जिससे ब्रेन ट्यूमर बढ़ जाता है।
3: क्या ब्रेन ट्यूमर जो है वो मस्तिष्क के अलग अलग भाग में जब ये बढ़ाव होता है गांठ का, तो क्या इसके लक्षण अलग अलग होते हैं?
4: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे ब्रेन का अलग अलग स्ट्रक्चर हमारे अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करता है। कुछ हिस्सा होता है जिससे हम बात करते हैं, कुछ हिस्सा होता है जिससे हमारा याददाश्त कंट्रोल होता है, हाथ पैर का अलग सेंटर है, देखने का अलग सेंटर है। तो जिस भी हिस्सा पे ब्रेन ट्यूमर अटैक करता है वहाँ का सिम्टम आता है। बट कुछ सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं, जैसे कि सर में दर्द होना, मिर्गी का दौरा आना, आँख की रोशनी में थोड़ी कमी आना, ये सब एक कॉमन सिम्टम होते हैं जो ब्रेन में ट्यूमर होने का एक संकेत देता है।
3: क्या लकवे वाले लक्षण भी आते हैं?
4: जी बिल्कुल, अगर ट्यूमर ऐसी जगह पे है जहाँ से हाथ पैर का पावर कंट्रोल होता है तो उससे हमारे पैरालिसिस या लकवा भी हो सकता है।
3: क्या बहुत दिनों तक रहने वाला जो सर दर्द है, क्या उसकी जड़ में ब्रेन ट्यूमर हो सकता है?
4: जी, बहुत सारे सर दर्द की बीमारी जो कई सालों से है, या फिर ऐसा सर दर्द जिसके साथ बहुत तेज दर्द, दर्द के साथ उल्टी, देखने में दिक्कत आता है, ये एक ब्रेन ट्यूमर का संकेत हो सकता है।
3: कौन से वैसे लक्षण हैं जिस पर आदमी को एकदम से सचेत हो जाना चाहिए?
4: मिर्गी का दौरा आना, अचानक से आँख की रोशनी का चला जाना, आवाज़ में लड़खड़ाहट आना, याददाश्त में कमी होना, या फिर खाने पीने निगलने में दिक्कत आना, ये सब चीज़ें हैं जो इंडिकेट करती हैं कि आपका जो ब्रेन का नर्व है वो सब इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसमें जल्दी सचेत हो जाना चाहिए।
3: आमतौर पर ब्रेन ट्यूमर के प्रकार कितने होते हैं?
4: दो प्रकार हम जो नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं, एक बिनाइन होते हैं जिसको हम लोग नॉन कैंसरस बोलते हैं, और एक मैलिग्नेंट जिसको आम भाषा में कैंसर भी बोलते हैं। ऐसे तो ब्रेन ट्यूमर बहुत तरह के होते हैं, 100 से ज़्यादा टाइप हैं, लेकिन आम भाषा में जानना ये ज़रूरी होता है कि ये बिना कैंसर वाला है या कैंसर वाला है।
3: बिना कैंसर वाला जो ब्रेन ट्यूमर है वो, और कैंसर वाला जो ब्रेन ट्यूमर है, क्या उनके लक्षण में भी फ़र्क होता है?
4: लक्षण में फ़र्क होता है, जो कैंसर वाला है उसमें जो लक्षण होता है वो बहुत तेज़ी से आते रहते हैं, बहुत एग्रेसिव ट्यूमर होता है, और जो बिना कैंसर वाला बिनाइन ट्यूमर जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत सालों से सर में दर्द होना, आँख की रोशनी कमजोर होना, तो उसमें जो सिम्टम का ड्यूरेशन होता है वो बहुत धीरे धीरे आता है, काफ़ी लंबा वक्त लेता है।
3: इसकी जाँच कैसे की जाती है?
4: इसकी जाँच, जैसे कोई मरीज़ हम लोगों के पास आता है तो उनसे बीमारी के लक्षण पूछने के बाद फिर हम लोग कुछ टेस्ट करते हैं मरीज़ के ऊपर कि हाथ पैर की ताकत कैसी है, आँख की रोशनी कैसी है, वो सब करने के बाद अगर हम लोग को डाउट होता है कि नहीं दिमाग में ट्यूमर के लक्षण सब आ रहे हैं, तो इमेजिंग मॉडलिटीज़ पर जाया जाता है, कॉमन आर, MRI, CT स्कैन, इन चीज़ों से पता चल जाता है कि दिमाग में गांठ है या नहीं है।
3: हर गांठ कैंसर नहीं होता है, लेकिन कैंसर हो भी सकता है।
4: जी, बहुत सारे ब्रेन ट्यूमर ऐसे होते हैं जो कैंसर नहीं होते हैं, और जिसका अच्छे से इलाज किया जाए तो वो परमानेंटली ठीक हो जाते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर का जो ये ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ये कैंसर हो गया अब इसका कोई इलाज नहीं है, ये गलत धारणा है।
3: इलाज के क्या तरीके हैं?
4: पहला इलाज होता है वो ऑपरेशन होता है। 90% से ज़्यादा ट्यूमर्स होते हैं जिनको ऑपरेशन करके निकालना होता है। कुछ 1-2% ट्यूमर ऐसे होते हैं जैसे पिट्यूटरी या फंक्शनल ट्यूमर जो दवा से भी काम करते हैं। ऑपरेशन के बाद अगर मैलिग्नेंसी आती है जैसे कैंसर आते हैं तो फिर रेडिएशन दिया जाता है, रेडियोथेरेपी, प्लस उसकी कुछ दवाइयां भी आती हैं जिनको कीमोथेरेपी वगैरह कहते हैं।
3: ब्रेन ट्यूमर को लेकर के अगर सर्जरी की सलाह दी जाती है तो आम लोगों में एक भय व्याप्त हो जाता है, आप क्या कहेंगे?
4: नहीं, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। अब आजकल न्यूरो सर्जरी बहुत एडवांस लेवल पर जा चुका है, अच्छी अच्छी मशीनें, माइक्रोस्कोप, इंडोस्कोप आ चुके हैं, सर्जरी आसान हो गई है, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, और चूंकि इसका इलाज ही ऑपरेशन है, अगर हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो वो ब्रेन ट्यूमर वक्त के साथ बढ़ेगा और फिर वो एक लाइलाज बीमारी हो जाती है। तो ऑपरेशन अगर कोई डॉक्टर सलाह देते हैं और ये बताते हैं कि ऑपरेशन से आपकी बीमारी ठीक होने के अच्छे चांसेस हैं, तो हमेशा ऑपरेशन के लिए जाना चाहिए। इसमें दवा का ज़्यादा

भजले सीताराम। ये भक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे अनुप जलोटा और साथियों के स्वर में। आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना।

0: सुरेश वाडेकर के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम वंदना अब समाप्त हुआ। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है रामचरितमानस गान। आज के प्रसंग में आप सुनेंगे अनुराधा पौडवाल को।
1: एपिसोड नंबर 403 403।

पुण्यात्मा काकभुषुंडी से श्री रामचरित मानस तथा ज्ञान और भक्ति की मीमांसा सुनकर गरुड़ कृतकृत्य हो गए। अब उनके इस आश्रम से विदा होने की घड़ी आ पहुंची थी, किंतु विदा होने से पहले वे अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर सुनना चाहते थे। ये 7 प्रश्न थे। सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा सुख क्या है? संत और असंत का भेद, सबसे महान पुण्य, सबसे भयंकर पाप और मानस रोग कौन से हैं? काकभुषुंडी ने उत्तर दिए, सबसे दुर्लभ मानव शरीर है और अभागे हैं वे जो इसे पाकर हरि भजन नहीं करते। सबसे बड़ा दुख है दरिद्रता। संत मिलन के समान अन्य सुख नहीं है। संत परोपकार करते हुए दुख स्वीकार कर लेते हैं और असंत दूसरों को दुख देने में सुख का अनुभव करते हैं। वेदों ने अहिंसा को परम धर्म अर्थात सबसे महान पुण्य बताया है और पर निंदा को घोर पाप। सभी प्रकार के मानस रोगों की जड़ है मोह अथवा अज्ञान, क्योंकि इसी से सभी रोगों की उत्पत्ति होती है।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। आज के प्रसंग में मुख्य स्वर अनुराधा पौडवाल का था। प्रसारण आकाशवाणी के

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें, आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। कार्यक्रम नमस्कार मिथिला आप सुनेंगे अब से कुछ देर बाद, यानी प्रातः 7:05 से। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण समय होगा 9:10 पर, जिसे हम अपने पटना केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे दिन में 10:00, 12:00, 1:15 पर और अपराह्न 2:30 पर। दिन में 10:30 पर आप सुनेंगे लोकगीतों का हमारा कार्यक्रम। दिन के 11:00 समय होगा शास्त्रीय संगीत का। कलाकार होंगे रोनू मजुमदार और किशन महाराज। महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार लेकर हम उपस्थित होंगे दिन में 12:30 पर। अपराह्न 3:00 आप सुनेंगे सुगम संगीत का हमारा कार्यक्रम। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

शाम 5 बजे दूसरी सभा के आरंभ में आप सुनेंगे युवाओं के लिए हमारा कार्यक्रम युववाणी। विद्यापति गीतों का समय होगा संध्या 6:10 पर। इसके तुरंत बाद संध्या 6:25 पर आप सुनेंगे मैथिली संवाद। सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम गांव घर, इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे घर आंगन। प्रसारण समय होगा संध्या 6:30 से। खेती गृहस्थी, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7 बजे। कुछ फिल्मी गाने हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:52 पर। इसके बाद रात 8:15 पर आप सुनेंगे हमारा मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार। चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 से, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 बजे समय होगा लोक गीतों के विशेष कार्यक्रम लोक माधुरी का। इसके बाद रात 10:30 से आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतों के रंग।

0: अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। इस समय सुबह के 6:55 होने को हैं। अब समाचार होंगे क्रमशः संस्कृत और हिंदी में।
1: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका ऋचा झा।

0: पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात और विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट पर 277 रन बनाए, जबकि जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। प्रस्तुत है प्रातःकालीन दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे।

0: नमस्कार मिथिला, नमस्कार मिथिला सुनिहार संस्त्रोतागन के आजुक अंक में हम प्रवीण हमरा संगे संगीता जी अपने सबके सस्नेह नमस्कार करै छी। आजुक दिन नीक हुए से आशा करै छी। संगीता जी अहाँ के स्वागत है।
1: नमस्कार, और प्रवीण जी आपको भी मेरा सप्रेम नमस्कार, सुधी श्रोताओं को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम के इस अंक में हम शामिल हैं इस सुविचार के साथ, और सुविचार है रहीम का। समय पाए फल होत है, समय पाए झड़ी जात, सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पछताए। यानी समय बहुत बलवान है प्रवीण जी, जैसे समय के साथ पत्ते पेड़ पे आते हैं और समय के साथ पत्ते झड़ भी जाते हैं, और दिन कभी एक समान नहीं होता है। कभी समय के साथ दिन बहुत अच्छा भी होता है और कभी समय के साथ दिन खराब भी होता है। इसलिए पछताना नहीं चाहिए और समय का इंतजार करना चाहिए।
0: सत्य कहल अपने, जीवन के अकाट्य सत्य है। या कोनो तरह सो विचार हमर सबके जीवन में एक नव प्रेरणा देते अछि। यदि गुड़ मंथन करै छी तो ओइसा हमरा सबके अवश्य जीवन में वो मंत्र भेटैत अछि, जे जीवन नदी के धारा होइत अछि, किनारा तो दोनों टकरेबे करत, ओ रुकै नै छै। जेना अहाँ कहलहुँ नीक या बेजाय, तो हमर ई जीवन के एक अंग छै। एकरा आत्मसात लऽ कऽ नदी के तरह आगत आगू बढ़ू, नहीं कि ठमक जाओ। क्या तो जीवन धारा में जे ठमक जाते है वही ठाम जीवन लीला समाप्त हो जाए छे।
1: जैसे कि पथिक अगर रास्ते पर चलना छोड़ दे तो रास्ता कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि रास्ते बने ही होते हैं पथिक के लिए।
0: सत्य
1: और पथिक कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी खाबड़, रास्तों को तय करता हुआ अंत में मंजिल को प्राप्त करता है। तो
0: सत्य
1: कहल समय बेहद बलवान है, और आज का समय है 9 जून। तो आज का समय क्यों है खास? आज का समय है 10 जून, और 10 जून दुनिया में क्यों है खास?
0: सत्य कहल जी अपने, आजो के दिन के 10 जून के 2026 आई, और 10 जून के जे पाछू छल ओकर किछ किछ अंश हम सब इतिहास के रूप में आने छी। तो ओकर इतिहास के अंत में अहाँ हम सब सुनब। ओइसे पहले हम सब से सुने छी एकटा मैथिली गीत।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: तो धन्यवाद, संदेश सुनी चलो और उससे पहले सुनो मैथिली गीत। निक लागल है हम लोग, निक लागल संगीता जी, हम चर्चा करने चलो हैं जे आजुक दिन के इतिहास के किस अंश कहब, तो आजुक दिन के इतिहास की कहित पर एक नजर।
4: और प्रवीण जी, आज है 10 जून, 10 जून का इतिहास क्यों है खास
3: जी,
4: इसे कार्यक्रम में साझा करते हैं। सबसे पहले आज का ये जो दिन है वो है विश्व और भारत के लिए नेत्रदान दिवस, जिसकी शुरुआत 1986 में आरंभ हुई। और हम जानते ही हैं कि नेत्रदान सबसे बड़ा दान माना जाता है। इस दिवस का यही उद्देश्य है कि नेत्रदान के प्रति लोगों को जागृत करना। साथ ही 1890 में भारत में रविवार को पहली बार अवकाश घोषित किया गया। हम जानते हैं प्रवीण जी कि अवकाश किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन में कितना खास महत्व रखता है। तो पहली बार जब ये अवकाश घोषित किया गया, उस दिन के बाद से सभी कार्यालयों और सभी जगह रविवार को अवकाश के रूप में मनाया जाने लगा और वह लोगों को बहुत बड़ी राहत का एक अवसर बना। 1975 में पहली बार विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत हुई, नागपुर में इसका सम्मेलन हुआ। 1966 में भारत सोवियत समझौते के तहत भारतीय वायुसेना के लिए मिग लड़ाकू विमानों का निर्माण प्रारंभ हुआ। 2008 में भारत सरकार ने तीनों सेनाओं के लिए एकीकृत स्पेस सेल स्थापित करने की घोषणा की। 2020 में मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया। 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने संदेशों के प्रसार के लिए हिंदी, बांग्ला, उर्दू, फारसी, पुर्तगाली और स्वाहिली सहित कई भाषाओं को मान्यता दी और 10 जून को विश्व भूगर्भ जल दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा और इसकी भी शुरुआत हुई। तो आज का ये जो दिन है वह देश और दुनिया के लिए बहुत खास है। और अब कार्यक्रम में समय हो चला है हाल चाल का, सुनते हैं प्रवीण कुमार से हाल चाल।
3: नमस्कार, हाल चाल संग हम प्रवीण कुमार। बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था के सुधारक लेल विद्यालय महाविद्यालय के समय कोचिंग सेंटर नहीं चलेबाक हेतु नव कानून आनि रहल अछि। विद्यालय महाविद्यालय समय कोचिंग नहीं चला एहि हेतु नव कानून के निर्णय लेबाक आदेश दऽ देलनि अछि। आब ई बहुत जल्दी लागू भऽ सकैत अछि। मुख्यमंत्री एहि बात पर कहला जे नव कानून व्यवस्था बिहार भरि में लागू होयत। निर्देश सख्त देल गेल अछि जे इसकुल महाविद्यालय सबके जे समय होइत अछि ओहि समय में कोनो तरहक कोचिंग सेंटर नहि चला बिहार भरि में। बिहार में आब नव फैक्ट्री 30 दिन के अंदर लाग सकैत अछि। एकर आवेदन 30 दिन के अंदर यदि नहि पास होयत तो ओ आवेदन स्वतः आवेदक के पास मानल जायत। यानी 30 दिन में यदि अहाँ आवेदन करै छी कोनो तरहक उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग या फैक्ट्री लगाबक लेल बिहार में, तो ओ आवेदन 30 दिन में पास भऽ जायत। जँ नहि पास होयत तऽ ओ

0: स्वतः ओ आदेश अहाँ के पास भ जायत, अहाँ फैक्ट्री लगा सकैत छी। ई जानकारी देल गेल अछि। अवध आ मिथिला के जोड़बाक हेतु नव पहल में एकटा नव पहल रेलवे कऽ रहल अछि। रेलवे सब शनि दिन के जनकपुर सँ लऽ कऽ अयोध्या तक एकटा नव रेलगाड़ी चला रहल अछि, जे जयनगर होइत सीतामढ़ी होइत अयोध्या तक जायत। ई नव पहल के आदेश नहि एखन भेल अछि, जकर आदेश के प्रतीक्षा अछि, ओना तैयारी पूरा भ गेल अछि। एहि नव खबर सँ मिथिला अवध एक संगे जुड़त, और जे आमजन दर्शन करऽ चाहै छथि अयोध्या सँ लऽ कऽ मिथिला या मिथिला सँ लऽ कऽ अयोध्या तक, ओ असहज रूप सँ एहि रेलगाड़ी सँ यात्रा कऽ सकै छथि। ई हालचाल एखन आकाशवाणी दरभंगा सँ सुनि रहल छी।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: एक बार पुनः स्वागत है हालचाल में। बिहार शिक्षा व्यवस्था के सुधारक हेतु नव निर्देश आबि रहल अछि। डीईओ डीपीओ और बीईओ के आवश्यक निर्देश देल गेल अछि, जे सब मास सब प्रखंड में सब विद्यालय के प्रधानाध्यापक आबि कऽ गुरुगोष्ठी करता, और शिक्षा में कोना और बेसी से बेसी सुधार हुए ते पर विचार करता। ई नव आदेश सब प्रखंड में भेज दिल गेल अछि। दरभंगा जिला में 2585 सरकारी विद्यालय के शिक्षा व्यवस्था में इस सुधार होयत, ई आदेश आबि चुकल अछि। चारिधाम परियोजना धार्मिक पर्यटन के सफलता सँ रेलवे प्रसन्न अछि, और ओ नौ परियोजना एहि विषय पर लाबि रहल अछि। ज्ञात हो कि एकटा रेलगाड़ी चारिधाम यात्रा करवाबैत अछि, धार्मिक यात्रा छै, ओहिसँ बुनियादी ढाँचामे बहुत तरहक विकास भेलैए। आम यात्री बहुत तरहक यात्रा कऽ कऽ अपन देश आओर अथीके देख रहल छथि। तैं दोसर परियोजना रेलवे आनि रहल अछि, जे आओर धार्मिक यात्रा के बढ़ाओल जायत, एहिसँ पर्यटन में विकास होइत अछि और नव जानकारी सेहो भेटैत अछि। बिहार यातायात सुधार व्यवस्था में एकटा नव आदेश आबि रहल अछि। आब आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करऽ पड़त, नहीं करवा पर अहाँ के पैघ जुर्माना देव पड़त, ई आदेश आबि रहल अछि। एहिमे अहाँ अपन आरसी यानि गाड़ी के जे अहाँ के कागज अछि, ताहिमे ऑनलाइन सेवा केंद्र पर जाकर जे अहाँ के सत्य मोबाइल नंबर अछि, यानि अहाँ के मोबाइल नंबर अछि जे गाड़ी खरीदने छथि, हुनक मोबाइल नंबर अपडेट करवा पड़त। ई जतेक बिहार भरि में ऑनलाइन सेवा सुधार केंद्र अछि, ओहिठाम जाकर ई अहाँ करवा लिअ। ई नव निर्देश याद व्यवस्था के निर्देशक देने अछि, नहि तऽ आगू अहाँ के भारी जुर्माना देबऽ पड़ि सकैत अछि। ई हालचाल एखन आकाशवाणी दरभंगा सँ सुनि रहल छी।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: हालचाल एखन दरभंगा सँ सुनि रहल छी। रामनगर बिजली ग्रिड सँ जुड़ल दूटा क्षेत्र में बिजली व्यवस्था अव्यवस्थित भऽ चुकल अछि, बिजली बहुत नहि आबि रहल अछि। एहिमे ज्ञात हो रहल अछि जे एक सप्ताह में सुधार भऽ जायत। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा स्नातकोत्तर संगीत

0: नाट्य विभाग द्वारा चलि रहल अछि सत्र 2024-2026 के छात्र छात्रा के रंगमंचीय कार्यक्रम एकर आयोजन कयल गेल। एहि रंगमंचीय गतिविधि मे सब तरहक रंगमंच के कार्यक्रम भेल। कहानी केवल एकटा शब्द तक सीमित नहि अछि, अपितु मंच पर ओकर जीवंतता सामने मे अबैत अछि, ओ संवाद स्थापित करैत अछि। समय रंगमंचीय गतिविधि के सांस्कृतिक चेतना के एकटा अवधारणा मानल जाइत अछि। ओहिना रंगमंच आ रंगमंचीय गतिविधि समाज के एकटा आईना होइत अछि। हमर संरचना, हमर नव कहानी के रंगमंचीय व्यवस्था जीवंतता देबाक कर्म होइत अछि रंगमंच। ओहिना नहि, रंगमंचीय गतिविधि के पंचम वेद के संज्ञा देल गेल छै, यानी नाट्यशास्त्र पंचम वेद होइत अछि। एहि संग हालचाल समाप्त भेल। नमस्कार। आब किछु मौसम संबंधी जानकारी।
1: मौसम का जो पूर्वानुमान है वो है 11 से 13 जून के बीच बिहार में बारिश का अलर्ट, कई जिलों में भारी वर्षा और तेज हवाओं की चेतावनी। उत्तर बिहार में अधिकांश समय आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। 11 से 13 जून के बीच आसपास के स्थानों में वर्षा के साथ मेघागर्जन और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। विशेष रूप से 11 से 13 जून के दौरान ऐसे मौसमीय गतिविधियों की अधिक संभावना है, जैसे गोपालगंज, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिलों में 11 से 12 जून को 65 से 70 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की आशंका है। अन्य जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जो सामान्य से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकती है।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
1: तो ये थी मौसम की जानकारी। और एक बार कार्यक्रम में फिर रुख करते हैं प्रवीण जी।
0: जी।
1: और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही है बहुत सारे चीज़ों को, बहुत सारी चर्चाओं को हम शामिल करें और अपने श्रोताओं से उनके विचार और अपने विचार को साझा करते रहें, ताकि वो विचारों के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े रहें।
0: सत्य कहलूं, हम सब गपशप आगू करब। आय बाट परिवहन नियम के पालन केना हमरा सबके करबाक चाही आ ओहिसँ की हमरा सबके आमजन के सुरक्षा होइत अछि ताहि पर, और जीवन में बदलाव जरूरी होइत अछि ओहि पर, लेकिन समय पर हम सब ई चर्चा करब। ओहिसँ पहिले आओ किछु आनंद ली और चली संगीतमय दुनिया में एकटा फिल्म संगीत संग।
1: वाह।

रवीन जी, आपने मेरे मन की बात पढ़ ली थी और इसीलिए मैंने कहा वाह, क्योंकि कार्यक्रम में हमारा एक उद्देश्य है श्रोताओं का मनोरंजन भी करना, और गीत का समय थोड़ा विलंब हो रहा था तो आपने गीत की चर्चा कर दी और श्रोताओं ने गीत का आनंद लिया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चूँकि बातचीत हम कर रहे थे कि परिवहन नियम का पालन करना आवश्यक है, क्यों किया जाए, इसकी भी चर्चा हम करें, क्योंकि लगातार बढ़ते दुर्घटनाओं के कारण, परिवहन की संख्याओं के कारण, प्रदूषण के कारण, सड़कों पर भीड़ के कारण, इन दिनों सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए परिवहन नियमों

0: का पालन काफी आवश्यक होता जा रहा है और परिवहन और यातायात के नियम से हम जीवन और सुरक्षित यात्रा कैसे कर सकें, क्यों आवश्यक है, इसकी जानकारी साझा करें और साथ ही इस विचार से श्रोताओं को अवगत करें।
1: सत्य कहल देखो जो जो देश विकास कर रहल अछि बाट घाट चिकन बन रहल अछि और संग संग विभिन्न तरहक परिवहन व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिकसँ लऽ कऽ और डीजल पेट्रोल वाला आबि गेल अछि, मोटर वाहन साइकिल जे किछु, बाट ओहि जमानाके अछि, बहुत उत्तम संकीर्ण गली अछि, ओहि संकीर्ण गलीमे बाट दोसर जुड़ल अछि, बाल बच्चा सब साइकिलसँ या नव स्कूटीसँ होइ, ओसब किशोरावस्थामे नहि बुझैत अछि जे एकाएक बाट पर टपि गेल, उम्हरसँ कोनो तेज रफ्तारसँ मोटर वाहन आबि कऽ ठोकर मारलक, घायल भऽ गेल, एक क्षणमे
0: जीवन लीला
1: समाप्त भऽ जाइत अछि ठाम ठाम। एहि देत बार बार निर्देश देल जाइत अछि यातायात परिवहन विभागके तरफसँ जे अहाँ ओहिके जानकारी राखू जे बाट सबके अछि, ककरो मना नहि अछि, ओहिपर चलबाक हेतु किछु नियम अछि आ जे नियम पालन नहि करै छथि ओ देशके योग्य नागरिक मानऽके अधिकारी नहि होइ छथि। सीधा हम कहब जे बाटपर अबै छी मोटर वाहनसँ लऽ कऽ कहुना चलबै छी, पैदलो चलै छी, तऽ बाट टपऽसँ पहिले बायाँ दायाँ आगाँ देख कऽ बाटपर लाद
0: दियौ। प्रवीण जी, हम शुरूसँ ये जानते हैं, जिनको हम आरंभ से अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि हमेशा अपनी बाईं ओर चलनी चाहिए, ट्रैफिक सिग्नलों का पालन करना चाहिए, सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, गति सीमा के नियंत्रण का ध्यान रखना चाहिए। इन सभी के अलावे सड़क सुरक्षा के कुछ और भी जो नियम हैं वो है लेन के अनुशासन का पालन, यानी एक लेन में गाड़ी चले, लेन बदलने से पहले इंडिकेटर यानी संकेतों का प्रयोग करना, विभिन्न सड़क और क्षेत्र जैसे स्कूल या अस्पताल के पास तय समय सीमा और तय गति का पालन करना, अगर हम नशे की हालत में गाड़ी चलाते हैं तो खुद के लिए भी जानलेवा साबित होते हैं और यातायात और बहुत सारे निर्दोष लोगों के लिए जानलेवा साबित होते हैं, साथ ही यह बिल्कुल ही गैर कानूनी है। सीट बेल्ट अगर हम कार में आगे नहीं लगाते हैं और पीछे बैठे यात्रियों के लिए भी अगर हम सीट बेल्ट का पालन नहीं करवाते हैं तो यह जानलेवा साबित होता है। दोपहिया वाहनों के लिए ISI द्वारा प्रमाणित हेलमेट का प्रयोग आवश्यक है। मोबाइल का उपयोग, जिसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, कि एक तरफ हम मोबाइल प्रयोग करते हुए गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो हम दोपहिया चलाएं या फिर चार पहिया चलाएं, जिस समय हम गाड़ी चला रहे हों उस समय हम मोबाइल का प्रयोग या मोबाइल के द्वारा संदेशों को पारित करने का प्रयोग न करें, और साथ ही इमरजेंसी वाहन, जिसको हम एम्बुलेंस कहते हैं, अगर वो है तो सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम पहले उन्हें जाने दें। पैदल यात्रियों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। कुछ आवश्यक दस्तावेज, जिसका अभी आप तुरंत चर्चा कर रहे थे कि वाहन चलाते समय अपने पास ओरिजिनल या डिजी लॉकर से निम्नलिखित दस्तावेज रखें: ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का पंजीकरण पत्र, प्रदूषण नियंत्रण पत्र, वैध बीमा प्रमाण पत्र, कुछ यातायात संकेत जैसे लाल बत्ती, पीली बत्ती कब प्रयोग है उसको हम जाने, लाल बत्ती का प्रयोग खतरे के लिए है, पीली बत्ती जाने के लिए है, हरी बत्ती आगे बढ़ने के लिए है, तो ऐसे नियमों का प्रयोग अगर हम करेंगे तो अपने साथ और अपनों के साथ बहुत सारे यातायात सुरक्षा नियम का पालन करेंगे और बहुत सारे लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। साथ ही अगर हम विकसित भारत का स्वप्न देखते हैं और सोचते हैं कि विकसित भारत कब बने और कैसे बने, तो विकसित भारत की बात तब होती है जब हम यातायात के लिए अच्छे सड़क और अच्छे सड़क नियमों का पालन करें। जिसकी चर्चा अभी आप तुरंत कर रहे थे, हाँ। कि सड़क जितनी अच्छी होगी वाहन उतने अच्छे तरीके से चलेगा और साथ ही

0: वाहन के चलने से हमें फ़ायदा होगा और हम अपने फायदे के लिए, अपने विकास के लिए लगातार अपने देश, अपने राज्य को फायदा पहुंचाएंगे।
1: सत्य कहलाओ, विकास के संग मोटर वाहन एवे करत, वो इलेक्ट्रॉनिक हुए या तेलिए हुए, हमरा सबके खास ध्यान देवाक जे किशोरा अवस्था में बहुतो जे वयस्क या आरसी लेबा के उम्र नहीं भेल रहे छन, बिना लाइसेंसो के गाड़ी चला ले छथि, और एहिमे अभिभावक के हम ई कह चाहबनि यदि अहाँ के ई होइत हुए जे हमर बाल बच्चा पैघ भऽ गेल चला लै तो कोनो बात नहीं, लेकिन आवश्यक ई अछि जे ओहि बाल बच्चा के पहले अहाँ ट्रेनिंग दऽ दियौ, यातायात नियम सिखा दियौ, और अपन सुरक्षा और दोसरक सुरक्षा कोना हुए बाट घाट पर तकर जानकारी अवश्य दऽ दियौ। देखल जाइत अछि बहुतो तरह किशोरावस्था में उदंडता के संग मोटर वाहन सब दौड़ाबैत रहै छथि, हुनका किछु कहबनि अगर ये टोकि देबनि तो उल्टे उहे लड़ाई करय लगै छथि, ई सब व्यवहार यातायात नियम के विरुद्ध छै। जानकारी दो दी,
0: अपराध है,
1: जानकारी जानकारी ई दो दी जे जगह जगह शहर में सीसीटीवी कैमरा लग गेल चुकल अछि, ऑनलाइन मोबाइल नंबर अही द्वारे एखन हालचाल में कहलौ है जे जिनकर नाम से गाड़ी अछि ओ अपन जे सत्यापित नंबर अछि यानी आधार कार्ड से जुड़ल जे नंबर अछि मोबाइल, ओ यथाशीघ्र अहाँ ऑनलाइन माध्यम से दो दी दर्ज करवाओ, नहीं तो आप तो कैमरा द्वारा अहाँ के जुर्माना होइत छै। गत सीमा बाट घाट के तय छे, यातायात व्यास के नियम छे, तई कोनो चीज के जानकारी ल क तहन जे काज करब तई में आ अज्ञानता में जोश में उल्लास में बहुत तरह यातायात नियम के खंडित क क आगा बढ़ब तई दंडनीय अपराध छे।
0: बहुत अच्छी बात साझा की प्रवीण जी आपने, खासकर जो नाबालिग बच्चे हैं जिन्हें इस वक्त गाड़ी चलाने के लिए बिल्कुल ही कानून के द्वारा नियम नहीं है, और वो अगर नियमानुसार वो अपराधी हैं, अगर उनसे किसी भी तरीके का ऐसा यातायात नियम का उल्लंघन होता है तो वैसी स्थिति में जिनके नाम से वाहन है उनको अवश्य ही अपना मोबाइल दर्ज कर देना चाहिए समय के साथ, ताकि हम सभी सुरक्षित रहें और सुरक्षित नियमों के पालन के साथ अपने जिले को, अपने राज्य को और अपने देश को आगे बढ़ाएं और आगे चलते रहें। और अब समय हो चला है हमारे कार्यक्रम में एक खास सोपान का, जिसे हम कहते हैं
1: मिथिला के आवाज। आओ मिथिला के आवाज में हम प्रवीण कुमार अहाँ समस्त श्रोता के स्वागत कर रहल छी। आओ सुनै छी इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के पास आउट दूटा छात्रा सा गपशप।
2: नमस्कार, मिथिला के आवाज में अहाँ समस्त श्रोता के स्वागत है। आई बहुत खुशी के गप है, हम आयल छी आई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जिग्नू के 39वां वार्षिक समारोह छै, जे में स्नातकोत्तर छात्र छात्रा सब आई अपन डिग्री लऽ रहल छथि, बहुत खुशी के क्षण छै। दूटा छात्रा सँ हम गप सप कऽ रहल छी, अपने की नाम भेलै?
3: कनिष्का चौधरी
2: जी। अपने कोन विषय में केलिए?
3: बैचलर हिस्ट्री में।
2: हिस्ट्री में बैचलर के लिए। इग्नू शिक्षा में देवो में कोन स्थान रखै छै तकर?
3: जी, ये तो बेहतर स्थान रखै छथिन एहि दुआरे कि एहनो विद्यार्थी ना हम सब अखन जॉब में छियै, तहनो हमरा सब लेल मतलब स्कूल मतलब अपन कार्य के करैत में एहि चीज के हम पढ़ाई के अपन जारी राखि सकै छी, एहि लेल तो बहुत मतलब महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त छै हिनकर।
2: बहुत नीक बात अहाँ कहलहुँ जे हम कार्यो कऽ रहल छी, यानी हम कतौ अपना जीवन यापन के लेल श्रमो कऽ रहल छी, ओहिठाम सँ हम किछु कमाओ रहल छी आ सङ्गे सङ्गे शिक्षा ग्रहण सेहो कऽ रहल छी, तऽ नीक बात भेलै। अच्छा, अहाँके एहिमे कतौ दिक्कतो भेल?
3: जी नहि, हम अखन 3 साल के कोर्स केलहुँ, हमरा कतौ कोनो परेशानी नहि भेल अछि आओर बहुत बढ़िआँसँ मतलब सारा एग्जाम वगैरह टाइम टू टाइम सब चीज भऽ गेल छै।
2: अपने कते प्रतिशत उठेलियै मार्क स्नातकोत्तर में?
3: 75%।
2: अहाँके आगा आवा वाला जीवन के लिए हम शुभकामना दै छी और अहाँके भविष्य उज्ज्वल हुए तकर हमरा मनोकामना।
3: धन्यवाद सर।
2: अपने के नाम की भेलै?
4: हमर नाम अछि कृष्णा प्रिया।
2: कृष्णा प्रिया जी, अपने कोन सब्जेक्ट में केलिए स्नातकोत्तर?
4: हम केलहुँ हन अहाँके संस्कृत में मास्टर डिग्री।
2: बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद अहाँके, मंगल कामना अहाँके जीवन के लेल आगा।
4: बहुत धन्यवाद।
2: इग्नू से केलहुँ हैं, संगे संगे अहाँ और कोनो काज करै छलिए?
4: जी, हम वर्तमान में 9 to 10 में संस्कृत से शिक्षिका छी हाई स्कूल में।

0: हमरा ई अनुमान छलए जे निश्चित रूपसँ शिक्षासँ जुड़ल होयब अहाँ आओर इग्नू एहन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विश्वविद्यालयके अहाँ छात्रा छी आओर स्नातकोत्तर जे एकटा उपाधि छै से अहाँ आइ लेलहुँ हँ, कतेक मनमे प्रसन्नता अबै छै अहाँके?
1: बहुत मन प्रसन्न अछि, कम समयमे आओर नौकरीके साथ साथ दुनू काम भऽ जाइ छै आओर साथमे हमर जखन 11th 12th होतै तऽ ओहोमे काम आबि जेतै।
0: अच्छा, हम देख रहल छी अब संस्कृतके अपना ओहिठाम खास कऽ बिहारमे बहुत नीक स्थान लोक नहि लऽ रहल छै, नहि जे केओ पढ़ऽ चाहै छै, ओहिमे अहाँ संस्कृतसँ स्नातकोत्तर केलहुँ हँ, तऽ आगाँ अहाँ एहिके लेल की लक्ष्य रखलिए अपन?
1: लक्ष्य इहे छै कि हमरा ई विषयमे आओर आगे बढ़ैके अछि आओर सबके जागरूक करैके छै, किएकि संस्कृत जे छै भाषाओं की जननी अछि। ई सब बुझै छथिन कि जते भी भाषा छै अभी वर्तमानमे बिहारमे सब संस्कृतसँ ही निकलल अछि। इवन कम्प्यूटर वगैरह भी छै, बहुत कुछ मदद संस्कृतसँ भेटल छै आओर जितना भी वैज्ञानिक भेलखिन हन सब लगभग वहींसँ भेल छै, तऽ संस्कृत तऽ काफी हेल्पफुल छै आओर पूरा इंद्रिय जागृत भऽ जाइ छै संस्कृतसँ। केओ अगर श्लोक ही बोलि कऽ देखो तऽ देखियौ कि कितना बढ़िया, मतलब पूरे शरीर जे छै एक्टिव भऽ जाइ छै।
0: बहुत बहुत बहुत गुड बात अहाँ कहि रहल छी, किया नहि कहब, आइ अहाँ MA के उपाधि लेलहुँ हैं ओ इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू एहन लक्ष्यसँ, आओर आगाँ हम ई कहऽ चाहब अहाँके जे अहाँके लक्ष्य आगाँ की रखने छी अहाँ?
1: लक्ष्य कि MA करबै, कोशिश करबै कि हम वर्तमानमे बेट होइ आओर कोशिश करी कि प्रोफेसर वगैरहमे हमर भऽ जाय आओर आगे जाइके कोशिश इहे विषयके माध्यमसँ हो सके आओर जागरूकता फैलाए कि लोग संस्कृत पढ़ै,
0: माने संस्कृतके अलग जगह होइ, चाहे नीक कऽ कऽ प्रोफेसर बनिकऽ या आगाँ बढ़ि कऽ। अपनेके आगाँ आबयवला जीवनके लेल मंगल कामना। एकटा श्लोक सङ्गे अपनेक वाणीके समाप्त करबै, एकटा श्लोक कोनो संस्कृत।
1: जबसे एग्जाम पास कयलहुँ हन हम तऽ एक श्लोक छै गीता के, कर्म मन्ने वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म के फल अहाँ करू, फल के चिंता नहीं करू, कर्म करू। ऐसे की होइ छै कि फल तऽ निश्चित भेटबे करत, कर्म पे अहाँ के ज्यादा फोकस रहत।
0: अहाँ दुनू गोटा के आजुक दिन के शुभकामना, संगे आवा वाला जीवन के शुभकामना। आकाशवाणी दरभंगा सँ हम अहाँ के मंगल कामना करै छी। नमस्कार,
1: धन्यवाद।
2: एखन सुनै छलहुँ दूटा छात्रा सँ जे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के छात्रा छली और प्रमाण पत्र लऽ रहल छली। दुनू के मनोबल देख कर बहुत खुशी भेल जे जीवन में बदलाव जे करैत अछि ओ बहुत आगू तक जाइत अछि और बदलाव जीवन में आवश्यक होइत अछि, तै जीवन में बदलाव करैत रही, एकटा नव परिवर्तन होइ छै, नव ऊर्जा सँ अपन संरचना में सुधार होइ छै और जीवन यात्रा सफल होइ छै।
3: जी, बदलाव जीवन और सृष्टि के सनातन और सत्य नियम है। जो लोग या समाज समय के साथ खुद में बदलाव नहीं करते वो एक जगह ठहर जाया करते हैं, क्योंकि प्रगति नई सीख और नई सफलता के साथ पुरानी आदत, पुराने विचार और पुराने प्रणालियों में सकारात्मक बदलाव लाता है, और जो बेहद आवश्यक है, क्योंकि प्रायः ठहरा हुआ पानी सड़ने लगता है।
2: सत्य कहलो, ठहरा हुआ पानी में मच्छर होइए और बहुत तरह बीमारी फैल होइत अछि। संगीता जी, कार्यक्रम में समय देख आब हमरा सबके लागि रहल अछि जल्दी जल्दी समेटी, किया तऽ एकटा गीतो बाकी अछि। श्रोता सब इंतजार करैत रहता जे दोसर गीत नारी सब नहि पढ़ै चल रहल छथि अवश्य पर सब, लेकिन ओहिसँ पहिले किछु समसामयिक पर चर्चा कऽ ली।
3: जे समसामयिक जो चर्चा है प्रवीण जी, वो है मिशन नीट 2026 के तहत 21 जून को बिहार में परीक्षा और सरकार की चौबंद तैयारी, पेपर लीक होने की वजह अफवाह पर तुरंत होगी गिरफ्तारी और कोचिंगों पर IB की नज़र। बिहार में 21 जून को मिशन नीट 2026 की परीक्षा होगी और यह परीक्षा राज्य के 34 जिलों के 35 शहरों में होगी। इसके लिए कुल 331 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 1.56 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा को कदाचार मुक्त, पारदर्शी और सुरक्षित माहौल में कराने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। मंगलवार को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और DGP विनय कुमार ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में परीक्षा के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने पर कड़ा फैसला लिया गया। सभी DM और सभी SP एवं ASP को निर्देश दिया गया कि वे हर दिन परीक्षा की तैयारी की प्रगति की समीक्षा

0: रक्षा करे।
1: एटा जानकारी दो दी जे जखन जखन चेतावनी मौसम के जाई है आंधी पानी और वर्षा ओला वृष्टि के तो सतर्क भ जाए और ई ध्यान राखी यदि कोनो पैघ गाछ के तौर में घर बनेने छी तो अवश्य रूप से ओ घर तत्काल त्याग दी। नहीं तो बहुत तरह घटना मिली है। एखने रीगा में एकटा घटना भेल जेमे एकटा फूस के घर पर एकटा पेड़ खसि पड़ल ओहिमे चारि जन दबा गेल। तो ऐसे सतर्क रही और कार्यक्रम के आगू बढ़ाबी और सुनी एकटा फिल्म संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहु अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल मालू मा।
1: गुआ सुपारी के कहल जाते अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनी आनि के दिया था। बहुत कमे लोग हेता जे गुआ बुझ के सुपारी बुझ के आनि के देता।
2: अपन परंपरा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजित मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार। नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
3: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
4: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
3: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
2: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए। घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आब रहल छी एक ही क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी। भोर होते उठ जाओ किएक त इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराय लगैत अछि। ऊर्जा आबा वाला काल लेल
5: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
6: आ मनुख लेल बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहि हैत तऽ खेती नहि हैत, आ खेती जँ नहि हैत, उपजा नहि हैत तऽ हमरा लोकनि खायब की।
7: मामा बने जाने बने जादा।
2: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा। आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर, संध्या 6:30 पर।
8: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
9: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
10: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
9: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
11: हर घर सूर्य घर।
12: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 1.25 लाख करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू।

0: ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी

0: 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे PMEGP लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और

0: AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 225,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था। हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
2: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
1: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 225,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकम्स लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वर्ल्ड लीडर्स हेल प्राइम मिनिस्टर मोदीज ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस एंड एडवोकेसी फॉर ग्लोबल साउथ। NDA to meet in New Delhi today to celebrate PM Modi's achievements and completion of 12 years of government. Centre unveils 1.25 lakh crore rupees rural development push. New framework under Viksit Bharat Jiramji to roll out from 1st July. US military launches strikes against Iran in response to downing of Army Apache helicopter off Oman coast. And in cricket, Ruturaj Gaikwad's century helps India A beat Sri Lanka A by 8 runs in tri-series opener in Dambulla. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13th of May in 1952 and served until 27th of May.

0: अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज भारत के ऐसे मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं जो इस ओहदे पर सबसे तवील अरसे तक रहते हुए खिदमात अंजाम देते रहे हैं। जनाब मोदी ने 26 मई 2014 को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ लिया था। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 13 मई 1952 को एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ लिया था और 27 मई 1964 तक इस ओहदे पर रहते हुए खिदमात अंजाम दी। पंडित नेहरू की एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमात की मुद्दत 4398 दिन रही। 26 मई 2014 से आज यानी 10 जून 2026 तक वज़ीर-ए-आज़म मोदी की लगातार मुद्दत-ए-कार 4399 दिन हो गई है। इस तरह वो भारत की तारीख में एक ऐसे मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं जो अपने ओहदे पर सबसे तवील अरसे तक रहते हुए खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अगर भारत में जहां 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की आबादी है और जहां जबान, सकाफत, मजहब और जोग्राफिये में गैर मामूली तनवु पाया जाता है, हुक्मरानी के पैमाने और पेचीदगी पर नजर डाली जाए तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ये एक काबिले जिक्र हुसूलियाबी है। ऐसे वक्त जब बहुत से मुल्कों में सियासी उथल पुथल, हुकूमत में बार बार तब्दीलियां और सियासी गैर यकीनी पाई जाती है, भारत में क़यादत और हुक्मरानी में तसलसल पाया जाता है। दुनिया की इस सबसे बड़ी जमहूरियत में आवाम की तरफ से लगातार 3 बार हिमायत दिए जाने से इस पर आवाम के एतमाद का इजहार होता है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आजादाना तौर पर कराए गए आलमी जायजों में वज़ीर-ए-आज़म मोदी को दुनिया के मकबूल तरीन जमहूरी रहनुमाओं में लगातार शुमार किया जाता रहा है। उन्हें 30 से ज्यादा मुल्कों के सबसे ज्यादा शहरी एजाजात से भी नवाजा गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का एक मामूली समाजी और इकतसादी पसमंजर से उठकर किसी मुंतखब आला तरीन ओहदे पर फाइज हो जाना, जबकि ख़ानदानी तौर पर उनका कोई सियासी पसमंजर भी नहीं है, किसी करिश्मे से कम नहीं, और ये भारत जैसी किसी बड़ी जमहूरियत में ही मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुद्दत-ए-कार के दौरान तकरीबन 25 करोड़ भारतीय अफराद गुरबत के दायरे से बाहर निकले और लोगों ने डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे की तौसी, बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की तरक्की, फलाही खिदमात में बेहतरी और एक वसी बुनियाद वाली समाजी और इकतसादी तरक्की का नज़ारा किया। इस अरसे में भारत ने दुनिया की तेज तरीन तरक्की वाली बड़ी मईशत के तौर पर इस्तेहकाम हासिल किया, सरकर्दा मईशतों के साथ बड़े तजारती समझौते किए और वो आलमी मामलात पर मजीद मौसर आवाज़ बनकर उभरा, जिसमें तरक्की, टेक्नोलॉजी, आबो हवा से मुतालिक कार्रवाई और आलमी जुनूब की तरजीहात भी शामिल हैं। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: आलमी रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को भारत का सबसे तवील अरसे तक एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमात अंजाम देते रहने पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की अक्सर तब्दीली लाने वाली हुक्मरानी, आलमी जुनूब के लिए उनकी वकालत और सबकी शमूलियत वाले और इक्तिसादी तौर पर फ़ाल भारत की उनकी दूरअंदेशी को खराज तहसीन पेश किया। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके ने एक खत में कहा है कि ये हुसूलियाबी न सिर्फ जनाब मोदी के कई साल तक ओहदे पर रहने का नतीजा है, बल्कि उस भरोसे और एतमाद का भी इजहार है जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के अवाम ने उनकी क़यादत के तई जाहिर किया है। उन्होंने भारत की काबिले जिक्र इकतसादी और समाजी तब्दीली का भी खास तौर पर जिक्र किया और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की दूरअंदेशी से बहुत से लोगों को भारत की सरहदों के पार तहरीक हासिल हुई है, जिसमें श्रीलंका भी शामिल है। पापुआ न्यू गिनी के वज़ीर-ए-आज़म जेम्स मरापे ने एक जाती वीडियो पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी को एक मिसाली शख्सियत और क़यादत की मिसाली शख्सियत करार दिया है। उन्होंने 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को गुरबत के दायरे से बाहर निकालकर उन्हें अच्छी जिंदगी बख्शे जाने को एक हैरत अंगेज कारनामा करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म मरापे ने पापुआ न्यू गिनी की तरफ से गर्मजोशी और दोस्ती का इजहार किया है और उम्मीद जाहिर की है कि दोतरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। इसके अलावा ट्रिनिडेड एंड टोबैगो की वज़ीर-ए-आज़म कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में भारत आलमी मामलात में एक कायदाना आवाज़ बनकर उभरा है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के एक मामूली पस मंजर से शुरू होने वाले सफर से 3 लगातार मुद्दतों तक 1 अरब 40 करोड़ लोगों

0: भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबिले बसीरत 12 साला दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रोनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों के फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने, किसानों, खवातीन और नौजवानों के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी की खबरों के शोभा अहम शोबों में पिछले साल में हुकूमत की कोशिशों पर एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत के जरिए किए गए इकदामात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पिछले 12 बरसों में हुकूमत ने मुल्क के नौजवानों को बाख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की है। भारत की अगले मरहले की असलाहत अब रिफॉर्म एक्सप्रेस में

0: तब्दील हो गई है और नौजवानों की ताकत इसके मरकज में है। भारत के नौजवान विकसित भारत की तामीर और तमाम शोबों में मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने में मरकजी हैसियत रखते हैं। 12 करोड़ से ज़्यादा नए एंटरप्रेन्योर ने पीएम मुद्रा योजना कर्ज हासिल किए हैं, जिसे नौजवानों के ख्वाबों को परवाज़ मिली है। हुकूमत नौजवानों को बाख्तियार बना रही है ताकि रोज़गार और खुद इन्हेसारी को आगे बढ़ाया जा सके और नौजवान रोज़गार पैदा करने वाले बन सकें, न कि रोज़गार हासिल करने वाले। छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक खातून एंटरप्रेन्योर ईशा पटेल ने घर पर खाने बनाने से एक कामयाब कैफे कारोबार कायम करने तक के अपने शानदार सफर को शेयर किया। 60 लाख से ज़्यादा नौजवान ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से फ़ायदा उठाया है। 1.6 करोड़ से ज़्यादा नौजवानों को पीएम कौशल विकास योजना के तहत तरबियत दी गई है। सकलैंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: अमरीकी फ़ौज ने ईरान पर हमले किए हैं। ये हमले अमरीकी फ़ौज के एक अपाचे हेलीकॉप्टर को ओमान के साहिल से कुछ दूर गर्क करने के जवाब में किए गए हैं। अमरीकी अफसरान ने बताया कि ये हेलीकॉप्टर ईरान के एक ड्रोन ने गिराया था। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के शहरों सिरिक, मिनाब, बंदर आबास और किशम जजीरे में धमाके की आवाज़ें सुनी गईं। मर्दों के क्रिकेट में श्रीलंका के रंगिरी डम्बुला में बैन अलाक्वामी स्टेडियम में तीन मुल्कों की ए टीमों की सीरीज के इफ्तिताही मैच में भारत ने श्रीलंका की टीम को 8 रन से हरा दिया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
0: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने से मुतल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इंकलाब की शह सुर्खी है, मोदी की क्यादत में एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल। पार्टी सदर नितिन नबीन ने कहा, भारत पहले मायूसी में डूबा हुआ था, आज एतमाद से भरा हुआ है। अखबार प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के हवाले से सुर्खी लगाई है, हुकूमत के गुज़श्ता 12 साल एतमाद, तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए वक्फ। राज्यसभा इंतखाबात से कबल कांग्रेस को बड़ा झटका, मीनाक्षी नटराजन की मध्य प्रदेश से नामजदगी मंसूख, कांग्रेस का अदालत जाने का फैसला। इसे भी अखबार ने अहमियत दी है। अखबार इंकलाब की एक और सुर्खी है, लद्दाख में जोजिला टनल तैयार, 2 घंटे का सफ़र 30 मिनट में होगा मुकम्मल। अखबारात ने वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस बयान को नुमाया किया है कि नीट इम्तिहान पूरी शफाफियत और सिक्योरिटी के साथ कराने के लिए की गई वसी तैयारियां।
1: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे मुंतखब वजीर आजम बन गए हैं जो इस ओहदे पर तवील तरीन अरसे तक खिदमात अंजाम देते रहे हैं। आलमी रहनुमाओं ने जनाब मोदी की अक्सर तब्दीली लाने वाली हुक्मरानी और आलमी जुनूब के लिए उनकी वकालत की सताइश की है। वजीर आजम मोदी की हुसूलियाबियों और उनकी हुकूमत के 12 साल पूरे होने पर जश्न मनाने के लिए आज नई दिल्ली में एनडीए की मीटिंग होगी। मरकज ने देही तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। विकसित भारत जी राम जी के तहत नया फ्रेमवर्क 1 जुलाई से शुरू होगा। अमरीकी फौज ने ईरान पर हमले किए हैं। ये हमले ओमान के साहिल से कुछ दूर अमरीकी फौज के अपाचे हेलीकॉप्टर को गर्क किए जाने के जवाब में किए गए हैं। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी पटना है। थोड़ी देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
3: जिस ऊंचाई पर तिरंगा होता है वहां लापरवाही नहीं पहुंचनी चाहिए। भारतीय ध्वज न सजावट है, न परिधान और न प्रचार का माध्यम।
4: भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार तिरंगे का आकार, रंग और स्वरूप पूरी गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त ध्वज कभी नहीं फहराया जाना चाहिए। और याद रखिए, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत कानूनी अपराध है। ये नियम डराने के लिए नहीं, सम्मान सिखाने के लिए हैं।
3: क्योंकि तिरंगे का सम्मान देश का सम्मान। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: बाढ़ से बचने के उपाय, आपातकालीन किट हमेशा अपने पास रखें, जिसमें एक छोटी रेडियो, टॉर्च, बैटरी, मजबूत रस्सी, माचिस, मोमबत्ती, पानी, सूखा भोजन, खाद्य सामग्री आदि साथ हो। घर के सभी सदस्यों को नजदीकी सुरक्षित आश्रय का पता हो। बच्चों को बाढ़ के पानी में खेलने से रोकें। सांपों एवं अन्य जहरीले जंतुओं से बचकर रहें। चेतावनी व सुझाव के लिए रेडियो सुने या टीवी देखें। अफवाह पर ध्यान न दें और न ही घबराएं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
6: काल के ललाट पर, समय के कपाट पर कभी उभरा था एक प्रकाश स्तंभ, जो आज

वैसा ही खड़ा है जैसा तब था। काल के थपेड़ों में कभी डूबा कभी उतराया, पर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का मूल मंत्र कभी न छोड़ पाया। जन जन से जोड़ा खुद को, बना प्रथम व्यक्ति से अंतिम व्यक्ति की वाणी, ऐसी है हम सबकी अपनी आकाशवाणी। साहित्य संगीत और कला को गर्भ में समेटे, लोक संस्कृति और लोक कलाओं को अपने तन पर लपेटे, गुजरी शताब्दी से दशकों तक इस देश की वाणी, मेरी अपनी आकाशवाणी अब और भी उन्नत और भी समृद्ध और भी प्रभावी हो गई है। समय की मृदुमंद मंथर गति में तिरता मेरा ये अपना संस्थान आज भी सुना रहा है अपना यशस्वी और तुमुल गान। 9 दशकों तक फैली इस अद्भुत संस्था की अद्भुत यात्रा के कुछ लम्हों कुछ पलों और एक छोटे से पड़ाव का साक्षी बना अदना बौना सा मैं। जन जन की वाणी इस महती महान आकाशवाणी को उसकी 90वीं जयंती पर करता हूँ शत शत नमन और अविरल वंदन। प्रार्थना है कि स्वीकार हो। शिवेंद्र श्रीवास्तव, पूर्व सहायक निदेशक आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व नेताओं ने श्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बीते 12 वर्षों में बिहार समृद्ध हुआ, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में आगे भी जारी रहेगी विकास यात्रा। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत बिहार के लिए 6,715 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट तय किया। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश में कई स्थानों पर आंधी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल जिले में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिनों का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिनों का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक

0: पूरे होने पर कहा है कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बिहार समृद्ध हुआ है। प्रधानमंत्री श्री मोदी को लिखे एक पत्र में श्री चौधरी ने कहा कि राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में ही संभव हुई है। मुख्यमंत्री ने श्री मोदी को 12 साल की स्वर्णिम कार्यकाल की बधाई देते हुए कहा कि भविष्य में भी बिहार को उनका मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वतंत्र भारत के दीर्घकालीन प्रधानमंत्री होने का कीर्तिमान स्थापित करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि यह उपलब्धि करोड़ों देशवासियों के विश्वास की जीत है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि बीते 12 वर्षों में देश ने सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक प्रगति और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों और आगामी रणनीतियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अलावा एनडीए के सभी घटक दलों के प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। बिहार समेत एनडीए शासित 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री भी इसमें भाग लेंगे। बैठक के दौरान राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को लेकर सरकार की भावी कार्ययोजना पर चर्चा की जाएगी। गठबंधन के विभिन्न घटक दलों के बीच समन्वय को और मजबूत बनाने के मुद्दे पर भी विचार होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम जी राम जी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रूपये के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में बिहार समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
1: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गाँव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया। 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
0: ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी के तहत प्रदेश के लिए 6,715 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट तय किया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना को लागू करने के लिए अकुशल मजदूरी मद में राज्य सरकार ने 1,890 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग हो गया, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इधर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि प्रदेश में नीट पुनर्परीक्षा की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए डाक विभाग के साथ मिलकर भारतीय वायुसेना के विशेष विमानों से प्रश्न पत्रों को स्टेट हब तक सुरक्षित लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के 34 जिलों के 35 शहरों में स्थित 331 परीक्षा केंद्रों पर 1,56,061 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं आर्थिक अपराध इकाई ने एक दिशा निर्देश जारी करते हुए छात्रों से अपील की है कि प्रश्न पत्र या उत्तर पत्र उपलब्ध कराने के लिए

0: दौरान राज्य के सभी भागों के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है तथा उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर बिहार में कई स्थानों पर तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कटिहार जिले की मघेली पंचायत के ग्यारिका गांव में बारिश के दौरान एक घर पर पीपल का पेड़ गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक महिला और चार बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के खाते में 1100 रुपये मासिक पेंशन की राशि भेजेंगे। यह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी। पटना में आयोजित इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर श्वेता गुप्ता भी उपस्थित रहेंगी। बिहार बोर्ड ने सत्र 2026-27 से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के पंजीकरण में विद्यार्थियों के लिए अपार आईडी को अनिवार्य कर दिया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक नवीन कुमार ने बताया कि सभी स्कूलों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय ने 30 जून तक सभी विद्यार्थियों के लिए अपार आईडी निर्माण का लक्ष्य तय किया है। नई दिल्ली की विशेष एमपी एमएलए अदालत ने मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज से भाजपा विधायक डॉक्टर राजू कुमार सिंह उर्फ राजू सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत द्वारा उनकी सजा पर सुनवाई 3 जुलाई को होगी। श्री सिंह को गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट मामले में दोषी ठहराया गया है। इससे पहले उनकी सजा पर सुनवाई 9 जून को निर्धारित थी। पटना स्थित एएन कॉलेज के पास हुए मैनहोल हादसे में बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम बुटको ने संबंधित कार्य एजेंसी पर 2,01,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इस हादसे में एक मजदूर की मृत्यु हो गई थी जबकि कई अन्य घायल हो गए थे। स्वास्थ्य विभाग ने मुजफ्फरपुर स्थित एक निजी अस्पताल में पिछले दिनों हुए अग्निकांड मामले में बंदरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार को निलंबित कर दिया है। उन पर सरकारी सेवा में रहते हुए निजी अस्पताल में काम करने का आरोप है। पटना जिले के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 15 किलो मादक पदार्थ स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। बरामद स्मैक की कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए बताई गई है। वहीं किशनगंज जिले के कुरलीकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत धर्मकांटा चौक स्थित एक कबाड़खाने में छापेमारी कर पुलिस ने 70 लाख रुपए मूल्य की हेरोइन के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मधेपुरा मंडल कारा में बंद एक विचाराधीन कैदी दीपक कुमार की कल इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने जेल के अंदर कैदी के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। आक्रोशित लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, बिहार में 30 दिन के अंदर उद्योग लगाने की मिलेगी स्वीकृति। दैनिक जागरण लिखता है, देश की सबसे बड़ी जोजिला सुरंग के मिले दोनों छोर। दैनिक भास्कर की खास खबर है, दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर बनेगा पटना रिंग रोड, इसके 8वें और अंतिम हिस्से दिघवारा से सराय को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। प्रभात खबर ने खेल की खबर को तरजीह देते हुए लिखा है, फुटबॉल का वर्ल्ड वार, कल से शुरू होगा फुटबॉल का सबसे बड़ा महाकुंभ फीफा विश्व कप। आज अखबार की सुर्खी है, फतुहा में अमूल लगाएगी 200 करोड़ की डेयरी प्रसंस्करण इकाई, 200 लोगों को मिलेगा रोजगार। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, बिहार में स्कूल कॉलेज के समय नहीं चलेंगे कोचिंग। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व नेताओं ने श्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बीते 12 वर्षों में बिहार समृद्ध हुआ, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में आगे भी जारी रहेगी विकास यात्रा। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत बिहार के लिए 6,715 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट तय किया। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश में कई स्थानों पर आंधी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल जिले में भारी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2:00

0: जी प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: सड़क दुर्घटनाएं सिर्फ खबर नहीं, कई परिवारों का दर्द बन जाती हैं। इसीलिए बिहार परिवहन विभाग लेकर आया है एक नई पहल।
2: अब आम जन भी सड़क सुरक्षा में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। अगर कहीं दिखे 3 सवारी, रैश ड्राइविंग, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट या यातायात नियमों का कोई भी उल्लंघन,
1: तो फोटो या वीडियो भेजिए व्हाट्सएप नंबर 9153971897 पर या ईमेल करें commandcontrolcenterbihar@gmail.com पर।
2: आपकी शिकायत पर होगी त्वरित कार्रवाई और आपकी पहचान रहेगी पूरी तरह गोपनीय।
1: आइए मिलकर बनाएं सुरक्षित बिहार। स्वयं नियमों का पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। परिवहन विभाग, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: देखिए, जब मैं बचपन में सुना करता था रेडियो और जब मुखिया जी और गीता बहन का कार्यक्रम आता था तो हम लोगों में उत्सुकता रहती थी। गांव के चौपाल पर बैठ के हम जब सुनते थे तो लगता था कि हमारे बगल में ही कोई बैठ करके यह कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है और बड़ा ही आकर्षण का केंद्र रहता था। और जब समाचार आते हैं, जो शाम का समाचार हो, सुबह का समाचार हो, दोपहर का समाचार हो, ये समाचार की उत्सुकता हम लोगों में रहती थी कि रेडियो की तरफ से क्या हो रहा है। जब राजनीति में आए तो राजनीति में जब हम लोग कोई कार्यक्रम करते थे तो हम लोगों का पहला फोकस होता था कि आकाशवाणी से हमारा न्यूज प्रसारित हो रहा है कि नहीं। और जब आकाशवाणी से हमारा न्यूज प्रसारित होता था तो दूसरे दूसरे जगह जो हमको जानने वाले लोग हैं वो फोन करके कहते थे कि आज रेडियो पर आपका नाम आया है। और सच पूछिए, आज तो इतने नाम आते हैं कि आज उसकी बहुत कौतूहल मन में नहीं रहता है, लेकिन एक समय था जब रेडियो पर नाम आता था तो रोमांच बढ़ जाता था। और आज चूंकि डिजिटल मीडिया का जमाना है और इस डिजिटल मीडिया के जमाने में भी अभी भी आकाशवाणी बहुत प्रासंगिक। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के लिए अगर किसी एक चीज को चुना तो आकाशवाणी को चुना। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात में देश के करोड़ों लोग जुड़ते हैं और करोड़ों लोग जुड़ते हैं तो वह कार्यक्रम पूरा ज्ञान से जुड़ा हुआ होता है। ऐसी ऐसी जानकारी मिलती है जो कभी हम लोगों ने न सोचा होगा न सुना होगा। हम सबको इंतजार रहता है हर महीने के अंतिम रविवार 11 बजे दिन का, जब प्रधानमंत्री जी के मन की बात आकाशवाणी पर हो। इसके लिए तो हम आकाशवाणी परिवार को और भी बधाई देना चाहेंगे और 90 साल में तो बधाई स्पेशल होगी। जब 8 जून को आपका 90 वर्ष पूरा होगा तो आपके लिए बधाइयों का अंबार चलेगा। पूरे देश के लोग और दुनिया के लोग आपको बधाई देंगे।
4: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: हम एक हैं, भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंध जिसके तहत नागरिक बेरोक टोक इन दोनों ही देशों के बीच आवाजाही करते हैं। सीमा क्षेत्र के रहने वाले कभी घूमने निकल पड़ते हैं एक दूसरी ओर,
2: जनकपुर जाने के लिए आए,
1: कभी खरीदारी भी करते हैं।
3: हिंदी सामान किनना,
1: सामाजिक ताना बाना ऐसा कि इधर के लोग उधर या फिर उधर के लोग इधर करते हैं शादियाँ।
2: मैं चाहता हूँ कि मेरा शादी भी नेपाल में हो।
1: रहते हैं एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक।
4: एम्बुलेंस को फोन करते तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, दोनों पार के आदमी समस्या को सॉल्व करते हैं।
1: इन्हीं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आकाशवाणी दरभंगा लेकर आता है कार्यक्रम हम एक हैं, प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को रात 10:30 बजे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
5: आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर संध्या 6:30 पर।
6: भोर होते उठ जाओ किएक तक पहल किरण संग फुलाए लगते है।

0: प्रकृति में घुराए लगैत अछि। ऊर्जा आबवला काल्हि लेल
1: प्रगति तखने भऽ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतनि।
2: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहि हैत तो खेती नहि हैत, आ खेती जँ नहि हैत उपजा नहि हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
0: घर घर के वाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय के वाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक ही क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी। साहित्य, संस्कृति और कला केर उपवन में फुलायल
5: एक गोट एहन पुष्प जाहि सँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहु अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल मालू।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझ के सुपारी बुझ के आनि के देता।
2: अपन परंपरा अपन संस्कार।
3: पटना दरभंगा है, लीजिए पेश है उर्दू कार्यक्रम अंजुमन।

0: सामिन जगजीत सिंह की आवाज़ में आप इस गज़ल को समाप्त कर रहे थे, और यकीनन अहद तिफली यानी जो बचपन का ज़माना होता है वो बहुत ही खूबसूरत हुआ करता है, जिसमें किसी भी तरह की कोई बंदिशें नहीं होती, कोई फ़िक्र नहीं होती, और वो बच्चा ज़िंदगी के को बहुत ही खूबसूरत समझता है। निदा फाजली ने बहुत ही खूबसूरत सा एक शेर कहा था कि बच्चों के इन नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, दो चार किताबें पढ़ के ये भी हम जैसे हो जाएंगे। समीन, आज एक अहम जानकारी आपके लिए, वो ये कि आज का जो दिन है वो ख़ास तौर पे अक़वामे मुत्तहिदा की जानिब से हर साल 10 जून को मुख्तलिफ तहज़ीबों के माबैन मुकालमे का आलम दीन के तौर पे मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस। इसका जो मकसद है वो तहज़ीबी तनों का एहतराम करना, तासुबात का ख़ात्मा करना और आलमी अमन, तरक्की और इफ़हाम व तफ़हीम को फ़रोग़ देना। दो तहज़ीबें इंसानी ज़िंदगियों में, हम तमाम लोग इसको लेयर्स पे रहते हैं, इसमें मुख्तलिफ़ तरह की तहज़ीबें हैं जिनसे मेल जोल के बाद ही हमारी ज़िंदगी आसान बन सकती है, और इसीलिए इसको मनाने की शुरुआत की गई थी। अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने 7 जून 2024 को चीन की तजवीज़ पर यह दिन मनाने का जो शुरुआत है उसके करारदाद को मंजूरी दी थी। मकसद मुख्तलिफ सकाफ़तों, मज़ाहिब और माशरों के डायलॉग के दरमियान खुले मकाल में हौसला अफजाई करना, ताकि तनाज़ात को कम से कम किया जा सके। ये दिन इस नज़रिए को इज्तिहाद करता है कि तमाम तहज़ीबी कामयाबियाँ पूरी इंसानियत का इज्तिमाई विरसा हैं। इसकी अहमियत आज के मुस्तकिल तौर पे दुनिया में ये दिन अमन, रवादारी और बाहमी एहतराम के ज़रिए आलमी यकजहती को तकबीयत देने में अहम किरदार अदा करता है। इस अहम जानकारी के बाद लीजिए सामीन, हम पेश करते हैं ये मकाला, अकलियतों के जो तबके हैं उनके लिए फलाही स्कीम्स क्या क्या हैं, आइए जानते हैं जाकिर हुसैन से।
1: मरकजी हुकूमत के जानिब से अकलियतों के लिए चलाई जा रही फलाही स्कीमें। मरकजी हुकूमत ने कौमी अकलियती कमीशन एक्ट 1992 के तहत अकलियतों के लिए कौमी कमीशन कायम किया, जिसमें इब्तदाई तौर पर 5 मजहबी बिरादरियों यानी मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को इस जुमरे में रखा। इसके बाद जैनियों को भी इस फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। मरकजी हुकूमत हिंदुस्तान की हर शहरी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की सिमत में मुसलसल काम कर रही है। मरकजी हुकूमत की गवर्नेंस ने जो कुछ हासिल किया है वह हर हिंदुस्तानी शहरी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए गैर इम्तियाजी हुक्मरानी की फराहमी को यकीनी बनाना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के विज़न, खिताब और इकदामात ने यह जाहिर किया है कि तरक्की के ज़रिया बाख्त

प्यार बनाना ही समाजी नाहमवारियों को दूर करने का वाहिद बामाना हल है। इनके जरिया चलाई जा रही फलाही स्कीमों का अकलियतों को फ़ायदा उठाना चाहिए। वजारत ने अकलियती बिरादरियों की बहबूद के लिए वज़ीर आज़म के नए 15 निकाती प्रोग्राम नाफिज किया। यह एक वसी प्रोग्राम है जिसमें हिस्सा लेने वाली वजारतों महकमों की मुख्तलिफ स्कीमों पहलुओं का अहाता किया गया है, जिसका मकसद यह यकीनी बनाना है कि मरकजी तौर पर 6 अकलियती बिरादरियों के पसमानदा और कमज़ोर तबकात को मुख्तलिफ सरकारी फलाही स्कीमों से फ़ायदा उठाने के मसावी मौके मयसर हों। मुल्क की इक्तसादी तरक्की प्रोग्राम के तहत तालीम के मौके को बढ़ाना अकलियतों के लिए इक्तसादी सरगर्मियों और रोज़गार में मसावी हिस्सा को यकीनी बनाना मौजूदा और नई स्कीमों के ज़रिए खुद रोज़गार के लिए बेहतर क्रेडिट सपोर्ट और रियासती और मरकजी हुकूमत की मुलाजमतों में भर्ती बुनियादी ढांचे की तरक्की की स्कीमों में इनके लिए मुनासिब हिस्सेदारी को यकीनी बनाकर अकलियतों की ज़िंदगी के लिए हालात को बेहतर बनाना शामिल हैं। अकलियती अमूर की वजारत ने मुस्लिम खवातीन की सलाहियतों को बरूए कार लाने के मकसद से कई फलाही स्कीमें चला रही है, जिनमें सीखो और कमाओ, नई मंजिल वगैरह में कम अज कम 30% नशिस्तें खवातीन ट्रेनेज के लिए मुख्तस हैं। वहीं नई रोशनी के नाम से इस प्रोग्राम का मकसद खवातीन को तरबियत फराहम करके बाएख्तियार बनाना है। मुल्क भर में अकलियती बिरादरियों को समाजी, इक्तसादी और तालीमी तौर पर बाएख्तियार बनाने के लिए मुख्तलिफ स्कॉलरशिप स्कीमें शुरू की गई हैं। स्किल इंडिया स्कीमों से मुस्तफीद होने वालों में से तकरीबन 22.7% मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। इस प्रोग्राम के तहत अकलियतों यानी ईसाइयों, सिखों, जैनियों, मुसलमानों, बौद्धों और पारसियों की फलाह व बहबूद के लिए पूरे मुल्क में मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ वजारतों महकमों ने बेहतर काम किए हैं। मरकजी हुकूमत तुलबा की तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए कई स्कॉलरशिप भी दे रही है, जैसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप स्कीमें शामिल हैं। वहीं अकलियती बिरादरियों के तुलबा को MPhil और PhD जैसी आला तालीम हासिल करने के लिए माली मदद फराहम करती है। इसके अलावा मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन स्कीम भी नाफिज है, जिसके तहत 9वीं से 12वीं जमात में पढ़ने वाली अकलियतों से ताल्लुक़ रखने वाली होनहार लड़कियों के लिए बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप, नया सवेरा मुफ्त कोचिंग और एलाइड स्कीम, जिसका मकसद अकलियती बिरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा तालबात की महारत और इल्म को बढ़ाना है, जिसके तहत गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट सतह पर तकनीकी और पेशा वाराना कोर्सेज में नामवर अदारों में दाखिला हासिल करने के लिए वजीफा दिया जाता है। सीखो और कमाओ ये अकलियतों के लिए हुनर की तरक्की का एक इकदाम है और इसका मकसद अकलियती नौजवानों की काबिलियत, मौजूदा माशी रुझानात और मार्केट की सलाहियत के लिहाज से मुख्तलिफ जदीद रवायती हुनर में अपग्रेड करना है, जिससे वह मुनासिब रोज़गार हासिल कर सकते हैं या इन्हें खुद रोज़गार के लिए मुनासिब तौर पर हुनरमंद बनाना है। अकलियती अमूर की वजारत ने रवायती फ़नून दस्तकारी बराए तरक्की उस्ताद में हुनर और तरबियत को अपग्रेड करना स्कीम के तहत एक मिशन शुरू किया है, ताकि मुल्क भर के अकलियती दस्तकारों और खाना बनाने के माहिरीन को उनकी नुमाइश और मार्केटिंग के लिए एक मुअस्सर प्लेटफार्म
فراہم کیا جا سکے۔ وزارت کے زیر اہتمام

हुनर हाट्स के जरिया बेहतरीन दस्तकारी और शानदार तरीके से तैयार करदा मसनूआत को वजारत ने कौमी शोहरत के अदारों यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग IIP को डिज़ाइन की मुदाखलत मसनूआत की रेंज की तरक्की पैकेजिंग के लिए मुख्तलिफ क्राफ्ट क्लस्टरों में काम करने के लिए तैयार किया है। नुमाइशें और ब्रांडिंग के तहत अब तक दिल्ली पुडुचेरी मुंबई प्रयागराज जयपुर अहमदाबाद हैदराबाद इंदौर रांची लखनऊ रामपुर मैसूर भोपाल सूरत वृंदावन देहरादून और गोवा में 35 हुनर हाट का इनाकाद किया गया है। इसके नतीजे में 5 लाख से ज़्यादा कारीगरों और इनसे वाबिस्ता लोगों को रोज़गार के मौके फराहम हुए हैं, जिनमें से 50% से ज़्यादा मुस्तफीद ख़वातीन हैं। नई मंजिल अक्लियती बिरादरियों के नौजवानों को तालीम और हुनर की तरबियत फराहम करने की स्कीम, इसके तहत गरीब नवाज रोज़गार का तरबियती प्रोग्राम अक्लियती बिरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों को कलील मुद्दती मुलाजमत पर मुबनी हुनरमंदी के कोर्सेज फराहम कर रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY स्किल इंडिया मिशन के तहत स्किल इंडिया डेवलपमेंट और इंटरप्रेन्योरशिप की वजारत एक फ्लैगशिप स्कीम को नाफिज कर रही है, जिसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम से जाना जाता है। इसका मकसद 1 करोड़ लोगों को हुनर फराहम करना है। वहीं नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फिनांस कॉरपोरेशन NMDFC लोन स्कीम के तहत पसमानदा तबकात की सामाजिक और इक्तसादी तरक्की के लिए खुद रोजगार और आमदनी पैदा करने वाली सरगर्मियों के लिए रियायती कर्ज़े फराहम करती हैं। वहीं मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे के मुताबिक 97.2% मुसलमानों ने अपग्रेड शुदा बैतुल खुला तक रसाई हासिल की, जबकि 94.9% ने पीने के पानी के बेहतर ज़राए हासिल की। 31 मार्च 2014 के बाद 50.2% मुस्लिम घरानों ने अपनी पहली खरीदारी या नए घर की तामीर की। 818 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को भी 20% और उससे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले 88 मुस्लिम मरकूज अजला में मंजूरी दी गई है, जिनमें से 657 काम कर रहे हैं। फ्लैगशिप PM जन धन योजना के जरिया कायम किए गए अकाउंट्स में से 42% मुसलमानों के हैं। यह हुकूमत की कामयाब कोशिशों की निशानदेही करते हैं। मरकजी हुकूमत ने गुज़िश्ता 12 वर्षों में नाकाबिले फरामोश उसूलियाबी हासिल की है, जिसके तहत हिंदुस्तान दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी मईशत से आगे बढ़कर 5वीं सबसे बड़ी मईशत बन गई है। इस दौरान हुकूमत ने डिजिटल क्रांति UPI मंसूबा को कामयाबी के साथ नाफिज किया है, जो दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट के तौर पर कायम हुआ है। वहीं जबान की सतह पर भी हुकूमत के फलाही काम को आवाम तक पहुंचाने के लिए खुसूसी पहल की गई है। वजारत तालीम महकमा के तहत आने वाली कौमी जबान उर्दू भाषा विकास परिषद NCPUL के जरिया खुतबात मोदी नामी किताब का इजरा लाल किला की फसील से किया गया है। यह किताब वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिया 2014 से 2025 तक के तकारीर का उर्दू में तर्जुमा है, जिसका मकसद जबान के फरोग और अवाम के दरमियान बड़े पैमाने पर राबता को यकीनी बनाना है। वहीं एक जिला एक प्रोडक्ट स्कीम मुतअद्दिद कारीगरों के लिए लाइफ लाइन बन गई है। मोदी हुकूमत का सबका साथ सबका विकास का नुक्ता नज़र, जिसका मकसद तमाम शहरियों को उनके मजहबी पस मंज़र से क़त नज़र एक ज़्यादा जामे मुआसरा और समाजी हम आहंगी को फ़रोग देना, दर हकीकत निचली

रौज़े अतहर से छन कर आए जो, रौज़े अतहर से छन कर

मुझको उस प्यारी हवा से इश्क है, मुझको उस प्यारी हवा से इश्क है।

परवेज़ अख्तर से आप ये नातिया कलाम समाअत फरमा रहे थे, और इसके बाद आइए सामीन, वक्त हो जाता है हमारी अगली पेशकश बसमे मौसीकी का। लीजिए, इसमें हम जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल आपकी समातों के हवाले किए दे रहे हैं, मुलाहिज़ा फरमाएँ।

सामीन मुन्नी बेगम की आवाज़ में आप इस गज़ल को समाप्त कर रहे थे, और अगली गज़ल जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो जगजीत सिंह की है। लीजिए आपके समातों के हवाले।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडिया वेव बैंड के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं अब।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

शान फिल्म में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और उषा मंगेशकर को। आनंद बख्शी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

खुद्दार फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था राजेश रोशन ने।

पापा कहते हैं। इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण के आवाज़ में। जावेद अख्तर के लिखे इस गाने को संगीत दिया था राजेश रोशन ने।

आशा भोसले और कुमार सानू को अभी आप सुन रहे थे फिल्म जान तेरे नाम में। समीर के लिखे इस गाने को संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है लोकगीतों का हमारा कार्यक्रम।

0: लोकगीतों के कार्यक्रम में आज आपने सुना शारदा सिन्हा, पूनम कुमारी, पार्वती मिश्रा, अरविंद कुमार झा और विभा सिन्हा को। इसी के साथ लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। इस समय दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का हमारा कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आज सुनिए बांसुरी वादन में राग अहिर भैरव, आलाप जोड़ और झाला। कलाकार हैं रोनू मजुमदार और किशन महाराज।
1: नमस्कार। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे साथ तबला बजाने के लिए परम पूज्य मेरे गुरु समान पंडित किशन महाराज जी मंच पर आशीर्वाद देने के लिए बैठे हुए हैं। मैं जब भी इनकी तरफ देखता हूं तो मुझे अपने गुरु की छवि दिखाई देती है इनके चेहरे पर। इनके साथ एक मंच पर बैठना बड़े सौभाग्य की बात है और ये संभव हुआ तो इन्हीं के आशीर्वाद से। मैं इस लायक तो नहीं हूं, मगर जो भी मैंने टूटा फूटा सीखा है वो प्रस्तुत है। शुरू करने से पहले मैं परम पूज्य महाराज जी, चाचा जी से आशीर्वाद चाहता हूं और उपस्थित गुणीजनों से सबसे मैं इजाजत चाहता हूं। प्रस्तुत है राग अहिर भैरव, आलाप जोड़ झाला और दो बंदिशें ताल धमार और तीन ताल।

अभी आप रोनू मजुमदार के स्वर में बांसुरी वादन का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
2: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
3: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमा नाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
2: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से और विनोद खड़ से।
3: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। तो विमलेश जी कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
2: जी।
3: तो आज
2: आज अजीत जी जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों ना बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की
3: जी। विमलेश जी हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
2: जी।
3: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश अफ्रीका।
2: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना
3: जी। बिल्कुल आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की
2: जी।
3: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
2: अजीत जी कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
3: बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना जो बोले सो

0: कुंडा खोले
1: जी।
0: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी।
1: जी बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथोपिया के एक गांव में कुछ चरवाए पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
0: तो क्या हुआ फिर?
1: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजी जी, अब आप आगे बताइए ना।
0: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना, तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ।
1: जी
0: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया।
1: जी
0: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की।
1: जी
0: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है,
1: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओं, अब हम चर्चा करेंगे इथोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान, मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
0: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
1: जी,
0: हैं। फिर क्या होता है विमलेश जी?
1: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
0: वाह वाह जी,
1: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
0: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
1: जी,
0: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेवेना कहते हैं
1: जी।
0: फिर कॉफी परोसी जाती है।
1: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है, जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है
0: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है
1: जी।
0: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
1: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
0: तो श्रोताओं, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है। इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है।
1: जी हाँ श्रोताओं, तो कैसी लगी इथियोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
0: और अब आज का प्रश्न सुनिए, आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है।
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है हमको प्यारा।
1: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एनसीईआरटी असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें, और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील।

0: चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर ये अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी लक्ष्मी, वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
2: अरे
1: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
2: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर चोट मत खा जाना।
1: हाँ अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
2: हाँ?
1: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही है। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
2: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
1: क्लिक। लक्ष्मी इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
2: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मूलायार पर बांध बनाया गया।
1: अच्छा।
2: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं। और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
1: ओ, तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
2: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
1: हाँ ये तो दिख ही रहा है।

0: वैसे ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो हम उनसे पूछते हैं, वो यहीं के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ चलो
1: चलो। एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ कहिए।
1: जी मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
1: जी
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
0: जी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल

0: का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
1: अच्छा कमल जी,
0: जी
1: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
0: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
1: ओह,

0: ये जगह उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहाँ खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहाँ के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।
1: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
2: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
3: जी।
1: अच्छा,
2: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है। ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
3: अच्छा? बिल्कुल ठीक कहा आपने।
2: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
1: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
2: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
3: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
1: अच्छा।
3: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
1: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
2: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
1: बाय
0: बाय।
1: ओके,

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हाँ।
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
0: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग।
3: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यही लॉन में बैठते हैं।
0: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ हाँ, तो सुनीता जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
3: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल की रहने वाली हैं।
3: क्यों नहीं।
0: कमल जी,

0: बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
1: अच्छा।
0: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ जैसा कि पिताजी कहते हैं उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है। मतलब ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
2: अच्छा अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
1: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुंचती है।
2: वांडी पेरियार?
1: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
2: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
1: हाँ बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडु नाम की जगह है
2: जी,
1: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
2: अच्छा।
1: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
2: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना?
0: यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
1: हाँ ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी, वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुँचती है।
2: अच्छा।
1: और इडुक्की के बाद इसमें नेरियामंगलम के पास ईडा मलयार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है, और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथातन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह, और इन सबका पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
0: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
1: हाँ।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: अच्छी।
1: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
2: और दूसरी इलूर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियां तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
0: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
1: जी हाँ, मगर दुनिया

0: में लगे हुए।
1: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
2: तो करो ना सुनीता।
1: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पहरियार से।
0: बिल्कुल।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि यह कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: NCERT यह प्रायोजित कार्यक्रम आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से सुन रहे थे। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

आकाशवाणी दरभंगा से प्रस्तुत है नए जमाने के नए तराने। पहला गाना सुनिए अरुण देव यादव की आवाज में, फिल्म है दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी।

0: नए जमाने के नए तराने, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा से।
1: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
2: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
3: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
2: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
1: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
0: नए जमाने के नए तराने, आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना सुनिए अरिजीत सिंह और शाश्वत सिंह की आवाज में, फिल्म मेट्रो इन दिनों।

नए जमाने के नए तराने आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना हमने लिया है फिल्म भोला से, आवाज है जावेद अली की, नजर लग जाएगी।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
3: नए जमाने के नए तराने आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना सुनिए जुबिन नौटियाल की आवाज में, फिल्म है रेड 2।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
3: नए जमाने के नए तराने। अगला गाना सुनिए, अरिजीत सिंह की आवाज में, फिल्म है लापता लेडीज ओ सजनी रे।

अभी आपने फिल्म संगीत का आनंद लिया। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं महिला श्रोताओं को संबोधित हमारा विशेष कार्यक्रम नारी संसार।

स्वागत है आप सभी श्रोता बहनों का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम नाड़ी संसार में। नमस्कार श्रोताओं, आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी प्रेरणा। आज फिर से होगी कार्यक्रम में ढेरों सारी बातें, साथ ही आप सुनेंगे प्यारे प्यारे फिल्मी गीतें। बहनों, कार्यक्रम में हम आज सबसे पहले बातें करेंगे सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हर साल 10 जून को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक विविधताओं के सम्मान, आपसी समझ और वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देना है। यह दिवस इस बात पर जोर देता है कि सभी सभ्यतागत उपलब्धियां मानव जाति की सामूहिक विरासत है। इसका सीधा मतलब है कि दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों, धर्मों और ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों के लोगों के बीच आपसी बातचीत को बढ़ावा देना है। यह दिन इस बात को रेखांकित करता है कि दुनिया की सभी सभ्यताएं मानव जाति की साझा विरासत है और कोई भी संस्कृति किसी से छोटी या बड़ी नहीं होती। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी शुरुआत 2024 में की थी, जिसका उद्देश्य विभिन्न सांस्कृतियों और समाजों के बीच आपसी समझ, सम्मान और सहयोग को बढ़ावा देना है। बहनों, इस विषय पर हम आगे भी बातें करेंगे, लेकिन आइए पहले सुनते हैं ये गीत।

0: घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आइब रहल छी एक ही क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी।
1: बहनों, इससे पहले आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आपको ये संगीत पसंद आया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ती हूँ अपनी चर्चा की ओर। बहनों, हम बातें कर रहे थे सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसका उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों और समाजों के बीच आपसी समझ, सम्मान और सहयोग को बढ़ावा देना है। चीन द्वारा प्रस्तावित और लगभग हजारों से अधिक देशों द्वारा सह प्रायोजित प्रस्ताव इस बात पर जोर देता है कि सभी सभ्यता उपलब्धियों मानव जाति की सामूहिक विरासत का गठन करती हैं और यह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को प्रोत्साहित करने तथा भेदभाव को समाप्त करने की वैश्विक अपील का प्रतीक है। बहनों, सभ्यताओं के बीच संवाद के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को गहराई से समझने और उसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए हमारे भीतर बचपन से ही एक दूसरे की रहन सहन, धर्म संस्कृति को समझने, सम्मान करने और मिलकर रहने का है। बहनों, अपने बच्चों को अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं और त्योहारों के बारे में बताएं और उनका आदर करना सिखाएं। विभिन्न सभ्यताओं की लोक कथाएं और इतिहास पढ़ाएं, जिससे वे जुड़ाव महसूस करेंगे और दूसरों की पहचान को भी उतना ही सम्मान जगह देंगे। हम सभी नागरिकों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हर सभ्यता में प्यार, दया और परिवार जैसी चीज़ें सामान्य होती हैं। हमें दूरियों के बजाय इन समानताओं पर फोकस करना चाहिए। जब हम सभी नागरिक एक दूसरे के अलग अलग कल्चर, धर्म और विचारों को समझते हैं, तो पूरी दुनिया में भाईचारा और शांति बढ़ाने का एक जरिया निकलता है। यही समझ दुनिया में अमन और भाईचारा कायम रखने की असली बुनियादी है। दुनिया भर में शांति तथा सहयोग बनाए रखने के लिए आपसी तालमेल और समझ, प्यार, सम्मान एवं संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बहनों, भाईचारा का जो सहयोग होता है, आपसी सहयोग, एक दूसरे का सम्मान, ये हमारे लिए और हमारे राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी जगह घूमे फिरे और सभी संस्कृतियों को समझे और अपने बच्चों को भी समझाए। तो बहनें, बातें आगे भी करेंगे, लेकिन आइए सुनते हैं फिर से एक और गीत।

साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल मालूम।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: अंतराल से पहले सुन रहे थे फिल्म संगीत से ओ रब्बा कोई तो बताए। कलाकार थे अनुराधा पौंडवाल, सुरेश वाडकर। बहनों, इसी के साथ फिर से बढ़ती हूँ अपनी चर्चा की ओर। बदलती दुनिया में महिलाओं की भूमिकाएं अब केवल घर परिवार तक सीमित नहीं, बल्कि वे हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही है। शिक्षा, तकनीकी, व्यवसाय और राजनीतिक में उनकी बढ़ती भागीदारी समाज में एक नई दिशा भी दे रही है। आज की महिलाएं केवल घर के कामकाज तक ही नहीं, बल्कि कामकाजी होने के साथ साथ वे पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों में सहेजने में बहुत भूमिका निभा रही है। वे वैश्विक स्तर पर नीति निर्माण और प्रशासनिक पदों पर भी महिलाओं की मौजूदगी से समाज में अधिक संवेदनशील और समावेशी फैसले लिए जा रहे हैं। सेना, अंतरिक्ष विज्ञान और खेल जैसे क्षेत्रों में महिलाएं नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। आज महिलाएं केवल नौकरी में भागीदार ही नहीं ले रही हैं, बल्कि वे रोजगार पैदा करने वाले व्यवसाय भी शुरू कर रही हैं, जिसे वे आत्मनिर्भर बनती ही हैं, साथ ही अन्य महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। महिलाओं ने अपने नेतृत्व क्षमता और संघर्ष से समाज की पुरानी रूढ़ियों को तोड़ा भी है। वे न केवल स्वयं आगे बढ़ रही हैं, बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक भी बन रही हैं। बदलती दुनिया में हर महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर और शिक्षित होना जरूरी है, ताकि वे हर क्षेत्र में नेतृत्व कर सके। जब आप सशक्त होंगे तो अपने परिवार, बच्चों और खुद के लिए सही फैसले ले पाएंगे। यहाँ तक कि बहनों, आप आर्थिक रूप से भी निर्भर होते हैं, साथ ही अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य दे पाएंगे। आत्मसम्मान के साथ जीने और समाज में बदलाव लाने के लिए महिलाओं को हर क्षेत्र में सशक्त होना बेहद जरूरी है। तो बहनों, अपने हुनर को देखें, पहचानें और शिक्षा के जरिए कैरियर और तकनीकी के दम पर आगे जरूर बढ़ें, और हर महिलाओं को भी प्रेरित करें। आसपास के घर के आसपास बहुत सारी महिलाएं हैं जो कम पढ़ी लिखी भी होती हैं, उन्हें आप मोटिवेट करें, उत्साह जगाएं उनके अंदर, आत्मविश्वास जगाएं और उनके हुनर को पहचानें, और उन्हें पहचान के जरिए उन्हें आगे बढ़ने के लिए भी कहें। महिलाएं घर से, हर महिलाओं के अंदर जो है, आपको सिलाई कढ़ाई, पापड़ बनाना, घर का जो छोटा मोटा खाना बनाना होता है, उनके जरिए भी आप उसे भी आप रोजगार के क्षेत्र में लगाकर आप व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो अपने साथ साथ आसपास की महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित जरूर करें। इन्हीं बातों के साथ बहनों, कार्यक्रम में बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और गीत।

तो बहनों ये था आज का कार्यक्रम, आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। हमारा पता है कार्यक्रम नाड़ी संसार द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड है 8460004। बहनों इसी के साथ आज के कार्यक्रम से दीजिए प्रेरणा को अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक अवसर देश की जनता द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जताए गए अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से देश की सेवा करते रहे और देश का जो भविष्य बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, उस संकल्प में हम सभी 140 करोड़ देशवासी संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में इस अवसर पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच एआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपट

0: करने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजारों में आज 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 420 अंक बढ़कर 74,339 और निफ्टी 106 अंक बढ़कर 23,348 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आकाशवाणी दरभंगा सबसे कुछ ही देर के बाद आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। आवाज होगी मन्ना डे की, फिल्म होगा वंदनी। समय होगा दोपहर के 1:10 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे दोपहर 1:15 से। हमारे पटना केंद्र से सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। समय होगा दोपहर के 2:00। इलाकाई खबरें दोपहर के 2:05 पर। दोपहर 2:10 पर सुनिएगा रोजगार सूचना। दोपहर समाचार का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा दोपहर के 2:15 पर। दोपहर 2:30 पर आप आनंद ले पाएंगे फिल्म संगीत का। दोपहर 3:00 आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत। हमारी दूसरी सभा के आरंभ में संध्या 5:00 सुनिएगा युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी के अंतर्गत तरुण कुसुम। चर्चा का विषय होगा विज्ञान, नवाचार और युवा भारत। संध्या के 5:40 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार का प्रसारण संध्या 6:00। विद्यापति गीत का आनंद आप ले पाएंगे संध्या 6:10 पर। मैथिली संवाद सुनिएगा संध्या 6:25 पर। गांव घर यह कार्यक्रम आप सुन पाएंगे संध्या 6:30 पर। इसके अंतर्गत सुनिएगा कार्यक्रम घर अंगना। इसी के अंतर्गत सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस। खेती गृहस्थी कार्यक्रम का समय होगा संध्या 7:00। संध्या 7:30 पर सुनिएगा हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल। फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे संध्या 7:52 पर। सिंगरहार इस कार्यक्रम का प्रसारण करेंगे रात्रि 8:15 पर। समाचार संध्या के समय होगा रात्रि 8:45 पर और न्यूज एट 9 आप सुनिएगा रात्रि 9:00। रात्रि 9:15 पर सुनिएगा उर्दू खबर। रात्रि 9:30 पर सुनवाएंगे चर्चा का विषय है। इसका प्रसारण होगा हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 10:00 सुनिएगा कार्यक्रम लोक माधुरी। रात्रि 10:30 पर गीतों के रंग। 11:00 हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार का प्रसारण किया जाएगा। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। अब प्रस्तुत है देशभक्ति गीत। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है देशभक्ति गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म बंदनी से। आवाज है मन्ना डे की।

0: अभी आप देशभक्ति गीत सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ, प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा।

से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। पहला गाना सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म है कर्ज।

0: फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। कार्यक्रम जारी है संतराल के बाद।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गाना सुनिए मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाज में। राजेश रोशन का संगीत है फिल्म खुदगर्ज़।

0: फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम जारी है एक अंतराल के बाद।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गाना सुनिए अभिजीत और साथियों की आवाज में। बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने, फिल्म है बादशाह।

0: फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। कार्यक्रम जारी है एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है।

0: साथी
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज्ड नमक।
3: आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गाना सुनिए अनुराधा पौडवाल और पंकज उधास की आवाज में। संतोष आनंद के लिखे इस गीत को संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने। फिल्म है संगीत।

0: फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम जारी है एक अंतराल के बाद।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना सुनिए सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अनु मलिक ने। फिल्म है बॉर्डर।

अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज में। समीर और सुरेंद्र सेठ के लिखे इस गीत को संगीत दिया है रॉबिन भट्ट ने। फिल्म है सड़क।

अभी आप फिल्म संगीत का आनंद ले रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब से कुछ ही देर में आप हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1900

0: निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिनों का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिनों का हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को देश का सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार 2 कार्यकाल तक सबसे लंबी अवधि में निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में श्री चौधरी ने कहा कि उनके कार्यकाल में भारत के साथ साथ बिहार ने भी नई ऊंचाइयों को छुआ है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी बिहार को श्री मोदी का मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहेगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के 94 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खातों में लगभग 1100 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। श्री चौधरी आज नई दिल्ली स्थित बिहार भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत यह राशि अंतरित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गरीब, वंचित और जरूरतमंद वर्गों की सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रूपये से बढ़ाकर 1100 रूपये प्रतिमा कर दी गई है। श्री चौधरी ने 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र लोगों से शीघ्र आवेदन करने तथा आधार लिंक नहीं होने के कारण पेंशन से वंचित लाभुकों से जल्द आधार लिंक कराने की अपील की। विशेष निगरानी इकाई ने बहुचर्चित टेंडर घोटाले में भवन निर्माण विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता तारिणी दास, वित्त विभाग के पूर्व संयुक्त सचिव मुमुक्षु चौधरी और बुडको के कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। इन सभी के पास पिछले दिनों 11,53,00,000 रुपए से अधिक की राशि जब्त की गई थी। इकाई ने इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि आरबीआई इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद कर उनकी जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू करेगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। पीआईबी ने कहा कि आरबीआई के अनुसार इस महीने के अंत तक कागजी नोटों को बंद करने या उनकी जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू करने की कोई योजना नहीं है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा जिले में कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का भी पूर्वानुमान है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज के टेढ़ा गाछ में सबसे अधिक 57.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इधर राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 42.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास जिले का टेहरी

आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है रोजगार सूचना। भारतीय नौसेना भर्ती 2026, पद की कुल संख्या 60, आवेदन शुरू होने की तिथि 29 मई 2026, आवेदन की अंतिम तिथि 18 जून 2026। इच्छुक अभ्यर्थी इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा 2 जुलाई 2007 से 1 जनवरी 2010 के बीच जन्मे लोगों के लिए है। SSC CGL संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा 2026, कुल पद 12,256, आवेदन शुरू होने की तिथि 21 मई 2026 और अंतिम तिथि 22 जून 2026। न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 32 वर्ष। 1 अगस्त 2026 के आधार पर आयु की गणना की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती परीक्षा, कुल पद 11,127, आवेदन शुरू होने की तिथि 15 मई 2026, आवेदन की अंतिम तिथि 14 जून 2026। न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 30 वर्ष। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिव्यू ऑफिसर RO, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर ARO और कंप्यूटर असिस्टेंट CA के लिए कुल 543 पदों की रिक्तियां निकाली हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 1 जून 2026 और अंतिम तिथि 21 जून 2026 है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष कंप्यूटर असिस्टेंट हेतु और न्यूनतम आयु 21 वर्ष RO एवं ARO हेतु। अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। इच्छुक अभ्यर्थी इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। रोजगार सूचना समाप्त हुई।

0: हम एक हैं। भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंध जिसके तहत नागरिक बेरोक टोक इन दोनों ही देशों के बीच आवाजाही करते हैं। सीमा क्षेत्र के रहने वाले कभी घूमने निकल पड़ते हैं एक दूसरी ओर,
1: जनकपुर जाने के लिए आए,
0: कभी खरीदारी भी करते हैं। सामाजिक ताना बाना ऐसा कि इधर के लोग उधर या फिर उधर के लोग इधर करते हैं शादियाँ।
2: मैं चाहता हूँ कि मेरा शादी भी नेपाल में हो।
0: रहते हैं एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक।
3: एम्बुलेंस को फोन करते तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, दोनों पार के आदमी समस्या को सॉल्व करते हैं।
0: इन्हीं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आकाशवाणी दरभंगा लेकर आता है कार्यक्रम हम एक हैं, प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को रात 10:30 बजे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

0: भोर होते उठ जाओ किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घुराय लगैत अछि, ऊर्जा आबय वाला काल्हि लेल
1: प्रगति तखने भऽ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतनि।
2: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहि हैत तो खेती नहि हैत, आ खेती जँ नहि हैत उपजा नहि हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर
5: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब हमारे दिल्ली केंद्र से आप समाचार सुनेंगे।
6: समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की

0: विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
3: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, वे सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़ कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
4: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया, देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ

0: आवास को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रुपये की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
2: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
2: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
3: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस PNG की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि LPG कनेक्शनों को PNG

0: कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
1: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के पांचवे बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में NDA की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR एवं DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। पहला गाना सुनिए जावेद अख्तर की कलम से निकले। गीत को संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने, आवाज दी है सोनू निगम ने। फिल्म है दिल चाहता है।

फिल्म संगीत का आनंद आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से ले रहे हैं। अगला गाना सुनवा रहे हैं सुगेदन सिंह और सपना अवस्थी की आवाज में। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है AR रहमान ने। फिल्म है दिल से।

फिल्म संगीत का आनंद आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से ले रहे हैं। अगला गाना सुनिए लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में। फिल्म है दिल तो पागल है, संगीत दिया है उत्तम सिंह ने।

और अब सुनिए कार्यक्रम के अंत में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म ने उदित नारायण को। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है जतिन ललित ने।

इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का ये सफर यहीं खत्म होता है। दीजिए इजाजत। आकाशवाणी दरभंगा से भी आप फिल्म संगीत का आनंद ले रहे थे। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए सुषमा झा के सुर में कुछ गीत।

0: घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आब रहल छी एक ही क्लिक पर हमारे स्टेशन्स लाइव।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:20 हुए हैं। हमारी पहली सभा यहीं समाप्त होती है। दूसरी सभा के कार्यक्रमों के संग हम पुनः उपस्थित होंगे संध्या के 5:00। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: सोनाली जी, बड़ी अच्छी बात लिखी है हमारे एक साथी ने। उन्होंने लिखा है, नेत्रदान दिवस ये दिन नेत्र जैसे महादान के प्रति जागरूकता हेतु मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सभी नेत्रदान करने पर जागरूक हों और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। मैं खुद नेत्रहीन हूं, तो मैं समझ सकती हूँ कि नेत्रदान उनके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है जिनके पास आंखें नहीं होती है। इसलिए मैं आज हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप सभी जीवन में ये संकल्प लें कि आप नेत्रदान करेंगे, किसी की जिंदगी बचाएंगे। आपके एक नेत्रदान से कितनी जिंदगियां बन सकती हैं, और जो नेत्रदान से जुड़े हुए मित्र हैं उनसे दूर हैं। तो यही इनका कहना है कि हम ऐसे लोगों से जुड़ें और इस बात का प्रचार प्रसार करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नेत्रदान
1: कर सके। और मुझे ऐसा लगता है इनका कमेंट्स पढ़ के बहुत सारे लोगों ने मन में निश्चय भी कर लिया होगा कि मैं भी नेत्रदान करूंगी ताकि लोग इतनी सुंदर इतनी खूबसूरत दुनिया देख सके। और जब भी खूबसूरती का जिक्र चलता है तो हमें याद आती है बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां और साड़ी में जो स्त्री का सौंदर्य है ना और भी
0: झलक उठता है।
1: बहुत सुंदर दिखती है महिलाएं साड़ियों में। और आज हम साड़ियों का संसार, इसमें हम चंदेरी साड़ी जो मध्य प्रदेश की है तो उस बारे में जानकारी देंगे कि चंदेरी साड़ी भारत की प्रसिद्ध हथकरघा साड़ियों में से एक है। ये साड़ी मुख्य रूप से चंदेरी नगर में बनाई जाती है जो मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले में स्थित है। अपनी महीन बुनाई, हल्के वजन, पारदर्शी बनावट और सुंदर जरी कार्य के कारण चंदेरी साड़ी देश विदेश में अपनी विशेष पहचान रखती है।
0: इसे भारतीय वस्त्र कला का एक अनमोल रत्न माना जाता है। चंदेरी नगर का इतिहास 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। ये नगर प्राचीन काल से व्यापार, संस्कृति और कला का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। राजाओं महाराजाओं के संरक्षण में यहाँ की बुनाई कला विकसित हुई। कहा जाता है कि चंदेरी के वस्त्र इतने महीन होते थे कि उन्हें राजघरानों और शाही परिवारों के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाता था।
1: और मुगल काल में भी चंदेरी के कपड़ों की काफी मांग थी। उस समय के शासक और अमीर लोग चंदेरी के वस्त्र पहनना प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते थे। और चंदेरी साड़ी अपनी विशिष्ट खूबियों के कारण अन्य साड़ियों से अलग पहचान रखती है, जैसे अत्यंत हल्की और आरामदायक होती है, साथ ही महीन धागों से तैयार की जाती है।
0: और इसमें सुनहरी और चांदी जैसी जरी का सुंदर उपयोग किया जाता है। इसकी चमक लंबे समय तक बनी रहती है। पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रकार के डिजाइन्स उपलब्ध होते हैं।
1: और चंदेरी साड़ियों के प्रकार, जैसे कि शुद्ध रेशमी चंदेरी पूरी तरह से रेशम से निर्मित होती है साड़ियां, साथ ही चंदेरी कॉटन। अब जैसे कुछ लोगों को ना थोड़ी नरम, ज्यादा नरम साड़ियां पसंद है तो वे चंदेरी कॉटन साड़ियां पहन सकते हैं जो सूती धागों से बनी हल्की साड़ी होती है। साथ ही सिल्क कॉटन चंदेरी यानी रेशम और सूती धागों का मिश्रण होता है, और जरीयुक्त चंदेरी जो विशेष अवसरों और विवाह समारोह के लिए लोकप्रिय होती है। यानी जो प्योर जो रेशमी होती है वो थोड़ी महंगी होती है, कॉटन वाली जो चंदेरी होती है वो थोड़ी कम कीमत की होती है, वो हर कोई खरीद सकता है।
0: तो ये बताइए सोनाली जी कि आपके पास कौन सी चंदेरी साड़ी है?
1: मेरे पास सारी चंदेरी है, तीनों चंदेरी साड़ियां हैं।
0: क्या बात है।
1: मुझे शौक है तो पहनती हूँ, और बहुत सुंदर कलर, इतने चटक रंग होते हैं उसके। कॉटन चंदेरी में तो ऐसे लाइट पेस्टल कलर्स भी होते हैं, पिंक है, फिर पिस्ता कलर है, और जो प्योर सिल्क की होती है उसमें डार्क कलर होते हैं। उसमें ब्लैक कलर की चंदेरी साड़ी भी बड़ी सुंदर लगती है।
0: क्या बात है। चंदेरी साड़ी की असली पहचान इसके कुशल बुनकरों से है। पीढ़ी दर पीढ़ी अनेक परिवार इस कला को जीवित रखे हुए हैं। अधिकांश बुनकर परिवार बचपन से ही बुनाई की बारीकियां सीखते हैं। पहले चंदेरी साड़ियां पारंपरिक हाथकरघों पर बनाई जाती थी। आज भी अनेक बुनकर हाथकरघों का उपयोग करते हैं क्योंकि इससे साड़ी की गुणवत्ता और

0: कलात्मकता बनी रहती है। एक उत्कृष्ट चंदेरी साड़ी को तैयार करने में कई दिन, कभी कभी कई सप्ताह तक लग जाते हैं।
1: और बुनकर पहले डिजाइन तैयार करते हैं, फिर धागों से रंगते हैं, उसके बाद बड़ी सावधानी से करघे पर बुनाई करते हैं। साड़ी पर बने प्रत्येक बेल बूटे और जरी के नमूने के पीछे उनकी मेहनत और कौशल छिपी होती है।
0: चंदेरी साड़ी विश्व भर में प्रसिद्ध है, फिर भी बुनकरों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
1: और जैसे
0: मशीनों से बनी सस्ती नकली साड़ियों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, युवाओं का अन्य व्यवसायों की ओर आकर्षित होना, पारंपरिक हस्तकला को पर्याप्त आर्थिक लाभ ना मिलना, ऐसे कई कारण हैं।
1: तो चलिए अब क्या करें, अब एक गाना सुन ले।
0: बिल्कुल,
1: तो सुनते हैं गीत।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है सखी सहेली। और दो सखियां सहेलियां यहाँ पर बैठी हुई है, और घर में तो ढेर सारी अनगिनत सखियां सहेलियां और श्रोता भाई बैठे हुए हैं, और वे भी यही कह रहे हैं कि भाई जो आपने विषय लिया है घर में लोग चार और खाने के नखरे हजार, ये हमारी दुखती रख पे हाथ रख दिया है।
1: ओ हो हो हो लगता है हर कोई इसी समस्या से गुजर रहा है।
0: आपने तो दुखती रख पर हाथ रख दिया है, हर घर की यही समस्या है कि क्या बनाए जो सभी को पसंद आए। किसी को लौकी नहीं खाना तो किसी को आलू, लेकिन हमारे घर में नियम है कि हफ्ते में 6 दिन तो वही खाना पड़ेगा जो बना है, छुट्टी वाले दिन उनकी पसंद का खाना बनेगा।
1: बड़ा अच्छा,
0: बहुत अच्छी बात।
1: पुराने समय में ना भोजन को लेकर लोगों का दृष्टिकोण आज की तुलना में बहुत अलग था ना सोनाली जी।
0: बिल्कुल,
1: उस दौर में भोजन को केवल स्वाद का विषय नहीं बल्कि ईश्वर का प्रसाद और जीवन का आधार माना जाता था। घर में भी जो बनता था परिवार के सभी सदस्य उसी को प्रसन्नता से खा लेते थे। ये प्रश्न कम ही उठता था कि आज खाने में क्या बना है या क्या नहीं बना है। लोगों के मन में भोजन के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव होता था।
0: और हमारे दादा दादी और पूर्वजों के समय में भोजन के विकल्प भी सीमित थे ना निहा। कि मौसम के अनुसार जो अनाज है, सब्जियां हैं, फल उपलब्ध होते थे वही भोजन का हिस्सा होते थे। कई बार तो साधारण सी दाल रोटी भाकरी खिचड़ी चटनी के साथ ही पूरा परिवार संतुष्ट हो जाता था। खाने की मेज पर शिकायतों से अधिक अपनापन और बातचीत होती थी।
1: बिल्कुल, और बच्चों को भी बचपन से सिखाया जाता था कि थाली में परोसे गए अन्न का आदर करो और उसे व्यर्थ मत जाने दो। उस समय लोगों ने अभाव और संघर्ष को करीब से देखा था। कई परिवारों ने ऐसे दिन भी देखे थे जब दो समय का भोजन जुटाना तक कठिन होता था। इसलिए जब भोजन सामने आता था तो उसके स्वाद से अधिक उसके उपलब्ध होने की खुशी होती थी। अन्न का एक एक दाना मेहनत और पसीने का परिणाम माना जाता था। खेतों में किसानों की मेहनत, घर की महिलाओं का श्रम और प्रकृति की कृपा, इन सब का सम्मान भोजन के माध्यम से किया जाता था।
0: पर आज परिस्थितियां बदल गई है। आज अनगिनत जो है ना पदार्थ बाजार में उपलब्ध है।
1: हाँ, सच कहा आपने।
0: टीवी और सोशल मीडिया पर नए नए व्यंजन देखकर लोगों की और अपेक्षाएं बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप घर में साधारण भोजन बनने पर कई बार नाक भौं सिकोड़ ली जाती है। किसी को सब्जी पसंद नहीं, किसी को दाल फीकी लगती है, तो किसी को रोज का घर का खाना उबाऊ लगता है। वास्तव में पुराने लोगों की संतुष्टि का रहस्य उनकी सादगी और कृतज्ञता में था। वे जानते थे कि भोजन का उद्देश्य केवल जीभ को तृप्त करना नहीं बल्कि शरीर को पोषण देना है, इसलिए खाने में कमियां खोजने के बजाय उसे प्रेम पूर्वक स्वीकारते थे। और एक जरूरी बात है ना नेहा, कि पहले जब तक हमें भूख नहीं लगती थी तब तक हमें खाना दिया ही नहीं जाता था। यानी हम जब तक ना बोले कि अरे बहुत भूख लग गई। आजकल क्या होता है, बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर बाद मम्मियां खिलाती है कि खा लो बेटा फ्रूट, खा लो बेटा ड्राई फ्रूट, खा लो नाश्ता कर लो। सुबह एक बार हम लोग खाना खाते थे और शाम को खाना खाते थे।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: जब हमें बहुत तेज भूख लगती है ना उसमें, उस वक्त हमें सारा खाना बहुत टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट लगता है।
1: आज आवश्यकता है कि हम उस सोच से कुछ सीखें। स्वाद महत्वपूर्ण है लेकिन उससे कहीं ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है भोजन का सम्मान करना। जब हम थाली में परोसे गए अन्न के पीछे छिपी मेहनत को समझेंगे तब शिकायतें अपने आप कम हो जाएंगी। आखिरकार जिस घर में भोजन के प्रति आदर होता है वहाँ संतोष, प्रेम और सौहार्द भी बना रहता है।
0: बिल्कुल सही बात आपने कही, और एक इसी तरह की बातें हमारे श्रोताओं ने भी लिखी है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि हर घर की समस्या है, हर घर में सदस्य भले ही चार हो लेकिन उनके खाने के पसंद नापसंद की सूची इतनी लंबी होती है कि गृहिणियां अक्सर असमंजस में पड़ जाती है। कि किसी को तीखा पसंद है, किसी को फीका, कोई सब्जी नहीं खाता तो कोई दाल देखकर मुंह बनाता है। ऐसे में रोजाना यह तय किया जाना कि क्या बनाया जाए, ये बात किसी चुनौती से कम नहीं होती। फिर भी एक गृहिणी अपने प्रेम धैर्य और समर्पण से सबकी पसंद का ख्याल रखती है, इसलिए परिवार के सदस्यों का भी कर्तव्य है कि वे भोजन बनाने में लगी मेहनत का सम्मान करें और अनावश्यक नखरों से बचे, और जो गृहिणी है उसके साथ काम भी करे, उसके हाथ बटाए, तब पता चलेगा। अभी इतनी चिलचिलाती गर्मी है और किचन में जब खाना बनाते हैं थक जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, उस वक्त किसी ने कहा कि सब्जी अच्छी नहीं बनी है।
1: बाप रे, दिल की बातें निकल रही हैं सोनाली जी।
0: और जब डोसा बनाते हैं या जैसे थाली पीट बनाते हैं जिसमें बहुत तेज आंच पे बनाना, उस वक्त तो क्या कहने, पूरे पसीने से नहा कर निकलते।
1: मुझे

0: लगता है इस बात से सारी सखियां और वो सखा जो खुद भी किचन में मदद करते हैं या काम करते हैं वो इससे बिल्कुल सहमत होंगे। एक साथी लिखते हैं, हमारी दो कलियां हैं, दोनों के खाने पीने के बहुत नखरे हैं। आज की बात ले लो, श्रीमती जी पालक टमाटर की सब्जी बनाई किंतु छोटी बिटिया रानी सलाद से रोटी खाई। ये सब्जियां नहीं होना, जैसे कद्दू, बैंगन, गिलकी, लौकी, उनके गले नहीं उतरती। श्रीमती जी तंग हो जाती है इनके खाने के नखरों से। अच्छा, मैं एक सुझाव दूं सोनाली जी, मुझे जो मुझे अपना अनुभव लगता है कि जो चीजें अगर बचपन से खिलाई जाए तो हमारे जो टेस्ट बर्ड्स कहते हैं ना, तो हमारी जुबान को उस तरह के सारे टेस्ट की आदत हो जाती है,
1: डेवलप हो जाते हैं।
0: हाँ, वो टेस्ट डेवलप हो जाते हैं। तो अगर हम बच्चों को ये समझ कर कुछ चीजें नहीं देंगे कि अरे अभी तो वो छोटा है उसे क्या देना, तो नहीं, वैसा नहीं,
1: उसे करेला भी दीजिए,
0: उसे बचपन से वो सारी चीजें दीजिए, जब वो चीजें खाएगा तभी उसे उसकी आदत होगी।
1: और हम ऐसे कहते हैं कि अरे अचार तो उसे तीखा लगेगा, थोड़ा सा उसे वो भी दो।
0: हर
1: आप जो खाते
0: थोड़ी थोड़ी,
1: सब थोड़ी थोड़ी दो। अगर उसने मना किया, बहुत रोया तो बात अलग है, पर हर चीज को। और हम क्या करते हैं, इधर हम अचार नहीं खिलाते कि उसमें बहुत ज्यादा नमक है, बहुत ज्यादा तेल है, और इधर हम टमाटर सॉस दे देते हैं बच्चों को, तो बच्चे फिर टमाटर सॉस खाने के आदि हो जाते हैं, जबकि हमारे जो अचार होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए, और स्वाद कितना बढ़ाते हैं। और अब कार्यक्रम में स्वाद बढ़ेगा जब एक गाना सुनेंगे।
0: बिल्कुल, सुनवाइए और बढ़ाइए स्वाद।
1: सुनते हैं।

0: एक हमारे साथी ने कहा कि मैं तो भाई आज तक खाने की नखरी नहीं की, जो भी घर में बनता हूँ चुपचाप खा लेता हूँ। कितने अच्छे हैं ना, कितने
1: बहुत अच्छी
0: समझदार
1: बात है,
0: इंसान है।
1: ऐसे लोग घर में होना
0: हाँ, तो
1: चाहिए।
0: घर की जो गृहणियां हैं वो बड़ी खुश होगी, है
1: हाँ,
0: ना।
1: अब एक साथी ने ये भी लिखा है, भाई इस नखरे को संवाद की मधुरता के माध्यम से दूर किया जा सकता है, फिर इसके लिए आपसी समझ और सूझबूझ की भी जरूरत होती है, क्योंकि संवाद में त्रुटि होने पर उनमें से कोई भी नाराज हो सकता है, क्योंकि ये एक के स्वाद का महत्वपूर्ण संयोजन है। सेहत के लिए आगे अक्सर ही स्वाद को ही तरजीह देते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक संवाद के माध्यम से समस्या का हल करना अपेक्षित है। देखा इन्होंने कैसे स्वाद से जोड़
0: संवाद को।
1: दिया। हाँ वही।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि भाई छोटे छोटे बच्चे जो है इन्हें भी स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। पहले हम ऐसे देखते थे कि 60 साल की उम्र के बाद या 50 या 70 साल की उम्र के बाद में लोगों को हार्ट संबंधी तकलीफें हैं, पर आजकल छोटे छोटे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। उसके पीछे है पैक्ड फूड। जो पैक्ड फूड होता है वो भले ही स्वादिष्ट हो पर उसमें जो ऐसी चीजें मिली हुई होती है।
1: पूरी तरह से पाम ऑयल होता है
0: जी
1: सोनाली जी, सच में मैं भी यही कहूंगी कि पैक्ड फूड तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।
0: पर ये बच्चों को समझाए कौन, उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल होता है ना।
1: तो जरूरत ये है कि धीरे धीरे, पहली बात तो आप कोशिश करें कि उन्हें ये आदत ही ना लगे पैक्ड फूड खाने की,
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिनमें कुछ ऐसे तत्व मिले होते हैं जो हमें और उसी चीज की भूख बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमने कोई चिप्स खाया तो हमें वही और खाने का मन करेगा, तो ऐसे तत्व मिले होते हैं इसलिए
0: अभी
1: ऐसी।
0: मैं ट्रेन में सफर कर रही थी कुछ दिन पहले, तो माँ के हाथ में घर के तले हुए चिप्स थे, पर वो बच्ची जो रास्ते से जो बेचने वाला पैकेट वाले चिप्स जो थे उसी की तरह उंगली कर रही थी और बोल रही थी कि नहीं ये नहीं खाऊंगी मैं, वही खाऊंगी। क्योंकि घर के चिप्स जो होते सिर्फ नमक डाला होता है उसमें, और
1: सादे होते
0: उसमें
1: हैं।
0: टमाटर फ्लेवर है, फिर चीज फ्लेवर है, फिर और सारे ना जाने उसमें फ्लेवर डाले होते हैं जो बच्चों को बहुत स्वाद को उन्हें पसंद आता है बच्चों को।
1: सोनाली जी मैं एक ही बात कहूंगी कि बच्चों को वो स्वाद तभी पता चलेगा जब
0: जब
1: आप
0: हम
1: उन्हें
0: देंगे।
1: चखाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: अगर आप उन्हें ऐसी चीजें चखा ही नहीं रहे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये चीजें कैसी लगती हैं।
0: तो ये थोड़ा मुश्किल काम है कि दिखेगा तो बच्चे जिद करेंगे,
1: हाँ
0: और
1: ये तो
0: दोस्त सहेली
1: है।
0: ने खा लिया, दोस्त ने खा लिया, उसने इतना सा टुकड़ा दिया तो बोलेंगे वही चाहिए हमको। तो बच्चों की जिद के आगे तो माँ और पिताजी तो हतबल हो जाते हैं। वैसे एक हमारे साथी ने कहा है कि किसी को गर्म रोटी चाहिए, किसी को कुरकुरी, किसी को मीठा तो किसी को चटपटा। घर की रसोई भी रोज सोचती होगी आखिर सबका दिल एक साथ कैसे जीतूं, घर में चार लोग और खाने को लेकर होंगे नखरे, ऐसे भला भी कहीं हो सकता है। छोटी छोटी फरमाइशें तो घर घर को घर बनाती है। घर के नखरे भले ही हजारों, लेकिन जब माँ के हाथ का खाना सामने आ जाए बड़े बड़े नखरे भी चुपचाप थाली में बैठ जाते हैं। क्या बात है,
1: बड़ी प्यारी बात लिखी है।
0: और एक साथी लिखती है तो हर घर की समस्या है, घर में लोग चार, खाने के नखरे हजार, पूछिए मत। मेरे घर में दोनों बच्चे हैं, दोनों को एक दूसरे के विपरीत, एक को मीठा तो दूसरे को नमकीन। अब हम गृहिणियों को बड़े ध्यान से खाना ना बनाना पड़ता है कि क्या करें, यही जीवन है। एक लिखते कि मेरे और मेरे बच्चों के खाने की कोई नखरे नहीं है, जो सब्जी दाल पूरा खाना शांति से खा लेते हैं। कभी कभार तीज त्योहार पर कुछ स्पेशल बन जाता है तो सब खुश हो जाते हैं। क्या बात है, बहुत नसीब वाले हैं।
1: हाँ सच में। एक साथी ने लिखा है कि एक अच्छा, मतलब उनका ये कहना है कि जब हम घर में बचपन से सिखाएंगे लोगों को कि बच्चों को कि किस तरह से चीजें खानी है और थाली में दिया हुआ अन्न नहीं छोड़ना है, तो धीरे धीरे उनकी आदत वैसी ही बनेगी और वो सीख जाएंगे, आदत लग जाएगी तो सीख जाएंगे। तो बिल्कुल सही कहा है।
0: तो यानी आदत लगाने के लिए संवाद की जरूरत है नेहा। जब हम बातचीत करेंगे, एक दूसरे से संवाद रखेंगे तभी तो पता चलेगा, तभी तो हम बच्चों को समझाएंगे। नहीं तो बच्चा मोबाइल में उलझा हुआ है और मम्मा भी मोबाइल में उलझी हुई है तो मम्मा को लगेगा कि चलो ठीक है रख दिया उसके सामने तो कुछ खा ले, ऐसा नहीं। बच्चों को भी अच्छी अच्छी बातें संवाद के माध्यम से समझाई जा सकती है। एक साथ ही लिखते हैं, एक अच्छा और प्रभावी संवाद वह है जो सामने वाले को आसानी से समझ में आए और बातचीत को आगे बढ़ाए। संवाद की प्रभावशीलता और उसकी सरलता, स्पष्टता और सम्मानजनक भाव पर निर्भर करती है। संवाद में ऐसे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जो समझने में आसान हो। जटिल या भारी भरकम शब्दों से बचना चाहिए। बातचीत बनावटी नहीं लगनी चाहिए। जिस तरह से हम सामान्य जीवन में बातें करते हैं संवाद बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा कि कभी कभी ये हो जाता है कि हम लोग बनावटी हो जाते हैं। मैं ये कहूंगी कि हर व्यक्ति कभी ना कभी बनावटी हो जाता है, उसे लगता है कि शायद उस परिस्थिति में वही सही है। हो सकता है कि किसी परिस्थिति में थोड़ा बनावटी होना सही हो, मगर

0: हमारे रोज के संवाद, हमारे घर पर जो संवाद है उनमें हमेशा सत्यता होनी चाहिए ताकि हमारे रिश्तों में सत्यता बनी रहे। एक साथी लिखते हैं, आपसी संबंधों को मजबूत, गहरा और भरोसेमंद बनाने के लिए प्रभावी संवाद कौशल सबसे बड़ा माध्यम है। रिश्तों में अक्सर दूरियां बातचीत की कमी या गलत तरीके से बात करने की वजह से आती हैं। दिन में कुछ समय आपसी संवाद के लिए होना चाहिए, उस वक्त मोबाइल या कोई गैजेट्स बीच में नहीं होना चाहिए। साथ ही बातचीत में आदर, विनम्रता और सकारात्मक व्यवहार झलकना चाहिए। सोनाली जी, अभी तो ऐसा हो गया है कि जब घर के चार लोग भी अगर साथ में बैठे हैं, हर कोई अपना फोन लेकर बैठ जाता है और कभी कभी तो ये हो जाता है कि वहीं पे मैसेज में बात कर लेते हैं लोग, कि अगर एक कमरे में और दूसरे कमरे में है तो मैसेज में बात कर लेते हैं कि अरे वो उस कमरे में ये रखा है क्या, वहां से देख लो,
1: या फिर खाना तैयार है कि नहीं, हम आए क्या डाइनिंग टेबल पे, इस तरह से इन्हें मदद करना तो बहुत दूर की बात है, बस पूछ लिया और वो रहनिया है जो वो भी मैसेज लिख देती है हाँ हाँ खाना रेडी है आ जाइए।
0: तो ऐसी चीजें अवॉइड करें और कोशिश करें कि आप संवाद साझा करें।
1: और आप क्या करें,
0: गाना सुन लेते हैं, संवादों के बीच में थोड़ा ब्रेक भी जरूरी है,
1: तो चलिए गाना सुनते हैं।

तो सोनाली जी, अभी तो हमने बातें कर ली कि कितने सारे नखरे करते हैं लोग खाना खाने में, और घर में लोग चार और व्यंजन हजार, और अब हम ही बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम बचा सकते हैं नखरे करने से, व्यंजनों को अलग तरीके से बना के। मतलब सब्जी तो वही हो।

0: होगी रोज वाली, मगर कुछ अलग तरीके से बनाएंगे ताकि किसी को बोर ना लगे, अंदाज नया रहे और मजा भी आए।
1: तो बताइए।
0: तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो रेसिपी आई है वो आई है सब्जी वही अंदाज नया, परवल पोश्तो सब्जी। ये सब्जी इन्होंने लिखा है, ये सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती है, मैंने इसे अपनी बंगाली मित्र से सीखा है। इसके लिए सामग्री है परवल 250 ग्राम छील कर लंबाई में कटे हुए, खसखस 3 बड़े चम्मच, हरी मिर्च और अदरक 2 चम्मच कूटा हुआ, पंच फोड़न सूखी लाल मिर्च 1 या 2, हल्दी आधी छोटा चम्मच, नमक स्वादानुसार, करीब आधा चम्मच शक्कर और सरसों का तेल। बनाने की विधि, खसखस को 1-2 घंटे पानी में भिगोकर पेस्ट बना ले। कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर परवल को तब तक तलें जब तक वो सुनहरे भूरे ना हो जाएं। तले हुए परवल को अलग निकाल लें, बचे हुए तेल में पंच फोड़न और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाएं। अब तैयार किया हुआ खसखस का पेस्ट, कूटा अदरक, हरी मिर्च डालें, इसमें थोड़ा सा नमक और चीनी मिलाएं। धीमी आंच पर मसाले को तब तक भुने जब तक खसखस का कच्चापन दूर ना हो जाए और उसमें से सौंधी खुशबू ना आने लगे। अब इसमें तले परवल डालें और ढककर 8 से 10 मिनट पकाएं। ऊपर से एक छोटा सा चम्मच कच्चा सरसों का तेल और 2 कटी हुई हरी मिर्च डालें। अब गर्मा गर्म सब्जी चावल या रोटी के साथ परोसे।
1: अभी तो परवल कितनी आ रही है ना बाजार में, तो मैं तो ट्राई करूंगी। नेहा, क्या आप ट्राई करूंगी ये सब्जी?
0: बिल्कुल, सुनने के बाद तो लग रहा है कि ये कुछ नया ट्राई करना
1: बहुत टेस्टी हो गया ना। एक
0: चाहिए।
1: हमारे साथी ने लिखा है, सिंधी साई भाजी, पालक की सब्जी के साथ चने की दाल, 500 ग्राम ताजी हरी पालक धोकर बारीक कटी हुई, भीगी हुई चने की दाल करीब 200 ग्राम, प्याज टमाटर हरी मिर्च अदरक कटी हुई, प्रेशर कुकर में तेल डालकर प्याज को हल्का गुलाबी करके सारी सामग्री डालकर हल्दी, पिसा हुआ धनिया और नमक स्वाद अनुसार डालकर सीटी लगा लेना है, फिर कलची से घुमाकर लहसुन का तड़का लगाना है। सिंधी साई भाजी तैयार है, पुलाव के साथ परोसने से स्वाद दुगना हो जाता है।
0: क्या बात है। एक साथी ने लिखा है, अरबी, ये प्याज की ग्रेवी के साथ भी बहुत अच्छी बनती है और ये सरसों के मसाले के साथ सूखी सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट बनती है।
1: और साथ ही एक साथी ने लिखा कि बैगन बड़ी आप कोई भी ले सकते हैं, मूंग या चना, उड़द, जो आपको पसंद है। बैगन को काट कर नमक वाले पानी में डाल दे, बैगन को बड़ी को गर्म तेल में तल ले और भून कर इसे भी नमक वाले पानी में डाल दे। मसाले में धनिया पाउडर, जीरा, लहसुन, हल्दी, इन सभी को पीस ले और कढ़ाई में तेल डाले, 5 फोड़न का तड़का दे, बैगन को भून कर निकाले। अब मसाले में कटे टमाटर को भी भून ले। अब इसमें भुने हुए बैगन डालकर उलट पलट कर ले, पानी में भीगे हुए बड़ी भी इसमें डाल दे, थोड़ा पानी डाल दे और उसमें धीमी आंच तक पकने दे, इसमें ग्रेवी नहीं रहती। बिहार के हर शुभ कार्य में, फंक्शन में बैगन बड़ी की सब्जियां जरूर बनती है, पूरी रोटी चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। इस सब्जी में मसाले की मात्रा अधिक नहीं रहती, मिर्च, लहसुन, हल्दी और थोड़ा बहुत धनिया और जीरा पाउडर डालते हैं। तो इन्हें बड़ी यानी मूंग बड़ी जो अभी गर्मियों में बनती है ना, हर घर में कुछ चने दाल की बनाते हैं, कुछ मूंग की दाल की बनाते हैं। और आप क्या करें,
0: गीत सुने
1: तो सुनते हैं गीत।

0: सोनाली जी, एक श्रोता ने बड़ी मजेदार बात कही है। उन्होंने लिखा है, कोई भी सब्जी हो, काट कर धोकर जितना तेल रोज डालते हो उससे आधा कुकर में डालकर तेल गरम करके जो भी कटी सब्जी है डालकर स्वादानुसार मिर्च मसाले टमाटर प्याज लहसुन डालकर ढक्कन लगाकर सीटी लगाकर उतार कर रखे। स्वादिष्ट सब्जी बनेगी, तेल गैस की बचत भी कम, मतलब कम लगेगा ये सब, और काम भी जल्दी हो जाएगा। और साथ में उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दे दिया है कि शाम से ही एक्सपेरिमेंट करें।
1: तो यानी कार्यक्रम सुनते ही आपने करना है। बस कुकर में जब सब्जी बनाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना, उसमें पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो बहुत ज्यादा बहने लगेगी वो थाली में। तो उसका हमें, क्योंकि जब कढ़ाई में डालते हैं तो पानी सूख जाता है, वो कुकर का ढक्कन बंद होता है तो वो पानी नहीं सूख पाता है। अब हमारी बातचीत को यही देना पड़ेगा विराम, और सभी से लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
0: और नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार।

0: की सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक
0: सखी सहेली

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जाने माने लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है हिंदुस्तान हिंदी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक कवि और लेखक प्रताप सोमवंशी जी को। प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती।

0: हमने आमंत्रित किया है हिंदुस्तान हिंदी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक, कवि और लेखक प्रताप सोमवंशी जी को। प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार।
1: नमस्कार ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विविध भारती के इस शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए।
0: जी बताइए, आपका रेडियो से, विविध भारती से कैसा नाता रहा है?
1: देखिए, रेडियो से और विविध भारती से हम जिस पीढ़ी के हैं, उस पीढ़ी में दो पहचान होती थी। कोई अगर लिखता है या बोलता है तो एक पहचान उसकी ये होती थी कि क्या रेडियो से उसकी आवाज आई
0: रेडियो की तरफ,
1: और दूसरी पहचान ये होती थी कि क्या कहीं उसकी कोई कविता कहानी छपी। तो मैं इलाहाबाद शहर से आता हूँ, तो रेडियो में पहले दिन दाखिल हुआ तो कुछ युवाणी में कविताएं पढ़ने के लिए, तो वहां से एक रिश्ता बना। फिर एक लंबे समय में इलाहाबाद केंद्र जाता रहा, फिर दिल्ली रहा, दिल्ली जाता रहा, फिर जिन जिन शहरों में मैं रहा, पदस्थ रहा, उन उन शहरों के केंद्रों में कम बार जाना हुआ चूंकि अखबारों की व्यस्तता के कारण, लेकिन एक लगाव, एक रिश्ता बना रहा
0: जी रेडियो से और आकाशवाणी से, और विविध भारती से रिश्ता है ही।
1: विविध भारती के श्रोता के तौर पे मेरा जो है अगाध, मतलब आप कहें तो अगर मैं 60 के होने के करीब आ रहा हूँ तो मतलब ये 50 साल की स्मृतियां हैं, पूरा गोल्डन जुबली
0: विविध भारती से
1: की स्मृतियां हैं मेरे
0: जी,
1: पास।
0: जी, तो विविध भारती के बहुत सारे पुराने प्रोग्राम अभी भी प्रसारित होते हैं, जैसे कि छाया गीत है, हवा महल है, जयमाला, तो ये सब तो आप सुनते ही रहेंगे
1: जी।
0: तो प्रताप जी, हम आपकी लेखन की यात्रा पे नजर डालते हैं, बताइए कि कवि बनने का जो सफर होता है, आपकी शुरुआत कैसे हुई, कविता लिखने का हुनर कहाँ से आया आपके पास?
1: देखिए, कविता लिखने से ये था कि हमारे समय में हमें जो छपे हुए शब्द थे, जो कहते थे शब्द ब्रह्म होते हैं
0: जी,
1: तो हमें छपे हुए शब्द और उसमें छपा हुआ नाम, मुझे व्यक्तिगत तौर पे बचपन से ईश्वर की तरह लगता था
0: जी।
1: तो जैसे उसमें नाम छपा है राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी
0: जी,
1: तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं
0: जी जी जी।
1: और ये मेरे पास सौभाग्य रहा कि 1988-89 में एक कार्यशाला में मैं उनके साथ रहा, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा भी होता था कि मैं वहां खड़ा होता था और मैं आपको देखता था, जो आपको मैं देख लेता था तो मैं दूर से प्रणाम करके एकदम एकलव की भांति मैं वहां से चला जाता था।
0: क्या बात है।
1: तो एक ये जो छपे हुए शब्द की महत्ता है, उसके जो सर्जक हैं उनके प्रति आदर है, इससे एक वो भाव आता है। दूसरा ये कि मैं जहां मोहल्ले में इलाहाबाद में रहता था तो क्या होता था कि पीछे देखो तो वहां से देखते तो निराला जी रहते थे,
0: अरे वाह,
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे,
0: गजब,
1: दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था
0: जी।
1: तो या उनके नाम की सड़क भी थी, सीवाई चिंतामणि रोड। तो ये लोग हमारे समय में उपस्थित नहीं थे, लेकिन इनका जो सोल है, इनके जो शब्द हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो किस्से हैं,

0: क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि अभी ये सब लिखने पढ़ने पर ध्यान मत दो, अपना कुछ और करो, करियर की ओर, करियर की ओर।
1: नहीं, मेरे पिताजी तो बाकायदा, वो एक इलाहाबाद आकाशवाणी के केंद्र से मेरा लिखा एक नाटक था, लघु नाटिका थी, जिस जमाने में वो ब्रॉडकास्ट हुई तो वो उसे सुन रहे थे, और जब सुन रहे थे, जब वो नाटक खत्म हुआ, आया कि इस लघु नाटिका के लेखक थे प्रताप सोमवंशी, और ये आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र की
0: ये
1: प्रस्तुति थी,
0: प्रस्तुति
1: तो मुझसे कह रहे हैं तुमने किसी का नाम चुरा लिया है क्या? तो मैंने कहा कि नहीं, तो बोला ये नाम, मैंने कहा मैंने अपने नाम को इस तरह से चेंज किया है, बोला अच्छा, चोरी मत करना, उस पर कानूनी कार्रवाई होती है, किस बोले अच्छा ये बताओ ये तुमने किसी का लिखा चुरा लिया है क्या? तो मैंने कहा नहीं, लिखा भी नहीं।

0: चुराया है,
1: हाँ
0: ये
1: हाँ
0: मेरा ही लिखा है। तब भी उनको उस दिन यकीन नहीं आया।
1: हाँ
0: उनको जब रेडियो से 150 रुपए का मनी ऑर्डर आया, तो मनी ऑर्डर भी उन्होंने रिसीव किया, तो उस दिन उनको कुछ कुछ भरोसा हुआ। लेकिन उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए ये कहा कि जो भी लिखना अपना लिखना, चुरा के मत लिखना, नहीं पकड़े जाओगे तो तुम्हारे खिलाफ जाएंगी चीजें। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभिभावक को, वो मेरे शत्रु नहीं थे, मेरे पिता थे, बड़ी उन्होंने मुझे शक्ति दी। उनके जीवन की बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने मुझे ऊर्जा दी, या आज जो मैं गढ़ा बना बैठा हूं उसमें उनकी बहुत महती भूमिका है। लेकिन उनके पास एक मध्यवर्गीय परिवार के पिता, इनके मन में ये भय था कि लिखने पढ़ने का काम करने लगेगा, कोई नौकरी नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा, तो कैसे जीवन चलेगा
1: आजीविका कैसे चलेगी, सबसे बड़ी
0: चलेगी।
1: सोच।
0: तो ये आजीविका के भय में, चीजों के भय में, अब तो अभिभावक उस तरह से व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन अगर कहीं करते हों और आपके इस माध्यम से लोग सुन रहे हों,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो बस मेरी भी, जैसे आपने कहा, यही उनसे अनुरोध है कि आप उसके लिए स्पेस दीजिए, उसको जगह दीजिए। वो महान लेखक नहीं बनेगा, लेकिन एक बेहतर इंसान बनेगा।
1: जी
0: सृजन कम से कम आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, और वो पता नहीं क्या बने। हो सकता है जैसे अभी आप बता रही थी, वो संसार का सबसे अच्छा बांसुरी वादक बन जाए, अपने को एक्सप्रेस करते करते
1: जी जी
0: वो एक गवैया बन जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो
0: लेकिन उसके सृजन यात्रा अगर जारी रह सके तो बहुत अच्छी बात है।
1: जी, तो सृजन को रोकना नहीं चाहिए। यहाँ हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हम जिनसे बात कर रहे हैं, प्रताप सोमवंशी उनका नाम है, और हिंदुस्तान हिंदी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक हैं, एक जाने माने प्रखर पत्रकार हैं, कवि हैं और लेखक हैं। तो लिखने की शुरुआत कैसे हुई ये इन्होंने बताया। खास तौर से उनका नाम हम यहाँ पर इसलिए बताना चाह रहे हैं कि हमें पता नहीं होता है कि किसके भीतर वो बीज किस तरह से एक वृक्ष का रूप लेगा जो छाया देगा। तो पत्रकारिता जगत में आप एक वृक्ष की तरह हैं प्रताप जी, और लोग आपको यही कहते हैं, और साहित्य के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, चाहे साहित्य उत्सव हो, चाहे और भी आजकल साहित्यिक जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें बढ़ चढ़कर आपका सहभाग होता है, उसमें आप मुखिया की तरह काम करते हैं। यहाँ हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये कविता का बीज कैसे पड़ा, ये तो आपने बता दिया, सब नकारात्मक बातों से आपके बीज रोपे गए और एक वृक्ष की।
0: 3 लाइनों में बात कहता हूं कि मेरी पहली कहानी छपी नहीं, मेरी जो रचना छपी उसका पेमेंट आया और वो मुझे मिला नहीं। पहली
1: अच्छा।
0: नौकरी जब मैं अखबार में ढूंढने गया तो मुझे मिली नहीं, तब तक वो जगह भर गई थी। तो मतलब नकारात्मक जो ऋण ऊर्जा है वो मेरे पास शुरू से आती रही। जो छपा मेरा वो मधु मुस्कान नाम की एक पत्रिका आती थी, तो उसमें एक कहानी छपी। मुझे लगा कि नाम कुछ फैंसी सा होना चाहिए, तो मैंने अपना नाम लिख दिया शिवा मयंक। और शिवा
1: अच्छा।
0: मयंक केयर ऑफ शिव प्रताप सिंह और इलाहाबाद का अपना पता। तो वो कहानी छप गई, तो उसका 50 रुपए, एक पेज की कहानी थी छोटी सी, तो उसका 50 रुपए का मनी ऑर्डर आया। तो उसने कहा कि शिवा मयंक कौन है जो पोस्टमैन है? मैंने कहा मैं हूं। तो बोला आई कार्ड लाओ। तो मैं आई कार्ड लाया तो उसमें शिव प्रताप सिंह था। बोला तुम कौन हो? मैंने कहा मैं शिव प्रताप सिंह हूं। बोला अच्छा तुम केयर ऑफ हो? मैंने कहा हाँ। तो बोला ये ऊपर वाला कौन है? मैंने कहा वो भी मैं हूं। बोला तो ये तो नहीं चलेगा, या तो तुम उर्फ लिखते शिव प्रताप सिंह उर्फ प्रताप, ये शिवा मयंक, वरना ये नियम से तो ये आदमी अलग है, ये दो आदमियों का पता है, तो मैं तुमको पैसा दूंगा नहीं। तो मैंने उससे कहा भाई मैं ही हूं, मेरा पहला पैसा है। बोले नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरा 3 महीने बाद रिटायरमेंट है, मैं तुमको पैसा नहीं दे सकता। और वो लेके लौट गए। मैंने बड़ी मिन्नतें की, कई बार मैं उनके पास मिलने गया, वो पंडित जी थे, उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए तो नहीं दिए, उन्होंने नियम का पालन करते हुए उस मानदेय को, उस पत्रिका को वापस कर दिया।
1: तो सब नकारात्मक बातें होते हुए भी आज आप एक सकारात्मक
0: हाँ,
1: ओहदे
0: जो
1: पर हैं।
0: कविता की शुरुआत ये है कि कविता लिखना कोई एक पल होता है जो आप कविताएं पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, जीते रहते हैं, फिर आपके भीतर से वो चीजें फूटती हैं। तो वो जो फूटन है वो कब हुई, कैसे हुई, मुझे नहीं पता है, लेकिन अचानक वो जो हुआ, तो मैं अचानक कविताएं इतनी लिखने लगा कि रोज 10-15, 10-15, 10-15 के अनुपात में शुरू में कविताएं लिखने लगा। तो हिंदी में कोई उस्तादी की परंपरा नहीं है, तो किसी को दिखाना नहीं। फिर बहुत सारी फिल्मी पत्रिकाएं छपती थी, उसमें सब रूमानी एहसास की कविताएं थी, मैं उनको भेज

0: तरह वो सब छपने लगी।
1: जी
0: ये 80 इससे लेके 90 तक वो सारी कविताएं छपती रही छपती रही। मुझे लगा मैं महाकवि टाइप का आदमी हो गया हूं। लेकिन जब वो कविता की कसौटी पे जब उसके बाद जब मैंने कविताएं पढ़ी तो मुझे लगा ये तो कहीं ठहरती नहीं है। जब मैंने कविताएं पढ़ा तो मैंने कहा इस कविता सिर्फ रोमानी एहसास का नाम नहीं है, कविता जीवन की शक्ति है, प्रेरणा की चीजें हैं। तो जब मैंने उस कसौटी पे देखा तो जो मेरी लिखी हुई कविताएं हैं 90 तक की उसमें एक भी कविता मुझे इस लायक नहीं लगी कि 2016 में जब मैंने किताब बनाई कि मैं उसमें से वो किताब उठा वो रख पाऊं। फिर बाद की जितनी कविताएं थी वही कविताएं मैंने संग्रह में रखी।
1: जी जी, तो कोई संग्रह वाली कविता इस समय याद आ रही है?
0: संग्रह वाली कविता एक
1: दो लाइन सुनाइए।
0: एक कविता मैं आपको 1991 की कविता का रेफरेंस देता हूँ, आपके श्रोता जो पुराने हैं उनको भी याद आएगा और नए के लिए ये एक कविता होगी। ये कविता है शेष कुशल है। तो इस कविता ने मुझे बड़ी पहचान दी। पत्र के पे जो लोग लिखते थे पत्र की भाषा होती थी
1: जी,
0: सब लिखते थे, सारे दुख लिखते थे और लिखते थे शेष कुशल है, उससे ये कविता लिखी। और जो ये कविता भी लिखी ये मैं जौनपुर में कक्षा 6 में पढ़ता था तो एक दिन मेरी माँ ने पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डालने के लिए दी पोस्ट बॉक्स में। मैंने चिट्ठी डाली और पोस्ट बॉक्स में एक चीज चिट्ठी निकली हुई थी तो मैंने चिट्ठी खींच ली और चिट्ठी खींच के मैं अपने विद्यालय में ले गया। उस विद्यालय में मैंने उस चिट्ठी को बच्चों को बताया कि मैं चिट्ठी लाया हूँ और मैंने क्लास रूम में उसे खोल के चिट्ठी पढ़ी, सबको सुना दी। और फिर मैं आया और जैसे आके मैं अपनी माँ को सारी बात बताता था तो मैंने बताया कि आज मैंने ये चिट्ठी खोल के की, मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा। मेरी माँ ने कहा कि तुमने इतना गंदा काम किया, वो किसी का दुख था किसी का सुख था, वो जाने पते पे जाना था तुमने उसे रास्ते में ले लिया,
1: रोक लिया।
0: तुम्हारी चिट्ठी मैंने मामा को भेजी है और वो चिट्ठी कोई कर देता तो बहुत ही गंदा काम किया, जीवन में नहीं करना है। उन्होंने गोंद से उसे चिपकाया, एक एक रेशा जोड़ा और फिर ले जाके वो चिट्ठी मुझसे डलवाई उन्होंने पोस्ट बॉक्स में, सेम पोस्ट बॉक्स में वो चिट्ठी डलवाई। अब वो चिट्ठी तो चली गई होगी, पहुंच भी गई होगी
1: जी जी।
0: यार जो भी है, लेकिन उस चिट्ठी मेरे भीतर भी रह गई। तो मेरे भीतर जो चिट्ठी रह गई वो फिर मैंने कक्षा 6 में मैंने वो की घटना है, फिर मैंने 12 में के आसपास या बीएससी पार्ट 1 में रहा हूंगा तब मैंने वो कविता लिखी। तो वो जो कविता है
1: जी आप अगर सुनाए हमारे, हाँ, तो 4 लाइन,
0: तो वो कविता मैं आपको पढ़ देता हूँ। तो कविता ये है कि भैया की चिट्ठी आई है, घर भर का चिट्ठा लाई है, पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, लिखी अम्मा की पुकार है।
1: क्या बात है, वाह।
0: आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: ओह गजब।
0: घर में पैसे 4 नहीं है, मिलता कहीं उधार नहीं है, भाई जब से दिन बिगड़े हैं कोई नातेदार नहीं है, छोटे का तुम हाल न पूछो, मोटी कितनी खाल न पूछो, अर्जी आज नहीं दे आया और अगला इंटरव्यू कल है, शेष कुशल है।
1: क्या बात है, वाह।
0: बहना का संदेश आया है, उसने फिर से कहलाया है, सामान और नकदी की खातिर सास ससुर ने धमकाया है, कुछ ना कुछ सहते रहते हैं, ऐसे दिन कटते रहते हैं, ये सब छोड़ो अपनी लिखना, बीत रहे कैसे छिन पल हैं, शेष कुशल है।
1: शेष कुशल है, क्या बात है।
0: आखिरी बंद है कि बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं।
1: वाह।
0: बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं, लिख दो ख्याल रखे सेहत का, मिनट मिनट पर टोक रहे हैं, आखिर में बस इतना कहना, तुम घर की चिंता मत करना, मजबूरी ढोने का हम में, बाकी अब भी काफी बल है, शेष कुशल है।
1: शेष कुशल है, वाह क्या बात है। बहुत बढ़िया एक मार्मिक कविता आपने सुनाई, इसमें बड़ी संवेदनशील कविता सुनाई। प्रताप जी, हम आगे बढ़ने से पहले अपने श्रोताओं को एक गाना सुनवाते हैं, आपकी पसंद का गाना बताइए, कौन सा गाना सुनवाएं?
0: इंदिवर का वो गाना था, आओ मिल जाएं हम सुखंद और सुमन की तरह,
1: सुनते हैं यही गाना।

0: प्रताप जी, आपकी गाने से पहले बात चल रही थी कविता की, आपने कविता सुनाई। ये बताइए कि आप कविता से गजलों की ओर कैसे मुड़े, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कवि अलग और गजलकार अलग। इतवार छोटा पड़ गया, ये आपका गजल संग्रह है, इसके बारे में बताइए।
1: अब जैसे मैंने कहा कि इसमें शहर का दोष है कि मैं उस शहर में बचपन से पढ़ रहा था, वहां सांस ले रहा था, वहां कवि लेखक जो जैसा बना गढ़ा, कि दुष्यंत भी उसी शहर के थे। तो
0: जी, दुष्यंत कुमार,
1: दूसरी
0: साये में
1: चीज,
0: धूप उनकी
1: हाँ,
0: बड़ी
1: साये में धूप।
0: मशहूर
1: तो
0: मशहूर रचना।
1: फिर मैं जैसे व्यंग्य लिखता था, तो व्यंग्य में एक खूबी होती थी

0: तमाम सारे शेर कहूं, ये मुझे लगा कि वाली आसिफ साहब का एक शेर था कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, तुम जीत गए हम हार गए, तुमने पाया हमने खोया। अब अगला मिसरा तो मैं सोच ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, इन छोटी छोटी बातों का हम कोई ख्याल नहीं करते।
1: क्या बात है, वाह।
0: तो अब ये जो खूबसूरती थी इसने इंस्पायर किया, फिर हमारी जो जनरेशन है वो जगजीत सिंह को सुनती हुई बड़ी हो रही थी।
1: जी जी
0: तो हम
1: जी।
0: उनकी गजलें सुन रहे थे तो उन गजलों में भी वो स्वाद था कि गजलें आकर्षित इसीलिए करती थी कि गजलें कंटेंट का मीडियम थी, गायकी का तो माध्यम थी लेकिन वो शब्द की भी महत्ता थी। तो उसमें ये जो शायरी की जो बारीकियां हैं उसमें भी थी। फिर प्रकाश पंडित की एक बड़ी भूमिका थी, उन्होंने हिंदी में तमाम लोग उर्दू के स्क्रिप्ट नहीं जानते थे तो उन तमाम सारी किताबें स्टेशन पे मिल जाती थी तो हमने उसके जरिए गालिब फैज मीर उन सबको पढ़ना शुरू किया। तो लगा कि ये एक माध्यम है जिससे जो मेरा सटायरिस बेंड ऑफ माइंड है वो और कविता का की जो रुचि है ये दोनों इसमें खूब जमेंगे। और फिर उस तरह के जब आप कोई चीज करते हैं तो उस तरह के लोगों की सोहबत होती है, सीखते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर उस तरह के परिवेश में जाते हैं, फिर आप वैसा कुछ हो जाते हैं।
1: जी, तो कोई शेर या
0: वो पूरी गजल यूं है कि कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया।
1: वाह, क्या बात है, क्या बात है, गागर में सागर।
0: कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया, सैकड़ों किस्से कहानी खुद ही चलकर आ गए, उससे मैं जब भी मिला इतवार छोटा पड़ गया।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है। और कविता और गजलें, फिर नाटक, व्यंग्य भी लिखा आपने, तो नाटक की ओर भी मुड़े, नाटक लिखा आपने, एक लोई नाम का नाटक जिसका मंचन भी हुआ, कई भाषाओं में अनुवादित हुआ, इसके बारे में बताइए। इसकी क्या
0: नाटक
1: कहानी है?
0: क्या था कि मैं श्रद्धेय, मैं प्रभास जोशी जी मेरे पिता तुल्य थे तो उनकी जो
1: जनसत्ता के संपादक थे,
0: हाँ, तो मैं जनसत्ता में उनके साथ रहा, उनका बड़ा स्नेह रहा। तो उनकी जो प्रथम पुण्यतिथि थी तो मैं उसमें शामिल होने के लिए गया तो वहां शेखर सेन का नाटक चल रहा था, कबीर जो करते हैं, तो उसमें वो लोई का एक कैरेक्टर आता है तो लोई कहती है कबीर से,
1: जी
0: वो चूंकि एकल है तो खुद ही दोनों पात्र कर रहे थे कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, मैं साहूकार के बेटे से प्रेम करती हूँ। तो कबीर ने कहा चलो मिला लाते हैं।
1: जी,
0: अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं मिला लाते हैं।
1: जी,
0: अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं मेरी पत्नी गए थे, मैंने उनसे कहा कि 600 साल पहले क्या स्त्री पुरुष इस तरह का संवाद करते थे, और अगर करते थे तो ये कौन आदमी आया था 250-300 साल पहले, लॉर्ड मैकाले, जो कह गया कि ये सपेरों का देश है। तो हम तो इतने, अगर इस तरह का संवाद, और जो उनकी पत्नी थी वो तो बड़े गरीब लोग थे, बड़े छोटे लोग थे, एक जुलाहे थे, बुनकर थे, कोई राजा नहीं थे, कोई विदुषी नहीं थे, झांसी की रानी नहीं थी, कोई रजिया सुल्तान नहीं थी, ये साधारण परिवार के एक स्त्री पुरुष के बीच का संवाद है। तो मुझे लगा कि एक साधारण स्त्री की कहानी तलाशते हैं। फिर मैंने उस पर शोध शुरू किया तो एक उपन्यास मिला मुझे, लोई का ताना, जिसमें लोई के बारे में थोड़ी सी चीज है, रांगे राघव का उपन्यास है। फिर मैंने जो जितने उपलब्ध सामग्री थी उसको पूरा, फिर मैंने एक लंबी कविता लिखने के लिए ये सारा शोध किया था।
1: अच्छा अच्छा,
0: कि मैंने कि लंबी कविता में लिखूंगा, 12-13 पेज की कविता लिखी, कविता जैसी बनी नहीं। फिर मैंने उपन्यास लिखना शुरू किया, वो 13-14 पेज तक गया, फिर रुक गया, और फिर वो मेरे सामने लोई खड़ी हो जाती थी।
1: जी जी।
0: फिर मैंने पूरा नाटक लिखा। अब नाटक लिखने के बाद इलाहाबाद के एक विभूति थे पंडित नरेश मिश्र, तो वो मेरे लिए भी गुरु की तरह थे, मैं उनके पास वो नाटक लेके गया। मैंने उनको दिया, मैंने कहा ये पंडित जी ये नाटक लिखा है, तो उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि क्या सुंदर बात बताई। ये मैं इसलिए ये बात उनका उद्धरण देना चाह रहा हूं कि जो लोग नाटक लिखना चाहते हैं उनके लिए ये बीज मंत्र की तरह है।
1: जी, जी।
0: उन्होंने कहा कि जब दो लोग बात कर रहे हों और दो लोगों की बातों में एक दूसरे से कह रहा हो सीधी सीधी बात करो, नाटक मत करो।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: इसका मतलब कि दूसरा आदमी उस बात को सीधी सीधी नहीं कर रहा है।
1: जी जी।
0: वो कुछ घुमा के कर रहा है, तो वो नाटक है जो वो कर रहा है। तो अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सीधी सीधी बात मत करो, नाटक करो। तो ये पुस्तक में सीधी सीधी बात आ गई।

0: जी,
1: नाटक नहीं आया है।
0: क्या बात है,
1: तो इतनी सुंदर बात कही कि फिर पूरी पुस्तक को मैं दोबारा लेके गया और दोबारा मैंने उसको नाटक के तौर पे लिखा
0: जी।
1: और ये उनकी ब्लेसिंग्स थी, उनका आशीष था
0: जी
1: कि नाटक संयोग से दुर्योग से जैसे भी था वो इतना बन गया कि मुंबई में अभी पिछले दिनों उसका मंचन हुआ। इंडिया के मैच के दिन 8 मार्च को महिला दिवस के दिन उसका मंचन था
0: जी,
1: और 2 घंटे का शो और पूरा हाउसफुल और एक आदमी हॉल से बाहर नहीं निकला। बैक टू बैक शो था, उसके 2 घंटे बाद फिर शो था। ऑडियंस में हरीश भिमानी हैं, इरशाद कामिल हैं और तमाम सारे बड़े लोग उसके ऑडियंस में रहे, तो ये मेरे लिए। और जो स्टेज पे आर्टिस्ट थे उसमें मुकुल नाग, मिताली, वैसे अच्छे अच्छे जो आर्टिस्ट थे उन्होंने
0: कहा पर था, किस
1: वेदा कुंभा थिएटर में।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर थिएटर है वो। तो ये तो बहुत बढ़िया, इसके बाद के लिए बधाई। और तकरीबन 9 भाषाओं में इसका अनुवाद
1: जी, 9 भाषाओं में अब तक ये
0: मराठी में भी
1: प्रकाशित हो चुकी है ये पुस्तकें
0: जी
1: इसकी, और कई भाषाओं में अलग अलग, हिंदी में। तो अभी जो अगला प्रस्तुति है, एक तो ये जिन्होंने तैयार किया है थिंक बिग ग्रुप है तो मुंबई का, तो ये लोग करने वाले हैं इस नाटक को। और अभी इलाहाबाद की रंगकर्मी है सुषमा शर्मा जी, तो उन्होंने बताया कि उनके पास भी वो भी करने जा रही हैं 2-3 महीने में वो भी करेंगी। तो अलग अलग ग्रुप, जबलपुर का एक समूह है, तो अलग अलग समूहों द्वारा ये नाटक तैयार किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं। मैंने तो
0: लोई नामकरण कैसे,
1: कबीर की पत्नी है उनका नाम है
0: जी। बहुत बढ़िया। और अब आगे बढ़ने से पहले एक आपके पसंद का गाना सुनते हैं। कौन सा गाना सुनवाएं?
1: तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप
0: तुम घना साया। साथ साथ फिल्म की ये गजल है और जगजीत सिंह की आवाज है और इसमें कुलदीप सिंह की मौसीकी है।
1: और इसलिए मुझे और भी पसंद है कि कुलदीप सिंह जी ने लोई का पूरा म्यूजिक किया है, लोई के नाटक का।
0: जी क्या बात है। हाँ। तो ये बात यहाँ कितनी कनेक्ट हो रही है। हाँ। इस बात से

0: साथ साथ फिल्म की इस गजल के बाद प्रताप जी हम जानना चाहते हैं, अभी हाल ही में आपका एक नया कविता संग्रह आया है, उसके बारे में बताइए।
1: ये कविता संग्रह है ए अलिफ आ। ये कविता संग्रह का जो शीर्षक है, ये इसमें एक कविता है मलाला यूसुफ जई के पिता पे।
0: जी जी
1: मुझसे लोग बार बार पूछते हैं कि ये जो आपकी सृजन यात्रा है ये कैसे संभव है कवि और पत्रकार के तौर पे। मैंने ट्विटर पे अपने बायो में भी लिखा है कि ये मेरी दो आंखों की तरह है।
0: अच्छा।
1: दोनों आंखें खुली रखता हूँ तो साफ दिखाई पड़ती है, देख एक आंख से भी सकता हूँ लेकिन पूरा परदृश्य नहीं दिखेगा। तो ये दोनों आंखें एक दूसरे की मदद करती हैं और दोनों आंखें दृश्य को पूरा और सम्यक देखने में सहायता करती हैं। तो जब मलाला को पहली बार गोली लगी और मलाला तो ये पता चला कि एक लड़की को स्कूल जाने के एवज में उसके लिए गोली मार दी गई, तो फिर मैंने कहा कि भाई उसके पिता माँ पता करो कौन है। बेटी तो बहादुर हो सकती है लेकिन उसके पिता माँ कौन है। तो मैंने पता किया तो उनके पिता थे जियाउद्दीन यूसुफ जई। तो मैंने एक पूरी कविता लिखी, ये कैसा पिता है जियाउद्दीन यूसुफ जई। उनसे बात भी की, फोन किया, वो एक कहानी थी है कि मैंने उनसे कैसे बात की, कैसे बातचीत हुई। तो वो किसान थे, कवि थे और वो टीचर थे, तो वो उनकी हम मैंने पूरे उनसे बातचीत करके
0: जी
1: वो पूरी कविता लिखी। तो मैंने फिर एक कविता और लिखी, छोटी सी 3 लाइन की, लिखा कि एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ।
0: क्या बात है, वाह।
1: एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह वाह वाह
0: वाह।
1: एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह वाह वाह, जीती रहे मेरी बेटी मलाला।
0: वाह।
1: तो ये मलाला के लिए ये कविता। तो वो कविताएं मैंने उसी कविता पे मेरे इस जो नया कविता संग्रह है उसका शीर्षक बना। और इसमें बहुतेरी कविताएं ऐसी हैं जो किसी घटनाओं से जुड़ी हुई हैं। और सबसे पहली बात यह कि इसमें एक पत्रकार की कविताई की यात्रा है, तो इसमें 20 से अधिक कविताएं खबरों पे लिखी हुई हैं और खबरों पे पहली बार कविताएं लिखी हुई आपको मिलेंगे, जो न्यूज के अलग अलग डायमेंशन के कि मैंने 35 साल न्यूज रूम में बिताए हैं, तो मैं 35 साल की जो मेरी यात्रा है उसमें मुझे 20 दृश्य ऐसे मिले जिनको मैंने 20 कविताएं बनाई, तो 20 कविताएं

0: इसमें
1: जी
0: दर्ज
1: जी
0: है।
1: क्या बात है, अगर चार लाइन सुनाना चाहें तो सुनाइए।
0: तो एक कविता है आंसू की खबर।
1: जी सुनाए।
0: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती।
1: क्या बात है।
0: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती है। गिरता है एक आंसू न्यूज रूम में, बताता है भरभराए गले से एक सब एडिटर, जिसे आई है अभी अभी एक कॉल, तीन बच्चे महोबा में उसी जगह जाकर कट गए हैं रेल से जहां उनकी मां ने जान दी थी।
1: वाह वाह, मार्मिक कविता है।
0: 3 दिन पहले पूरा न्यूज रूम नम हो जाता है, हर कोई जीने लगता है। 3 दिन, 3 बच्चे,
1: ओ,
0: एक माँ,
1: ओ,
0: एक खबर।
1: ओ, बहुत ही संवेदनशील कविता है। और अब यहाँ पर हमें लगता है कि एक गाना होना चाहिए। बताइए कौन सा गाना सुनवाया है अपने श्रोताओं को।
0: हमेशा उदासी वाले गाने क्यों गाएं?
1: हाँ
0: पान खाएं सैया हमार, वो बजाइए।
1: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: और ये गाना सुनते हुए पूरा लोक संगीत की छटा बिखेर उठी है, और उत्तर प्रदेश के लोकगीतों की तो बात ही निराली है। तो एक बार चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, और आप चूंकि इलाहाबाद में पढ़े बले हैं तो वहां की यादें ताजा कीजिए हमारे श्रोताओं के साथ।
1: देखिए, मैंने तो कई जगह लिखे शेर भी कहा है कि हर अपनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है,
0: जी
1: हर अपनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है,
0: क्या बात
1: तुझे
0: है,
1: तो याद हम अक्सर इलाहाबाद करते हैं।
0: वाह वाह वाह।
1: एक और शेर मैंने कहा है कि चांदी का बदन सोने का मन ढूंढ रहा है, औरों में ही अच्छाई का मन ढूंढ रहा है। इसमें जो शेर है इलाहाबाद के हवाले से है कि संगम के इलाके से है पहचान हमारी, संगम के इलाके से है पहचान हमारी, ये मन तो वही गंगो जमन ढूंढ रहा है।
0: क्या बात है, वाह।
1: तो आप उसको ढूंढते हैं और वो दिल्ली में रहें तो वहां भी ढूंढते हैं।
0: जी,
1: और मैंने एक शेर कहा, वो इलाहाबाद को याद करते हुए कहा कि कड़ी धूप में छांव बना कर रहते हैं, हम दिल्ली में गांव बना कर रहते हैं।
0: क्या बात है, बहुत
1: तो
0: बढ़िया।
1: हम जो दिल्ली में भी रहते हैं, हमारे अवचेतन मन में वो इलाहाबाद ही जीता है।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो जैसा भारती ने कहा था कि आप जितनी दूर जाएं वो उतना हांट करता है,
0: जी
1: तो
0: जी
1: ये है कि मैं पहुंच जाता हूं जब
0: जी
1: हॉन्ट करता है या उससे पहले ही। हाँ,
0: जी वैसे तो मन हमेशा अपने उस जगह पर रहता है जहां आपका
1: क्योंकि
0: बचपन
1: आपको
0: बीता।
1: लगता है कि शेर मेरा था कि पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है,
0: जी क्या बात है।
1: पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है, गांव ने मुझसे कहा था सुनो आते रहना।
0: क्या बात है।
1: तो ये जो उधर से भी इसी तरह का प्यार रहता है।
0: बिल्कुल। और एक अटूट रिश्ता होता है। प्रताप जी, ये शहर की बात तो बहुत लंबी है, बहुत सारी यादें होती हैं जहन में। हम जानना चाहते हैं कविताओं के बारे में, कवि बनने की जो प्रक्रिया है आपने वो बताई, कवि से पत्रकारिता की दुनिया में आप कैसे
1: देखिए,
0: पहुंचे?
1: पत्रकारिता मुझे लगता था कि मैं यही कर सकता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि मैं पत्रकारों से ये कहता हूँ, जितने जो लोग जर्नलिज्म करें नहीं करें, या मैं मीडिया स्कूल्स में जाता हूँ, या मैं करीब 20 सालों तक अलग अलग कैंपस में इंटरव्यू करने गया, तो मैं उनको बताता था कि आप इसलिए बनिए कि आपके पास एक मौका है, एक संसार के सबसे बड़े डॉक्टर के पास अवसर नहीं है सबसे इंटरेक्ट कर सके,
0: जी जी
1: किसी के पास ये मौका नहीं।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बज रहे हैं। प्रारंभ होती है हमारी आज की दूसरी यानी सांध्यकालीन सभा। सभा के प्रारंभ में आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम युवाणी सुनने वाले सभी युवा श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं दीपक कुमार झा। युवा श्रोता, आज युवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत तरुण कुसुम कार्यक्रम सुनेंगे और इसके अंतर्गत अपने युवा श्रोताओं से आज हम विज्ञान, नवाचार और युवा भारत इस विषय पर बातचीत करेंगे, साथ ही कुछ सुगम संगीत का आनंद लेंगे। युवा श्रोताओं,

विज्ञान, नवाचार आदि आज के युवा भारत की आधारशिला हैं। नवाचार यानी इनोवेशन, विचारों को वास्तविक समाधानों और आर्थिक अवसरों में बदलने की प्रक्रिया है। युवा भारत, युवा जनसांख्यिकी भी कह सकते हैं इसे, इन नवाचारों का मुख्य वाहक है जो देश को विकसित भारत के संकल्प की ओर ले जा रहा है। वाकई युवाओं में कुछ कर गुजरने की एक असीम ताकत होती है।

जा रहा है। वाकई युवाओं में कुछ कर गुजरने की एक असीम ताकत होती है, और यूं कहा भी जाता है कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत। जो हमारे युवा होते हैं वो निश्चित रूप से यदि उनके अंदर आत्मविश्वास प्रबल है तो निश्चित रूप से विभिन्न दृष्टिकोणों से वे हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे राज्य और हमारे देश को आगे ले जाने में सक्षम होते हैं। हमारा देश कहा भी जा रहा है कि युवाओं का देश है, और युवा देश के कर्णधार होते हैं ये भी कहते हैं। युवाओं की भूमिका और नवाचार की आवश्यकताओं को लेकर हम बातचीत यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन आइए एक सुगम संगीत का आनंद लेते हैं। कलाकार हैं विनय कुमार झा।

अभी विनय कुमार झा की आवाज़ में अभी ये सुगम संगीत का आनंद हम ले रहे थे। और श्रोताओं, आज हम बातचीत कर रहे हैं अपने युवा श्रोताओं के साथ के विज्ञान, नवाचार और युवा भारत इस विषय को लेकर। सबसे पहले हम युवा दोस्तों, हम ये जानना चाहेंगे कि विज्ञान में नवाचार क्या है। विज्ञान में नवाचार यानी इनोवेशन का अर्थ होता है किसी वैज्ञानिक खोज या आविष्कार को एक व्यावहारिक और उपयोगी उत्पाद, तकनीक या सेवा में बदलना। यह केवल नया विचार खोजना नहीं है, बल्कि उस विचार को जनकल्याण, चिकित्सा या उद्योगों के लिए सुलभ और प्रभावी बनाना है। विज्ञान और नवाचार में यदि अंतर की बात करें तो पहली बार किसी नई चीज, सिद्धांत या मशीन की खोज करना, उदाहरण थॉमस एडिसन द्वारा बल्ब का पहला प्रोटोटाइप बनाना, ये आविष्कार हो गया। और नवाचार की बात करें तो उस आविष्कार को इस तरह विकसित करना कि वह आम लोगों की ज़रूरतें कुशलतापूर्वक पूरी करे और समाज के लिए फायदेमंद हो, उदाहरण आधुनिक और ऊर्जा बचत वाले एलईडी बल्ब का निर्माण। तो इस तरह से इसमें हम इसको नवाचार के रूप में देखते हैं। नई बीमारियों की वैक्सीन, अत्याधुनिक सर्जिकल रोबोट और जीन एडिटिंग तकनीकें जैसे नवाचार के बेहतरीन उदाहरण हैं। वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा कम लागत में सफल अंतरिक्ष यान और उपग्रह लॉन्च करना, यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विज्ञान में नवाचार के प्रमुख उदाहरण हैं। साथ ही स्मार्टफोन और एआई आधारित एल्गोरिथम ने संचार और ज्ञान के प्रसार में क्रांति ला दी है। इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई और डिजिटल तकनीकी में नवाचार कहेंगे। साथ ही यदि नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में नई तकनीकें जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ऊर्जा की मांग को पूरा कर रही है, ये नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में यानी इस क्षेत्र के विज्ञान में नवाचार के प्रमुख उदाहरण हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पुनः गीत संगीत की ओर चलते हैं और उज्ज्वल कुमार मल्लिक की आवाज़ में ये सुगम संगीत का आनंद लेते हैं।

0: श्रोताओं, अभी हम बातचीत कर रहे हैं विज्ञान, नवाचार और युवा भारत को लेकर के। तो भारत के युवा आज केवल नौकरी खोजने वाले नहीं बल्कि रोजगार सृजक भी बन रहे हैं। एआई, अंतरिक्ष और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में युवाओं द्वारा स्थापित स्टार्टअप्स वैश्विक स्तर पर धूम मचा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए भी युवाओं की सोच सबसे प्रभावी दिख रही है। वहीं युवा इनोवेटर स्थानीय समस्याओं जैसे कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए कम लागत वाली तकनीकें विकसित कर रहे हैं। तो यूं ही बातचीत चलती रहेगी, आइए एक और संगीत का आनंद लेते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ विज्ञापन सुनते हैं।
1: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90%

0: तक सस्ती दवाइयाँ।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
6: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

मुरलिया बाजे यमुना के तीर। अभी ये हम गीत सुन रहे थे सुषमा कुमारी की आवाज़ में। और श्रोताओं, देखिए, विज्ञान के साथ नवाचार को लेकर अभी हम अपने युवा श्रोताओं से साझा कर रहे थे। भारत सरकार युवाओं की वैज्ञानिक सोच को पंख देने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही हैं। कुछ उदाहरण हम देते चलें कि जैसे अटल नवाचार मिशन, इसके जरिए स्कूलों और कॉलेजों में अटल टिंकरिंग लैब्स, यानी इसके अंतर्गत कई सारे तकनीकी सिखाए जाते हैं, कि स्थापना की गई ताकि बच्चों में शुरुआत से ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो सके। साथ ही युवा पोर्टल के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया यह पोर्टल युवा स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं को आवश्यक मार्गदर्शन और पहचान दिलाता है। वहीं राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की बात करें तो इसका उद्देश्य देश भर में शोध और नवाचार के लिए धन और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है। भारत को तकनीकी महाशक्ति बनाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षा प्रणाली में रटने के बजाय प्रायोगिक ज्ञान को महत्व दिया जाए। ज्ञान और नवाचार को मानवता की सेवा और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। भारत सरकार की आधिकारिक भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार पोर्टल पर जाकर युवा छात्र और शोधकर्ता फेलोशिप, अनुसंधान वित्त पोषण और स्टार्टअप के अवसरों की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी हम सुन रहे हैं युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम तरुण कुसुम। अब फिल्म संगीत सुनने का समय हो चला है और अब अपने श्रोताओं के साथ फिल्म संगीत का आनंद लेते हैं।

0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
2: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: और अब सुनते हैं आजा सनम, क्षमा करेंगे, और अब सुनते हैं आरजू फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज़।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।

0: आजा सनम इस फिल्म के इस गीत के साथ ही, जो कि अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में था, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। साथ ही श्रोताओं, आप हमें सुन रहे हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल सेट के माध्यम से न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी। इस ऐप पर आप भारतवर्ष के किसी भी आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र को जीवंत रूप से सुन सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक नई दिल्ली में जारी है। ये बैठक NDA सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं तथा उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में युवाओं के लिए कार्यक्रमों का विशेष उल्लेख किया गया है।
2: प्रधानमंत्री जी, युवा शक्ति

0: को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए, जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरा है, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभरा है। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक सप्ताह से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया है।

0: और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक सप्ताह से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक दो सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। ये उपग्रह संकेतों की प्राप्ति और ट्रैकिंग में बाधा उत्पन्न करने के साथ साथ भ्रामक सिग्नल भेजकर दुश्मन की स्थिति निर्धारण क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम वाले वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियो पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, लीजिए जानकारी प्राप्त करते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ ही देर बाद शाम 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत, 6:25 पर आप सुनेंगे मैथिली संवाद और शाम 6:30 पर कार्यक्रम गाम घर के अंतर्गत आज आप सुनेंगे घर आंगन। इसी के अंतर्गत आप शाम 7 बजे सुनते हैं खेती गृहस्थी।

रात 9:30 पर आप सुनेंगे चर्चा का विषय है। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 लोक गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, लोक माधुरी। और रात 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीतों पर आधारित कार्यक्रम गीतों के रंग।

शाम 7:30 पर आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। इसे हम अपने पटना केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, कुछ फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 7:52 पर। वहीं शाम 8:15 पर मैथिली में हमारा कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, सिंगर हार। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। 9:00 रात्रि न्यूज़ @9 और 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू खबरें।

0: अभी आप सुन रहे थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष बचे कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।
1: साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन भर तुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काट लेला आ अपने बनल मालूम।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माटिक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। लीजिए सुनते हैं विद्यापति गीत। कलाकार हैं विनय कुमार झा।

0: टाइम से दे दिए
1: भारतक सबसँ पैघ काल धरि सेवा करयवला निर्वाचित प्रधानमंत्री बनि गेलाह। श्री मोदी 26 मई 2014 के प्रधानमंत्री पदक शपथ लेने छलाह। प्रधानमंत्री मोदीक निरंतर कार्यकाल आब 4,399 दिनक भऽ गेल अछि, जे एक कीर्तिमान बनि गेल अछि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नरेंद्र मोदी के देशक सबसँ पैघ काल धरिक निर्वाचित प्रधानमंत्री भेला पर बधाई देलनि अछि। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति कहलनि जे ई ऐतिहासिक अवसर देशक जनता हुनक नेतृत्व में अटूट विश्वास आ भरोसाक प्रमाण अछि। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सोशल मीडिया पोस्ट में कहलनि अछि जे प्रधानमंत्रीक दूरदर्शी नेतृत्व में भारत आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति आ वैश्विक स्तर पर भारतक प्रतिष्ठा में वृद्धि के लऽ कऽ उल्लेखनीय प्रगति देखलक अछि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य आ उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आ कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत आनो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र मोदी के देशक सबसँ पैघ काल धरिक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनल रहला पर बधाई देलनि अछि। केंद्रीय मंत्रिमंडल आई एक प्रस्ताव पारित कऽ प्रधानमंत्री के लगातार दू कार्यकाल धरि सबसँ पैघ अवधिक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनल रहला पर बधाई देलक अछि। बैसारक बाद सूचना आ प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कहलनि जे मंत्रिमंडलक सदस्य लोकनि प्रधानमंत्री मोदीक प्रति सम्मान व्यक्त कयलनि। भाजपाक राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कहलनि जे प्रधानमंत्री मोदी समाजक प्रत्येक वर्गक कल्याण आ विकासक लेल काज कयलनि अछि। एम्हर प्रदेशक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नरेंद्र मोदी के भारतक सबसँ पैघ काल धरि प्रधानमंत्री रहला पर बधाई देलनि। प्रधानमंत्री के लिखल पत्र में श्री चौधरी कहलनि जे हुनक कार्यकाल में भारतक संग संग बिहार सेहो नव ऊंचाई के छूने अछि। एम्हर जनता दल यूनाइटेडक राष्ट्रीय अध्यक्ष आ पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेहो प्रधानमंत्री के एहि उपलब्धि

0: निक वास्ते अपन बधाई आ शुभकामना देलनि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आइ राज्यक 94 लाख सँ बेसी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी लोकनिक खाता मे करीब 1100 करोड़ टाकाक राशि हस्तांतरित कयलनि। श्री चौधरी आइ नव दिल्ली स्थित बिहार भवन सँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंगक माध्यम सँ आयोजित कार्यक्रम सँ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT अंतर्गत ई राशि अंतरित कयलनि। एहि अवसर पर कहलनि जे आब प्रत्येक मासक 10 तारीख के सामाजिक सुरक्षा पेंशनक राशि लाभुक लोकनिक खाता मे पठा देल जायत। राजस्व महाअभियानक अंतर्गत प्राप्त आवेदनक निष्पादन लेल राजस्व आ भूमि सुधार विभाग काल्हि सँ विशेष शिविरक आयोजन करय जा रहल अछि। विभागीय मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल जनौलनि जे ई शिविर सभ हल्का मे 17 जून धरि आयोजित कयल जायत। विशेष निगरानी इकाई बहुचर्चित टेंडर घोटाला में भवन निर्माण विभागक पूर्व मुख्य अभियंता तारणी दास, वित्त विभागक पूर्व संयुक्त सचिव मुमुक्षु चौधरी आ बुटकोक कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह के गिरफ्तार कयलक अछि। हिनका लोकनि लग पछिला दिन 11 करोड़ 53 लाख सँ बेसी राशि जब्त कयल गेल छल। मौसम विभाग आइ प्रदेशक अधिकांश क्षेत्र में वर्षा हेबाक पूर्वानुमान व्यक्त कयलक अछि। एहि क्रम में अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा आ सहरसा जिला में कतेको स्थान पर भारी वर्षा के लऽ कऽ चेतावनी जारी कयल गेल अछि। संगहि 50 सँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति सँ तेज हवा चलबाक सेहो पूर्वानुमान अछि। दरभंगा जिलाक कीरतपुर प्रखंड में कोसी नदी में एक नाव के उनट गेला सँ एक महिलाक मृत्यु भऽ गेलनि, जखनकि 2 आन गोटे के खोज कयल जा रहल अछि। 7 गोटे के सुरक्षित बचा लेल गेल। दोसर दिस अररिया में नगर थाना क्षेत्रक कुसियार गाम लग NH 57 पर भेल एक सड़क दुर्घटना में 3 गोटेक मृत्यु भऽ गेलनि, जखनकि 6 आन गोटे घायल भऽ गेलाह। मधुबनी जिलाक लदनिया प्रखंड में फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कऽ रहल एक ग्रामीण आवास सहायक अजय कुमार रमन के सेवा समाप्त कऽ देल गेल। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम गाम घर।

0: घर आँगन सुननिहार सब श्रोता लोकनिके आ बहिनके मोनी दिससँ स्नेहपूर्वक नमस्कार, सङ्गे लाल बहिन अहूँके नमस्कार।
1: नमस्कार मोनी बहिन, आ सङ्गे घर आँगन सुननिहार समस्त स्नेही श्रोता बहिन लोकनिके हमरो दिससँ नमस्कार। मोनी बहिन, आइ बुध दिन अछि, आ बुध दिन अपना सब अपन आधी आबादी बहिन लोकनिके लेल कार्यक्रम घर आँगन लऽ कऽ अबैत छी।
0: आइ घर आँगनमे अपना सब गपसप करै छी, मनोरञ्जन सेहो कराबै छी, सङ्ग सङ्ग प्रायोजित कार्यक्रम सेहो सुनै छी।
1: आ मोनी बहिन, गप अपना सब दूटा पी एहन करै छी जे एहन आवश्यक गप करै छी जाहिसँ लाभ होइत अछि, ने? ई नहि जे एहिना हमसब फदका करै छी।
0: एकदम एकदम, जहाँ अपना सब दू बहिन बैसब ततः गप नहि चलै, ओहो गपमे सार्थक गप नहि चलै तऽ से केना हैत?
1: ठीके अहाँ कहलहुँ। आ देखियौ, जीवनमे आगू बढ़बाक लेल ईमानदारी सेहो बड़ आवश्यक छै। आ जँ ईमानदारीसँ अहाँ काज करबै तऽ ओहिमे बचत केनाइ बड़ आवश्यक छै।
0: जतबे अछि ओहिमे कनिक बचाबी,
1: जहन हाथ दायाँ बायाँ नहि करबै तहन तऽ जे हमर आमदनी छै ओहिमेसँ कटौती करबै, छहर महर नहि करबै तखने ने बचत हैत। आ जँ छहर महर करबै तहन तऽ बचत नहि हैत,
0: तखन की भऽ जाइ छै, ककरोसँ पैँचा लेबऽ पड़त, कर्जा लेबऽ पड़त, तखन जीवन यापन हैत। आ जँ जतबे भगवान देने छथि, जतबे अर्थ अछि अपना सबके, जतबे आमदनी अछि, ओतबेमे कनिक कनिक जँ सब महीने महीने बचाबी तखन देख

0: सब जीवन में नीक विजय सब समय आबित रहित
1: है कि कोनो एकाएक कोनो एहन काज आबि जाए छे जे मानि लिअ हमरा तनख्वाह भेटल अंतिम सप्ताह महीना के छे आ हाथ पर पैसा घटि गेल तो जो बचत केने रहै छी तो ओ पाई तो निकाल के हम खर्चा कऽ लेब मानि आइ धियेपुता बीमार भऽ गेल पढ़बा लिखबा में कोनो फॉर्मे भरा रहल छै मुदा जब बचत निकलू नै अइ पैसा जमा नै अइ तहन तो दोसर के हाथ पसारू
0: एकदम
1: ओ आदमी देता कि नै देता अपने तऽ मरि कऽ माँगू तऽ एहन काज किया करब जे कहै छै अथी एक रुपया कमाओ तो आठ आना बचाओ
0: एकदम एकदम आ जो आय के कनिक कनिक बचत जे करी छी अपना सा तो धिया पुता जखन नमहर होइत अछि तखन पढ़ाई लिखाई में जे एक मुटगर खर्च लागत अछि तखन अपन सहयोग दै छथिन अपन बहिन सब गर्वक संग जे कि ले हमर बचायल पैसा छो ई तू ओ पढ़ाई में लगा ले
1: तो कतेक प्रसन्नता होइ छै बच्चों के आ घर के लोको के देखियो अखन बेर पर हमरा दोसर हाथ नै पसारल हमर घर के जे गृहिणी छथि से हमरा अते पैसा तऽ
0: तै दुआरे ना जे घर के पुरुष छथिन से सीधे एक के बेर वेतन उठा कर दो दे छथिन लिए सम्हारू आब अहाँ अपन घर केना चले
1: तब बचत केना एमे कोनो ई नै छै कंजूस भेना या बचत केना एमे कोनो हाँ एमे कोनो ई नै छै सब काज करू लेकिन ढंग से करू बजट बना कर करू तो एमे कोनो लाभ मने यहाँ अथी नै छै लाजक बात नै छै आ बचत करे नै निर्णय से अपन बच्चा के सिखाबी
0: फिजूल खर्ची से बची आ देखब जे कि आब एकर बहुत रास उदाहरण भ सकै छै भनसे घर से अपना सब ल लै छी बहिन सब जे किनको किनको देखबे जे कि आब उ तरुआ पापड़ छानल खीन तो ओ तेल के फेंक दे छथिन माने छिए जे कि जे जोरल तेल
1: रहले
0: ओ खराबी करी अपन सबके स्वास्थ्य के लेल मुदा ओ तेल अपना सब व्यर्थ में इस्तेमाले किया करी छी पहले तरुआ पापड़ छान लिए ओकरा बाद ओही में तरकारी बना लिए टटका तेल में कथी ला तल तेल बचत की ओकरा फेंक
1: आ एतबा दियो एना कनी बहुत जना मैल लिए दुई गोटा के आश्रम में त चार टा पांच टा तरुआ बने बात आ ई नै जे आधा
0: झेल
1: दियो बहुत गोटा के देखे छियन त से नै जे ओकरा एतबा दियो जे भ जाए कने मने बचा त ओमे कहबे के लिए तरकारी भुजिया बना के ओकरा खत्म कर लियो देखियो गप सप त बहुत रास है से अपना सब कर मुदा पहिने किछ संदेश है ओ सुन ले छी
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन घर गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है गिरवी रखने से बचा है तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के
1: एखन अपना सब संदेश सुनै छलहुँ आ संदेशक बाद अपना सब गप करै छलहुँ बचत पर तऽ ओहि पर तऽ गप सब केबे केलहुँ आब की मोनी बहिन बचत तऽ होइते रहतै किछु मनोरंजन सेहो बहिन लोकनिके करबाक छै ने
0: की तऽ अपना सब चलै छियै दिस।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत।

0: बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: लाल बहिन, सब गोटे जानित छी ना जे 12 बरस के जे गौरव यात्रा अछि मुख्य रूप से मई 2014 से शुरू भेल केंद्र सरकार के ओही स्वर्णिम कालखंड से अछि जै में सुशासन, विकास, गरीब कल्याण आ सांस्कृतिक पुनरुत्थान के जरिए देश के एकटा नव पहचान दिलक। ई यात्रा सबहक साथ सबहक विकास के मंत्र के साकार केलक। अहिमे जनित छी अपना सब जे गरीब के लेल कतेक कल्याणकारी योजना सब बनल अछि, जाहिमे प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से करोड़ों गरीब सब के पक्किया घर भेटल, उज्ज्वला योजना से अपन बहिन सब के धुआं से मुक्ति भेटल,
3: गैस पर खाना बनबे छथि,
2: आयुष्मान भारत योजना गरीब के मुफ्त इलाज के सुविधा देलक, जनधन खाता के जरिए लोग के बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ल गेल। ई सब जे अछि से 12 वर्ष के गौरव यात्रा के अंतर्गत भेल अछि। कार्यक्रम घर आंगन में अपना सब कनी देर पहले
3: बचत पर चर्चा करै छलम हम,
2: मोनी बहिन, कनिक कनिक जे बचत कैल पैसा रहैत अछि अपन बहिन सब के, लाल बहिन, ओकरा सही जगह पर निवेश करनाय से बहुत आवश्यक अछि। जो अपना सब 10 रुपया बचाबै छी, 20 रुपया बचबै छी, 100 रुपया बचाबैत छी, मुदा ओहि पैसा
3: सही जगह पर
2: कखनो लोह में नहीं आबी जे दुगुना पैसा भ जाइत अछि,
3: ओहो डूब जायत।
2: त तै दुआरे अपना सब अपन जे सरकारी बैंक अछि, एत डाकघर के सुविधा सब जगह अछि, तो पोस्ट ऑफिस में जाकर जमा करू तो ओतो अहाँ के पैसा एकदम सुरक्षित रहत। जतबे अछि जतबे जमा करै छी अहाँ एकदम निश्चिंत भ के अपना सब पैसा जमा क के राख सकै छी।
3: बहुत नीक गप हमर बहिन कहलहुँ हँ। आ ठीक अहाँ कहलहुँ बचत खाली नहि छै जे हम पैसे करी, घर में जे सामान अछि तकरो अहाँ बचत कऽ सकै छी, जेना पानिक बचत भेल, बिजली के बचत भेल, जे किसान भाई बहिन लोग छथि अन्न के बचत भेल, कते बहिन के देखै छियनि आवश्यकता से बेसी भोजन बना लै छथि खर्च लगे, गैस लगे, तिल लगे, आटा लगे, चावल लगे, तो एतबा करू जे ठीक छै एगो दुगो बच गेल तो ठीक छै अहाँ कुत्ता बिलाई के गाय के दे देबै, लेकिन बेसी नहि। आब देखियो हमरा सबके कार्यक्रम जे से प्रायोजित कार्यक्रम के बेर भ गेलै
2: तऽ सुनैत छी आप प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस,
3: तऽ सुनी।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
5: नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से आप सबों के घर आंगन में आज बुधवार का दिन है और लेकर आ गया पैरा मेडिकल है पारस। जी हां, पैरा मेडिकल है पारस में हम बातें करते हैं हेल्थ सेक्टर में पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद रोजगार की भी, स्वरोजगार की भी। अगर जो रोजगार है तो सरकारी क्षेत्र के रोजगार और निजी क्षेत्र के रोजगार की भी बात करते हैं। कहते हैं कि कोविड के बाद से इतना वाइब्रेंट हो चुका है हेल्थ सेक्टर कि पढ़ते पढ़ते ही रोजगार मिल जाता है या कमाना शुरू कर दिया जाता है। पैरामेडिकल है पारस हम लेकर आते हैं राज्य की एक विशिष्ट संस्था है पैरामेडिकल की, श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जो पटना के जक्कनपुर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने है। उनकी तरफ से उनका मानना है कि बिहार के अंतिम युवा तक बातें पहुंच जानी चाहिए कि अगर वो हेल्थ सेक्टर की पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए रोजगार ले लेना बहुत कठिन कार्य नहीं है। हम नंबर बताते हैं, इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद आप चाहे तो डायल कर सकते हैं, नंबर नोट करें 9155558888 और दूसरा नंबर है 9162413233। ये नंबर है, इस पर आप बातें कर सकते हैं और हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी। तो चलिए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। किस मुद्दे पर बात होगी हम, हाँ जोड़ते हैं डॉक्टर साहब, क्या बात करना चाहिएगा पैरामेडिकल के बारे में बताइए।
6: देखिए राजेश जी, बहुत अच्छे अच्छे जो बैचलर का कोर्स आ गए हैं,
5: हाँ।
6: बच्चे लोग के पास अभी तक जानकारी का अभाव है और नहीं कर पाता है,
5: जानकारियों का अभाव है, हाँ।
6: जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और बहुत सारे बच्चे लोग को ये ऐसा पता भी नहीं कि ऐसा भी कोर्स होता है।
5: जी
6: जैसे हुआ बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल एडमिट

0: मैनेजमेंट, ये सब जो कोर्स हैं ये बहुत ही उपयोगी कोर्स है और इस बच्चे ये सब कर करके बच्चे निश्चित रूप से अपने जो सपना देखा है उसके तरफ बढ़ जाता है
1: जी।
0: तो ऐसे ऐसे कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए। सिर्फ आईएससी बायोलॉजी और बीएससी करने से उसके जो टेक्निकल कोर्स अगर नहीं करेगा तो आज के समय में उसका बहुत महत्व नहीं रह गई
1: जी।
0: तो निश्चित रूप से किसी भी बच्चे को अगर डॉक्टर नहीं बन पाया है या डॉक्टर की चाह नहीं है, उतना उसके सामर्थ्य नहीं है, उतना मार्क्स नहीं ला पाता है, उतने पैसे का जुगाड़ नहीं हो सकता है, तो निश्चित रूप से उसको सेकंड ऑप्शन चुनना चाहिए पैरामेडिकल का कोर्स। और पैरामेडिकल में देखिए दो तरह से होता है, एक डिप्लोमा कोर्स होता है, एक डिग्री कोर्स होता
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो डिग्री कोर्स जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है, आसपास होता है। तो ऐसे बच्चे को निश्चित रूप से वह कोर्स चुनना चाहिए और उसमें पढ़ाई कर करके अपने करियर को बनाना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: जिसमें से मैंने पहले भी बताया कि बीपीटी हुआ, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हुआ, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ, ये भी बैचलर का कोर्स है, और उसके बाद बीएचएम हुआ, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट हुआ। तो इस तरह से ये जो कोर्सेज है जो बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है और लगातार बहुत मांग हो रही है इसकी
1: जी।
0: और ऐसे ऐसे जो कोर्स है वो आगे और भी मांग होते जाएगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है
1: जी। एक बात बताइए, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी तो हमेशा से बहुत वाइब्रेंट रहा है ना, इसकी मांग इधर कुछ कम हुई है क्या?
0: बिल्कुल नहीं, इसकी मांग कभी कम भी
1: तो
0: नहीं होगी।
1: मार्केट में इस तरीके से क्यों बातें फैल रही हैं कि फिजियोथेरेपी के कोर्स की यूटिलिटी नहीं रह गई?
0: बिल्कुल नहीं, फिजियोथेरेपी की यूटिलिटी कभी कम नहीं हो सकती है, जिस तरह से मेडिकल की यूटिलिटी कम नहीं हो सकती है और जिस तरह से नर्सिंग की यूटिलिटी नहीं कम हो सकती है, उसी तरह से फिजियोथेरेपी की भी यूटिलिटी कम नहीं होगा, और जहां तक और बढ़ ही रही है। मोटापा बढ़ रहा है, घुटने का ये सब जितने भी बीमारियां हैं सब बढ़ रही है, तो उसकी उसको ठीक करने वाले को कम कैसे माना जा सकता है?
1: नहीं माना जा सकता है, लेकिन लोग कह रहे हैं इसलिए हमने पूछ लिया।
0: नहीं तो उसको जानकारी का अभाव है इसलिए ऐसा कह रहे हैं।
1: तो जानकारी दीजिए युवा साथियों को, थोड़ा डिस्करेज कर रहे हैं।
0: निश्चित रूप से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब कोर्स जो है अभी और वाइब्रेंट होगा और ज्यादा होगा, यहाँ तक कि डिप्लोमा छोड़ करके लोग डिग्री में कर रहे हैं
1: जी।
0: और डिप्लोमा पहले चलता था, अब डिग्री आई है तो डिग्री सब लोग कर रहे हैं, डिप्लोमा तो किए हुए हैं ही, डिग्री लोग करना चाहते हैं। जो बच्चे आता है कि कहता है कि नहीं, तो अगर हमारा 2 साल बर्बाद होगा ही, 2 साल करने का मतलब लगेगा ही, तो 2 साल और कर करके डिग्री कर लेते हैं।
1: हाँ।
0: डिग्री करने से वो जो होता है राष्ट्र स्तर पर वो अपने आप को बिखेर लेता है, और उस तरह से वो जहाँ चाहे जिस विधा में चाहे वो जा कर करके आगे बढ़ सकता है।
1: तो फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी एक बार थोड़ा फिर से दे दीजिए, जैसे जनरल कोर्स में जर्नलिज्म को लोग बर्बाद कर रहा है, बदनाम कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसी तरीके से फिजियोथेरेपी की भी चर्चा हो रही है, तो उसके बारे में एक बार फिर से विस्तृत जानकारी।
0: मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि देखिए हर समय हमेशा रहा गुरुकुल शिक्षा का भी ले लीजिए या कोई भी शिक्षा का ले लीजिए, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सभी जगह मांग है
1: जी।
0: और जनरल एस्पेक्ट में कहिए तो अगर आप उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे लेते हैं और निश्चित रूप से आप पढ़ लेते हैं तो आपकी मांग कभी घटेगी नहीं। और हेल्थ प्रोफेशनल तो एक ऐसा कोर्स है कि नौकरियां आपके पीछे पीछे चलती है, बाकी सब में तो उसको बुलाया जाता है, लेकिन ये हेल्थ प्रोफेशनल है कि आपके पीछे आपकी नौकरियां चलती है। अगर आप अच्छा करते हैं तो यू वेलकम टू एवरी हॉस्पिटल, अगर आप अच्छा नहीं करते हैं तो यू एक्सिट फ्रॉम एवरी हॉस्पिटल। ये तो निश्चित रूप से है कि अगर आप अच्छा नहीं करेंगे अपने अपने प्रोफेशन में तो आपको कहीं मांग नहीं होगी, अगर आप बेहतर अच्छा करेंगे, जितना और अच्छा करते जाएंगे उतना और मांग बढ़ते जाएगी
1: जी।
0: तो ये तो निश्चित रूप से ये परंपरा रही है और हेल्थ का। और जहां तक रही बात की टोटल की बात है, तो टोटल देखिए कि लगातार जो ये हमारा जो खान पान आहार विहार पर्यावरण ये सब जो है लगातार दूषित होते जा रहा है, इससे बीमारियां भी तरह तरह की बढ़ रही है, तो इसको देख रेख करने वाले भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अगर देख रेख करने वाले लगातार बढ़ रहे हैं तो आप कम कहां से होंगे?
1: सही।
0: और फिजियोथेरेपी का इतना एस्पेक्ट बढ़ गया है, जैसे आप खेलों में भी जा सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, सभी जगह कोई ऐसा बताइए कि जहां पर फिजियोथेरेपी की जब आवश्यकता नहीं है, अनुमंडल अस्पताल में, सदर अस्पताल में, खेल के कोई भी क्षेत्र में, अब लगातार खेल की भी संख्या कितनी बढ़ गई है, अब उसमें हर में एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है। अगर इसी प्रकार से देख

0: लगता है कि हजारों हजार की संख्या आ जाती
1: सही,
0: है।
1: सही सही सही बात
0: इतने है। इतने अनुमंडल अस्पताल है, इतने रेफरल अस्पताल है, इतने सदर हॉस्पिटल है, उसके बाद इतने मेडिकल कॉलेज है, इतना एक पूरा विभाग ही है। तो जिस तरह से ऑर्थोपेडिक का नहीं हटेगा, जिस तरह से गायनेकोलॉजी का नहीं हटेगा, जिस तरह से मेडिसिन नहीं हटेगा, उस तरह से ये ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी कैसे हटेगा।
1: सही बात है।
0: और इसकी मात्रा बढ़ते ही जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल बिल्कुल अगर कोई कहता है तो ये बेकार बातें हैं, वो उसको पढ़ने की जरूरत है और अच्छा से पढ़ने की जरूरत है। मैं आग्रह यही करता हूँ, हमेशा इम्फेसिस करता हूँ सभी बच्चों को कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आपकी नौकरी आपकी रखी हुई है। कोई भी विषय हो जाए, जैसे अगर हम लोग मैट्रिक का ही उठा लेते हैं तो मैट्रिक में 120 बच्चे होते हैं, तो सबका मार्क्स एक समान तो नहीं आता है राजेश जी,
1: बिल्कुल नहीं।
0: लेकिन जो अच्छा से पढ़ता है निश्चित रूप से उसका मार्क्स अच्छा रहता है, और वो उसी में से कुछ लोग और अच्छे कर जाते हैं। तो मैं ध्यान यही केंद्रित करना चाहता हूँ बच्चों को कि आओ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो और कुछ नहीं, और तुम्हारा भविष्य यहीं से निर्णायक हो जाएगा और तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम अपने मुकाम पर पहुंच जाओगे। जो तुम्हारे गार्जियन तुम्हारे परिवार ने तुमको सपना देखा, जो सोसाइटी ने तुम्हारे लिए सपना देखा है, उसको साकार करो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और आगे बढ़ जाओ।
1: पैरामेडिकल है पारस, ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं हूँ आपका अपना राजेश, और डॉक्टर NP प्रियदर्शी जो है ना इस कार्यक्रम में बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से। कितने लोगों ने इस कार्यक्रम को सुनकर ऑप्ट किया प्रोफेशनल कोर्स, चाहे वो पैरामेडिकल के कोर्सेज हो, नर्सिंग के कोर्सेज हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हो, और आज अपने लिए एक अच्छा करियर चुन लिया है। आज भी लोग कर रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चों आपको हम ये बताना चाहते हैं जिनको करियर निर्माण करना है 1-2-3 साल के अंदर, आपके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही उम्दा साबित होगा। नोट करें, अगर अभी से ही आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो डॉक्टर NP प्रियदर्शी से बात करके उसे दूर करें। नंबर नोट करें 9155558888 9155558888, और दूसरा नंबर है 9162413233 9162413233। और अब डॉक्टर प्रियदर्शी, फिजियोथेरेपी में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स, 4 साल का डिग्री कोर्स, यही है ना
0: जी?
1: इसी में आपको 4 साल तक मेहनत करनी है। श्री राज नर्सिंग में ये है क्या फिजियोथेरेपी उच्च स्तर का
0: 2023 से
1: पढ़ाई लिखाई के बारे
0: जी,
1: में
0: जी, जी।
1: पढ़ाई लिखाई के बारे में
0: बिल्कुल, मैं तो पहले ही इसके पहले भी एपिसोड में मैंने बताया था कि जो आपने चर्चा किया था तो कि पढ़ाई का क्या स्तर रहता। हमने पहले ही बताया था कि हम पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर कब डेवलप करते हैं, जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तभी हम कोई कोर्स को लॉन्च करते हैं, और लोगों और जगह से हम बेहतर रिजल्ट देंगे। ये हमेशा लगातार 10 साल से हमारा ये कीर्तिमान रहा है और आगे भी कीर्तिमान रहेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ।
1: एंड जॉब अपॉर्चुनिटी फिजियोथेरेपी करके नौकरी या फिर स्व व्यवसाय,
0: उसकी इच्छा उसकी इच्छा, अगर वो नौकरी में जाना चाहे तो नौकरी में जाए, उसको स्व व्यवसाय करना है तो स्व व्यवसाय करे, मल्टीनेशनल में जाना चाहे तो मल्टीनेशनल जाए, एब्रॉड जाना चाहता है तो एब्रॉड जाए,
1: कहीं
0: उसकी इच्छा, कहीं भी नौकरियां सभी जगह है,
1: नौकरियां सही जगह हैं, डॉक्टर साहब ने कहा। इसीलिए ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि लोग मार्केट में क्या कह रहे हैं, डॉक्टर साहब ने कहा जिस तरीके से डॉक्टर्स की कभी मांग कम नहीं होगी, नर्सिंग की कभी मांग कम नहीं होगी, उसी तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट की मांग कभी भी कम नहीं होगी, इस बात को सोचने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में क्या है पहले ये बताइए और फिर आगे चर्चा करेंगे।
0: देखिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी को सीधे शब्दों में समझिए तो ये फिजियोथेरेपी का अपना भाई है, अपना भाई है, दोनों का बंटवारा हो गया।
1: क्या पढ़ाई होती है?
0: दोनों में सब कुछ सामान्य है, सब कुछ समान है, उसमें से बस यही डिफरेंट है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो तो करते ही हैं, जितने भी विधा है हाइड्रोथेरेपी इलेक्ट्रोथेरेपी एक्सरसाइज थेरेपी सारे देते ही हैं, उसमें ऐड क्या हो गया है सो समझिए, ऐड हो गया मतलब जो जिस लाइक का है उसके लाइक का कुछ रोजगार के बारे में बता देना उसको।
1: अच्छा,
0: ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ कि ऑक्यूपेशन बना देना,
1: ऑक्यूपेशन व्यवसाय
0: उसके लाइक बना देना। जैसे मान लिया कि कोई पढ़ा लिखा अगर हो गया है, अपंग हो गया है, तो उसको कुछ कंप्यूटर चलाने, कुछ और भी काम जो जिसमें उसकी रुचि है,
1: जॉब ओरिएंटेशन,
0: जिसमें उसकी रुचि है।

0: उसके लायक उसको बना देना।
1: अच्छा,
0: अगर मान पैर कट गया तो वो दौड़ तो नहीं सकता है, नहीं। जात नहीं सकता है, लेकिन वो क्या कर सकता है, उसको और क्या क्या ऑक्यूपेशन है जिसको वो समझाता और बताता और इस पर उसको आगे बढ़ा देता है, तो यही ऑक्यूपेशन थेरेपी है। और ये आजकल आज जो है, आज चूंकि हम लोग के नजरों में नहीं आता है, लेकिन एक जगह कलेक्टिवली अगर देखते हैं तो रोज इस भागदौड़ की जिंदगी में कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितने अपंग हो जाते हैं, कितने क्या हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से उसको जिस लायक है उस लाइक को बनाने का काम ऑक्यूपेशनल थेरेपी का है।
1: यही काम ऑक्यूपेशनल थेरेपी का है, बिल्कुल। ये फिजियोथेरेपी हाँ जो है ना, उसका सगा भाई है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, और उससे कुछ कदम आगे है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज वक्त नहीं है, आज हमने फिजियोथेरेपी के बारे में जो भ्रांतियां फैली थी कि जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, नीचे की ओर जा रहा है, पढ़ाई करना मुश्किल है, ये सारी चीजें आपने दूर की कि ये सारी चीजें गलत है, इस पर कहीं से विचार करने की जरूरत नहीं है, जमकर पढ़ाई कीजिए, आगे सोचिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में आगे हम बातचीत करेंगे अगले आने वाले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, लगातार हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर बहुत ही उम्दा है, आप इसमें अपना करियर आजमा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे तो नंबर नोट कर लें, एक बार फिर से बता रहे हैं 9155558888, 9155558888, ये पहला नंबर। दूसरा नंबर है 9162413233, 9162413233, ये नंबर है, इस पर बात कर लीजिए। और इसे कहीं से विज्ञापन नहीं समझिए, ये सहूलियत है आप युवाओं के लिए। फिलहाल चलने का वक्त हो गया, राजेश आज निकलता है, अगले बुधवार को फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
3: तखन सुनै छलहुँ अपना सब प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस घर आंगन में,
4: एहिसँ बहुत रास जानकारी हमरा लोकनिके भेटैए। जिनका जाहि क्षेत्रमे रुचि होय वएह पढ़ाई करत, ओहि क्षेत्रमे जाइत, एहिसँ हमरा लोकनिके ई से भेटैए। आब देखियौ हमर सबके कार्यक्रम घर आंगन समेटबाक बेर भऽ गेलै, एकरा समेटी आ कार्यक्रम खेती गृहस्थी पसारी। सबसँ पहिने तऽ किसान भाई लोकनिके कार्यक्रममे स्वागत करै छियनि आ नमस्कार करै छियनि।
3: एकदम एकदम स्वागत छनि किसान भाईके। किसान भाई सब खेती बाड़ी करै छथिन लाल बहिन, ओहिमे प्रयास इएह रहै छनि जे कि आब जीवाणु खाद जैविक खादके व्यवहार बेसीसँ बेसी करथि।
4: रासायनिक खाद तऽ एकदम नहि ओसभ पसन्द करै छथि, आ ओनाहो सरकारो तरफसँ जोर देल जाइए जे जैविक खेती जीवाणु खादक उपयोग बेसीसँ बेसी करू, जाहिसँ कि माटिके गुणवत्ता बेसी धरि टिकल रहत आ पर्यावरण सेहो सुरक्षित रहत। तऽ किसान भाइ लोकनि एहिपर ध्यान दै छथि आ जीवाणु खादके बेसीसँ बेसी उपयोग करै छथि जे बेरक मांग अछि।
3: जीवाणु खाद जाहिमे सूक्ष्म जीव होइत अछि, जाहिसँ पौधके पोषक तत्व प्रदान कयल जाइत अछि, ई जीवाणु हवाके बीचक जे नाइट्रोजन अछि ओ उपलब्ध करेबामे आ माटिमे अघुलनशील फास्फोरसके घुलनशील बनेबामे मदद करैत अछि। आ एकरा अलावे लाल बहिन, सूक्ष्म जीवक क्रियासँ कतेको हार्मोन बनैत अछि जे कि पौधके बढ़ैमे फूलैमे मदद करैत अछि।
4: ठीक यऽ, अहाँ कहलहुँ तैँ किसान भाइ लोकनिके से जीवाणु खादके उपयोग कर। किसान भाइ लोकनिके फसलक लेल एजोस्टी फेसियल नामक जीवाणु खादक व्यवहार करबाक चाही, जेना गहूँम मकई तेलहन तरकारी कुसियार इत्यादि फसलक लेल एजोटोबैक्टर नामक जीवाणु खादक व्यवहार करबाक बहुत आवश्यक होइत अछि, ओकरे करबाक चाही।
3: अब एकरा संगे किसान भाई दलहनी फसिल के जड़ि में गुलाबी रंगक गांठ बनैत अछि, एहि गांठ में राइजोबियम नामक जीवाणु रहैत अछि जे कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस के माटि में स्थगित करैत अछि, जेकरा पौध द्वारा आसानी सँ शोषित कयल जाइत अछि। किसान भाई, राइजोबियम कल्चर के प्रयोग सँ माटि में लगभग 15-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन खाद के लाभ भऽ जाइत अछि। एकरा अलावे उपजा में लगभग 10% के वृद्धि सेहो होइत अछि। एहि कल्चर खाद के प्रयोग खेरही उड़ीद राहरि सोयाबीन मटर चना मूंगफली के फसिल में किसान भाई करैत छथिन।
4: ठीके कहलहुँ। आ किसान भाई बहिन लोकनि के एहि सब प्रकारक जीवाणु खाद सँ बीया उपचारित करबाक चाही, तखने से ओकरा लगेबाक चाही। एकर तरीका जेना कुसियार आलू अरबी

0: भी एहन फसिल मे से बायोफर्टिलाइजर के प्रयोग के लेल कंद के उपचारित क के तहन लगेबाक चाही।
1: एकदम आ किसान भाई, जानकारी बहुत रास अछि आ आइ तो बुध दिन अछि तो कृषि गतिविधि सेहो सुनब, मुदा ओहिसँ पहिले संदेश
0: सुनै छी।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: एखन संदेश सुने चलो।

0: बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: एखन संदेश सुनै छलहुँ आ संदेश उपरान्त से कार्यक्रममे किसान भाइ लोकनिके स्वागत करै छियनि। आ अहाँके हाथमे देखै छी एकटा आवश्यक सूचना, तऽ से पहिने अपन श्रोता लोकनिके कहि दियौ।
3: कार्यक्रम सम्बन्धी एकटा सूचना अछि श्रोता लोकनि, रक्तदानके माध्यमसँ नहि सिर्फ जरूरतमन्द व्यक्तिके जीवन रक्षा कयल जा सकैत अछि, बल्कि रक्तदाताके एहिसँ स्वास्थ्य सम्बन्धी कतेको फायदा होइत अछि। रक्तदान क्यों है महादान, यह अछि आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगीक अगला अंकक विषय। विशेषज्ञ हेता डॉक्टर संजीव कुमार, इंचार्ज रीजनल ब्लड बैंक DMCH दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़े के लेल हमर सबके फोन नंबर है 0627222481। मोबाइल नंबर अछि 9430029353। मोबाइल नंबर एक बेर फिर से कह दी 9430029353। कार्यक्रम हेलो जिंदगी के प्रसारण समय मोन राखब रवि दिन 14 जून 2026 दिन के 11 बजे। यह छल कार्यक्रम संबंधी सूचना।
2: आप देखियो हमर सबके कार्यक्रम में अबीर भ गेलै मनोरंजन के, आप किसान भाई लोकन के मनोरंजन तरफ लऽ जइयन आ सुनबा दै छन एकटा सुंदर सन लोकगीत।

0: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: तो किसान भाई स्वागत करै छिन खेती गृहस्थी में। अपना सब राधा मोहन मिश्रक स्वर में गीत सुनलो सने से पहले संग संग कहने छले किसान भाई के जे कि आय बुध दिन अस त कृषि गतिविधि सेहो सुनब। त कृषि गतिविधि लक आबि गेल छथिन वाचन आ संकलन सविता कुमारी के, प्रस्तुति असद दाऊद के। त सुनैत छी
3: आजुक कृषि गतिविधि के संग हम लाल बहन उपस्थित छी नव नव जानकारी के संग। राज्य में माछक उत्पादन 10 लाख टन के पार कऽ गेल। माछ पोसनिहार किसान भाई बहन लोकन के आय तो बढ़बे करतन, ओ रोजगार के अवसर सेहो बढ़ गेलन अछि। माछ पोसनिहार किसान भाई लोकन के लेल 50% अनुदान सेहो देल जाइत छनि। माछ पोसबा के बढ़ावा देबाक वास्ते 40-50% पोखरि सँ लऽ कऽ हेचरी निर्माण में अनुदान के प्रावधान अछि। बिहार के बेसी जिला में पंगास सीलन माछ के उत्पादन होइत अछि। मधुबनी और दरभंगा में रौ ओ कतला के बेसी उत्पादन होइत अछि। नालंदा, रोहतास, सीवान जिला के चौर क्षेत्र में पंगास के उत्पादन बेसी होइत अछि। बर्ख में 2 बेर ई माछ निकालल जाइत अछि। माछ पोसनिहार किसान भाई लोकन के लेल ई एकटा उपलब्धि अछि जे 2025-26 में बिहार में माछक उत्पादन 9.60 सँ बढ़ि कऽ 10.28 लाख टन भऽ गेल अछि। ओना आवश्यकता एहिसँ आओर बेसी के अछि, 2.5 लाख टन कम उत्पादन अछि। 2024-25 के तुलना में 68,000 टन माछक उत्पादन बढ़ल। एतबे नहि, बिहार में एखन सालाना माछक मांग 12.9 लाख टन अछि। बेसी जिला में पंगास सीलन माछक उत्पादन होइत अछि। बिहार में 60% लोग माछक सेवन करैत छथि।

0: एतय प्रति व्यक्ति सालाना माछक खपत कहबे केलहुँ हैं 12.9 लाख टन के आवश्यकता अछि। मधुबनी में सबसँ बेसी 1,30,000 टन माछक उत्पादन होइत अछि। दोसर स्थान पर अछि पूर्वी चंपारण। डेयरी मत्स्य और पशु संसाधन विभाग के सब जिला में वित्तीय वर्ष में माछक उत्पादन के रिपोर्ट भेट गेल अछि। एकर अनुसार एखन सालाना 12,90,000 टन माछक आवश्यकता अछि। एकरा पूरा करबाक लेल आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल सँ माछ एतय मंगाओल जाइत अछि। आंध्र प्रदेश में माछक उत्पादन के लागत में कम खर्च अछि, तैं ओतय सँ माछ मंगबै छथि, सस्ता भेट जाइत अछि। बिहार में मीठ जल में माछ बेसी स्वादिष्ट और ताजा होइत अछि। स्नेह किसान भाई बहन लोकनि, बिहार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू भ गेल। एकर संग पहिने सँ जे बिहार राज्य फसिल सहायता योजना चलि रहल छल ओकरा बंद कऽ देल गेलै। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अध्यक्षता में सोम दिन राज्य मंत्री परिषद के बैठक में ई निर्णय लेल गेलै। बैठक में कुल 25 प्रस्ताव पास कयल गेल। बैठक में कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी कहलनि जे रवि 2026-27 मौसम सँ केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के स्वीकृति देल गेल। ई योजना राज्य में खरीफ 2018 सँ चलाओल गेल बिहार राज्य फसल सहायता योजना के स्थान लेत। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी एहि योजना के लाभ भेला के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित किसान के कृषि लागत के समतुल्य फसल क्षति के भुगतान के सुनिश्चित कयलनि। संगे एहि योजना के अंतर्गत बीमित भूमि के कोनो अधिसीमा नहि होबाक कारणे राज्य के पैघ जोत वाला किसान के ओकर बीमित भूमि के समतुल्य फसल क्षति के लाभ हेतनि। योजना एहि साल सँ लागू कयल गेल अछि। स्नेही किसान भाई बहिन लोकनि, एकटा आर आवश्यक सूचना अछि। जाले BAO कार्यालय प्रखंड मुख्यालय में आगामी 13 जून का प्रखंड स्तरीय कृषि प्रशिक्षण सह जागरूकता शिविर आयोजित कयल जायत। ई जनतव्य BAO प्रेमनाथ सी देलनि। एहि कार्यक्रम के माध्यम सँ किसान लोकनि के खरीफ फसिल के उन्नत खेती, कृषि योजना ओ किसान के भेटै वाला सुविधा के जानकारी देल जेतन। तैं किसान भाई बहन लोकनि एहिमे आबथ, ओ एहिसँ एकर लाभ उठाबथ। बस आइ एतबे, फेर बुध दिन कृषि गतिविधि लऽ कऽ फेर हम उपस्थित रहब।
1: कृषि गतिविधि अपना सब सुनैत छलहुँ, वाचन आ संकलन सविता कुमारी के छलनि। लाल बहिन, अपन किसान भाई सब जानकारी के संग संग मौसम पर सेहो बहुत बेसी
0: निश्चित रूप सँ मौसम तऽ पर सबटा दारमदार निर्भर रहै छै। मौसम के जानकारी दऽ दियौन, फेर मनोरंजन होइत रहतै।
1: हाँ, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर सँ जे मौसम के जानकारी भेटल अछि ओ 10-14 जून धरि के अछि। पूर्वानुमान अवधि में अधिकांश समय में आसमान में आंशिक रूप से मेघ छाओल रह सकैत अछि। 11-13 जून के आसपास वर्षा के समय मेघ गर्जन आ तेज अन्हर हवा चलवाक संभावना अछि। विशेष रूप से 11-13 जून के दौरान एहन मौसमी गतिविधि के बेसी संभावना अछि। गोपालगंज, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण आ पश्चिमी चंपारण में 11-12 जून के 65-70 मिलीमीटर के भारी वर्षा के आशंका अछि। आन जिला में हल्लुक से मध्यम वर्षा हेबाक संभावना बनि रहल अछि। अधिकतम तापमान जे छै से 35-39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहबाक संभावना छै, जे सामान्य से लगभग 2-3 डिग्री सेल्सियस बेसी अछि। न्यूनतम तापमान 25-28 डिग्री के बीच रह सकैत अछि। भिनसर में सापेक्ष आर्द्रता जे छै 70-75% आ दुपहरिया में 20-25% रहबा के संभावना बनि रहल छै। हवा मुख्यतः पूर्वा दिशा से 15-19 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकैत अछि।
0: तऽ ई छल हमर सबके मौसम पूर्वानुमान। तऽ एहिसँ हमरा किसान भाई लोकनि के मौसम के जानकारी भऽ जाइ छनि, तऽ ओ सब साकांक्ष रहैत आ जखन बरखाक संभावना रहै, बिजली चमकाके, ठनका ठनकैके, तऽ सब सुरक्षित अपन घर में रहैत, किया तऽ

हुनकर जानकारी तऽ भेट चुकल छनि तऽ सब गोटा नीकसँ रहथि जाहिसँ किनको नोकसान नहि होइन। आब किसान भाइ लोकनिके किछु मनोरञ्जन दिस लऽ जाइयनि आ एकटा सुन्दर सन लोकगीत सुनवा दै छियनि।

0: हाँ, तऽ संगीता सिन्हाके स्वरमे हमरा लोकनि एखन ई झूमर सुनै छलहुँ हेँ। आशा करै छी हमर श्रोता लोकनिके सेहो खूब पसिन्न भेल हेतनि। आ मुनि बहिन, एखन कोन काजके प्राथमिकता देल जाए
1: किसान
0: भाइ लोकनिके, एहिपर ध्यान राखब बड़ आवश्यक छै।
1: एकदम, तऽ किसान भाइ सबके जे छनि से सलाह देल जाइ छनि जे वर्तमान मौसम परिस्थिति खरीफ मकईके बाउगक लेल अनुकूल अछि, तऽ किसान भाइ खेतक ओरियान आ बाउगक काज जे छै से समयसँ पूरा कऽ लेथिन। अंतिम जुताई के समय 100-150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर नीक जकां सौरल गोबर के खाद के संगे 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 50 किलोग्राम पोटास के व्यवहार करथिन। उत्तर बिहार के लेल शक्तिमान 2, शक्तिमान 5, शक्तिमान 6, राजेंद्र शंकर मक्का 3 किस्म जे छै से बाउगक लेल उत्तम अछि। आ धानक मध्यम अवधि वाला जे किस्म अछि, जेना संतोष, सीता, सरोज, सहभागी धान, राजेंद्र श्वेता आ सुगंधित किस्म जेना राजेंद्र, राजेंद्र सुवासिनी, राजेंद्र कस्तूरी आ राजेंद्र भगवती के नर्सरी में बाउ किसान भाई अखन उपयुक्त समय आबि गेल अछि आ एकर बाउ जे छै से 25 जून तक कयल जा सकैत अछि।
0: तऽ आब हमर सबके कार्यक्रम जे खेती गृहस्थी मुनि बहिन, आब ओ समेटबाक बेर भऽ गेलै, तब एकरा समेटी आ किसान भाई लोकनिसँ चलबाक आज्ञा लै छी। नमस्कार मुनि बहिन।
1: नमस्कार लाल बहिन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। साथ ही आप हमें सुन रहे हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही देर में पटना केंद्र से किया जाएगा। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: इधर आइए इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
3: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाया। देश विदेश के नेताओं ने दी बधाई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 94 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को DBT के माध्यम से पेंशन राशि हस्तांतरित की। विशेष निगरानी इकाई ने बहुचर्चित टेंडर घोटाले में एक पूर्व IAS अधिकारी समेत 3 अधिकारियों को किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने कल पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा और वैशाली समेत 14 जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है, जो एक रिकॉर्ड है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को देश के

0: सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल के सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता है। गरीब कल्याण एवं वंचित वर्गों के सशक्तिकरण हेतु उनके नेतृत्व में हुए कार्यों के लिए आभार व्यक्त करता है। उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों को सराहना करता है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए कृतज्ञता प्रकट करता है।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारत के गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है।
3: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, उसमें सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में श्री चौधरी ने कहा कि उनके कार्यकाल में भारत के साथ साथ बिहार ने भी नई ऊंचाइयों को छुआ है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी बिहार को श्री मोदी का मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वतंत्र भारत के दीर्घकालीन प्रधानमंत्री होने का कीर्तिमान स्थापित करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि करोड़ों देशवासियों के विश्वास की जीत है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत लगातार प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने भी प्रधानमंत्री को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में चल रही है। यह बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक

0: के नेता भी मौजूद हैं। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और 2047 तक देश को विकसित देश में बदलने के मोदी सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज 94 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खातों में लगभग 1100 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। श्री चौधरी ने नई दिल्ली स्थित बिहार भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत यह राशि अंतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हर महीने की 10 तारीख को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि लाभुकों के खाते में भेज दी जाएगी।
4: बिहार में आज लगभग 1 करोड़ हमारे जो दिव्यांगजन है, विधवा बहने हैं और जिनको भी सभी तरह का पेंशन सरकार के द्वारा देने का काम किया जा रहा है। प्रत्येक महीने के 10 तारीख को ये इंश्योर करना है कि हमारी जो बहने हैं, चाहे वृद्धजन हो, विधवा बहने हो या दिव्यांगजन हो, सबको पेंशन हर हालत 10 तारीख को उनके खाते में दे देना है।
0: मुख्यमंत्री ने 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र लोगों से शीघ्र आवेदन करने तथा आधार लिंक नहीं होने के कारण पेंशन से वंचित लाभुकों से जल्द आधार लिंक कराने की अपील की। राजस्व महाभियान के दौरान प्राप्त आवेदनों के निष्पादन के लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग की ओर से कल से शिविर का आयोजन किया जाएगा। विभागीय मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि ये शिविर सभी हल्का में 17 जून तक आयोजित होंगे।
5: कि बिहार के अंदर जो करीब 46 लाख लंबित आवेदन बचे हुए हैं और उसके लिए एक महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। 11 जून से लेकर 17 जून तक ये विशेष अभियान राजस्व विभाग के द्वारा चलाया जाएगा और राजस्व महाअभियान के तहत प्राप्त सभी आवेदनों की स्कैनिंग, पोर्टल पर अपलोडिंग और निष्पादन का अभियान होगा और इस कार्य को अधिकारियों के द्वारा और कर्मचारियों के द्वारा विशेष अभियान चलाकर पूरा किया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में गूगल इंडिया के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। बैठक में तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि GCC नीति के तहत गूगल को राज्य में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने आज पटना में बिहार राज्य भंडार निगम में नियमित नियुक्ति प्रक्रिया के तहत PCDO पद पर चयनित 15 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। वर्ष 1958 के बाद पहली बार निगम में नियमित नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई है। विशेष निगरानी इकाई ने बहुचर्चित टेंडर घोटाले में भवन निर्माण विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता तारिणी दास, वित्त विभाग के पूर्व संयुक्त सचिव मुमुक्षु चौधरी और बुडको के कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। इन सभी के पास 11,53,00,000 रुपए से अधिक की राशि जब्त की गई थी। इकाई ने इस मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की है।

0: निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने समस्तीपुर जिले के राजचक बहाउद्दीन ग्राम पंचायत के मुखिया सियाराम राय को 1,20,000 रूपये रिश्वत देते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुखिया शिकायतकर्ता शिक्षक से निलंबन समाप्त करने के एवज में घूस दे रहा था। इधर ब्यूरो की टीम ने गया जिले के पेलागंज थाना क्षेत्र से चौकीदार मनीष कुमार को 9,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चौकीदार एक केस में नाम हटवाने के लिए शिकायतकर्ता से घूस ले रहा था। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज के टेढ़ा गाछ में सबसे अधिक 57.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने कल पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा और वैशाली समेत राज्य के 14 जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है।
1: राज्य के पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, सिवान एवं वैशाली जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: अररिया नगर थाना क्षेत्र के कुसियार गांव के पास NH57 पर सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 6 अन्य घायल हो गए। दरभंगा जिले के कीरतपुर प्रखंड में कोसी नदी में एक नाव पलट गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि 2 अन्य की तलाश जारी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाया। देश विदेश के नेताओं ने दी बधाई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 94 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को DBT के माध्यम से पेंशन राशि हस्तांतरित की। विशेष निगरानी इकाई ने बहुचर्चित टेंडर घोटाले में एक पूर्व IAS अधिकारी समेत 3 अधिकारियों को किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने कल पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा और वैशाली समेत 14 जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

आकाशवाणी एट 90। आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है बक्सर जिले की हलचल। बक्सर जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता शशांक शेखर।
1: बक्सर जिले में भीषण गर्मी को देखते हुए बक्सर जिला प्रशासन ने लोगों को गर्मी से बचाव के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी साइला ने बैठक कर अधिकारियों को आम लोगों, श्रमिकों, बच्चों, पशुओं को गर्मी में बचाने के निर्देश दिए हैं। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, स्वास्थ्य संस्थानों में कूल रूम की व्यवस्था करने को कहा गया है। मजदूरों के लिए दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक काम का रोक लगाने, पेयजल, ORS और शेड की व्यवस्था सूचित करने का निर्देश दिया गया है। वही प्रशासन की ओर से विभिन्न स्थानों पर शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है ताकि आम राहगीरों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही लू और डिहाइड्रेशन जैसे गंभीर समस्याओं से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। जिले के आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बीते दिनों जिला प्रभारी मंत्री नंदकिशोर राम और जिलाधिकारी साहिला ने सहयोग शिविर का उद्घाटन किया। चुरावनपुर, रामपुर, कला और तेरा पंचायत में आयोजित शिविरों में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक माह प्रथम और तृतीय मंगलवार को पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। इसमें राजस्व, पेंशन, राशन, स्वास्थ्य, बिजली, कृषि, आवास से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। शिकायतों के निपटारे का लक्ष्य 30 दिनों के भीतर रखा गया है।
2: महीने के हर पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन विभिन्न प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों में किया जाएगा। हम लोग ये अपील करना चाहते हैं सभी जिला वासियों से कि वो बढ़ चढ़ कर सहयोग शिविर में उपस्थित हों, भाग लें और उनकी जितनी भी शिकायतें हैं, न केवल शिकायतें बल्कि अगर वो कोई सुझाव भी अगर सरकार को देना चाहते हैं तो सहयोग शिविर के माध्यम से दिए जा सकते हैं।
1: जिले के डुमराव प्रखंड के नुआव पंचायत और ब्रह्मपुर प्रखंड के रघुनाथपुर पंचायत में सहयोग शिविर आयोजित किए गए। शिविर का उद्घाटन ऊर्जा सचिव अजय यादव ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन शिविरों का उद्देश्य जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बक्सर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत लगभग 26 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से सूचना प्रणाली, CCTV कैमरे, प्लेटफार्म विस्तार, वायरलेस ट्रैक और क्विक वाटरिंग सिस्टम जैसी सुविधाओं का उन्नयन किया जाएगा। यात्रियों की सुविधाओं के लिए दिव्यांग जन अनुकूल व्यवस्था, रैप और आधुनिक शौचालय के निर्माण कराए जाएंगे। जिले के डुमराव स्थित वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय में स्टार्टअप और GST को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें छात्रों को व्यवसाय शुरू करने की कानूनी प्रक्रिया, कर व्यवस्था एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वाणिज्यकर विभाग के संयुक्त सचिव तेजकांत झा ने GST नियमों की जानकारी दी। निबंधक असित कुमार सिंह ने कंपनी पंजीयन प्रक्रिया को समझाया। वहीं जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक ज्योत्सना वर्मा ने बिहार स्टार्टअप नीति 2022 और युवाओं के लिए उपलब्ध योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में उपस्थित विशेषज्ञों ने छात्रों को रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने वाला बनने के लिए प्रेरित किया। राज्य सरकार के ऊर्जा सचिव अजय यादव और जिलाधिकारी साहिला ने बीते दिनों बक्सर थर्मल पावर प्लांट का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने प्लांट की कार्य प्रणाली, बिजली उत्पादन क्षमता, तकनीकी व्यवस्था, सुरक्षा मानकों की व्यवस्था की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान मशीनों की स्थिति, उत्पादन की प्रक्रिया और संचालन व्यवस्था का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने गुणवत्ता और समयबद्ध कार्य पूर्ण करने पर जोर दिया। जिला योजनालय की ओर से आगामी 27 मई को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। संयुक्त श्रम भवन परिसर में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक यह कैंप लगेगा। इसमें कई निजी कंपनियां शामिल होगी। मेले के विभिन्न कंपनियों द्वारा कुल 395 पदों पर भर्ती की जाएगी। 10वीं, 12वीं और ITI डिप्लोमा, स्नातक, बीटेक योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को विभिन्न राज्यों में नौकरी का अवसर मिलेगा। जिले में आगामी बाढ़ और सुखाड़ से निपटने की तैयारी को लेकर समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। प्रभारी सचिव अजय यादव ने बैठक के दौरान नाव की जांच, गोताखोरों की सूची और राहत सामग्री एवं आपात सेवाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने जल निकासी, घाट सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा तथा विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। बक्सर जिले में बकरीद का पर्व शांतिपूर्वक, सौहार्दपूर्वक माहौल में सम्पन्न हो गया। सुबह से ही मुस्लिम समुदाय के लोगों की बड़ी संख्या में विभिन्न दरगाहों और मस्जिदों में पहुंचे और सामूहिक रूप से ईद उल जहा का नमाज अदा की। नमाज अदा करने वाले लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर बकरीद की मुबारकबाद दी और अमन चैन, भाईचारे की दुआ मांगी।
0: अभी आप सुन रहे थे बक्सर जिले की हलचल। बक्सर जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता शशांक शिखर।
3: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। लीजिए सुनते हैं कुछ फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है फिल्म अग्निसाक्षी से। गायक कलाकार हैं बाबुल सुप्रियो और कविता कृष्णमूर्ति।

अगला गाना हमने लिया है फिल्म गायब से। गायक कलाकार हैं सोनू निगम।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। लीजिए सुनते हैं मैथिली में हमारा कार्यक्रम सिंगरहार।

श्रोतागण नमस्कार। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहारक आजुक अंकक संग हम राकेश चंद्र नंदन। बंधु लोकनि, हमसब जखन अपन कार्यक्रम सिंगरहार में एक संग जुड़ गेल छी तऽ हमरा लोकनि बहुत रास गप करब। देखू ने, गर्मी अपन चरम पर पहुँच गेल अछि। भरि दिनक तिक्ख रौद प्रायः सब ठाम सब गोटा के फिरिसान केने रहैत अछि। मुदा इहो ओतबे सत्य जे गर्मी कतबो हुए लेकिन हमरा लोकनि अपन काज में लागल रहै छी। हाँ, ओहिसँ बचबाक जे उपाय निश्चित रूपसँ ओ सब संगहि चलैत रहैत अछि। आ ई तऽ हमर सभक कर्तव्य बनैत अछि। जखन हमरा लोकनि अपन कर्तव्य सभक गप करै छी तऽ मोन में अबैत अछि जे ई संसार तऽ एक गोट रंग मंच अछि। आ एहि संसार रूपी रंग मंच पर हमरा लोकनि विभिन्न पात्र सदृश अपन अपन जे अभिनय ओ करैत रहैत छी। जिनकर जेहन भूमिका तेहने हुनक अभिनय, जे केओ अपन अभिनयसँ कीर्तिमान रचैत छथि, अनंत काल धरि हुनका मौन राखल जाइत छनि। आ जिनक अभिनय नीक नहि रहल ओ समाजमे प्रतिष्ठित नहि भऽ पबैत छथि। एकरहि नाम तऽ जिंदगी अछि। गप हमरा लोकनि आगाँ आओर करब, मुदा पहिने ई गीत।

0: दीपक कुमार झाक स्वर में एखन हमरा लोकनि ई गीत सुनि रहल छलहुँ। बंधु लोकनि, भारतीय भाषा और साहित्यक इतिहास के जखन हम सब पढ़े छी तो देखना जाइत अछि जे मैथिली नाटकक परंपरा अपना सब ओहिठाम बड्ड समृद्धशाली रहल अछि। मैथिली में नाटकक जे परंपरा ओकर शुभारंभ 14वीं शताब्दी में भेल छल। ओना तो मैथिलीक प्राचीन नाटक बहुत कम मात्रा में प्रकाश में आयल, मुदा हस्तलिखित ग्रंथक रूप में ओ नाटक सब नेपाल आ मिथिलाक विभिन्न ग्रामांचल में एखनों सुरक्षित अछि। आरंभिक कालक नाटक सब पर संस्कृतक प्रभाव स्पष्ट रूपें देखना जाइत अछि, मुदा कालांतर में नाटक पर लोक नाटक जे प्रभाव ओ पड़ैत गेल। पहिने नाटक सब पौराणिकता ओ धार्मिकताक पृष्ठभूमि पर लिखल जाइत छल, जे समयक संग परिवर्तित होइत गेल। पौराणिक ओ धार्मिक पृष्ठभूमि पर 19वीं शताब्दीक अंत धरि नाटक सब लिखल जाइत रहल, मुदा 20वीं शताब्दीक प्रारंभ सँ नव शैलीक नाटक सब लिखल जाय लागल। पहिने कहलहुँ मैथिली में प्राचीन कालहिसँ नाटक लेखन होइत आबि रहल अछि। एहिठाम प्राचीन कालसँ हमर तात्पर्य अछि मैथिली साहित्यक प्राचीन काल, आ ओहिठाम सबसँ पहिने देखना जाइत छथि कवि शेखर ज्योतिश्वर ठाकुर। ज्योतिश्वर कृत धूर्त समागम सबसँ पहिने हमरा सबके उपलब्ध होइत अछि, जकरा विद्वान लोकनि प्रहसन मानलनि अछि, माने हास प्रधान रूपक। प्रहसन नाटके केर भेद मानल जाइत अछि। ओना प्रहसन ओ नाटक दुहु रूपक केर भेद होइत अछि। अपना सभक मैथिली साहित्यमे मध्यकालमे बड्ड बेसी नाटक सभक रचना भेल छल। साहित्यमे नाटक केर महत्व सर्वोपरि रहल अछि। ओना मैथिली नाटक प्राचीन ओ मध्यकालमे जे लिखल गेल होय, मुदा ई अपन सशक्त स्वरूपमे आधुनिके कालमे ठाढ़ भेल। बंधु लोकनि, जखन हम सब मैथिली नाटक केर गप कऽ रहल छी तऽ आउ ने मैथिलीक अनमोल धरोहरि महामहोपाध्याय परमेश्वर झा रचित दुर्गाचरित नाटक पर आधारित पोथी परिचय केर पूर्व प्रसारित अंक सुनैत छी। आलेख ओ वाचन छनि डॉक्टर अमलेन्दु शेखर पाठक केर।
1: पोथी परिचय। नमस्कार, पोथी परिचय श्रृंखला में आई दुर्गा चरित नाटक। साहित्य में नाट्य विधा केर विशिष्ट स्थान रहल अछि। नाटक केर परंपरा सेहो मैथिली में अति प्राचीन रहल अछि। साहित्य में एकर महत्व सर्वोपरि रहल अछि। तैं काव्य केर प्रसंग विमर्श करबा केर क्रम में एकरा सबसँ बेसी रमणीय मानल गेल। काव्येषु नाटकम रम्यम, नाटक के पंचम वेद केर संज्ञा धरि देल गेल। एहन महत्वपूर्ण विधा मैथिली साहित्य में अपन पूर्णतः मौलिक स्वरूप में आधुनिके काल में ठाढ़ भेटैत अछि। ई उपलब्ध तो होइत अछि आरंभिके कालखंड सँ, मुदा अपन सशक्त स्वरूप में आधुनिके काल में ठाढ़ भेल, जाहि में कविवर जीवन झाकर बाद अनेक साहित्य महारथी अपन महती योगदान देलनि। महामहोपाध्याय परमेश्वर झा एहि कोटि केर साहित्यकार थिकाह, जे प्रशस्त तो छथि अपन इतिहास विषयक पोथी मिथिला तत्व विमर्श लेल, अपन पांडित्य लेल, मुदा आन आन सर्जनात्मक साहित्य केर माध्यमे सेहो मैथिलीक विकास यात्राकेँ गति देबामे महामहो

उपाध्याय परमेश्वर झा के महत्वपूर्ण भूमिका रहलनि अछि। हिनकर एहि प्रयास के हिनक कृति दुर्गाचरित नाटक के रूप में देखल जा सकैत अछि। महामहोपाध्याय परमेश्वर झा रचित दुर्गाचरित नाटक मैथिली साहित्य के अनमोल रत्न थिक। ओना एहू में मैथिलीक अतिरिक्त संस्कृत ओ आन आन भाषा के प्रयोग भेल अछि, मुदा ठीक ई मैथिली के सुच्चा निधि। संवाद ओ नाट्य निर्देश में सर्वत्र मैथिली के प्रयोग देखबा में अबैत अछि। संस्कृतक प्रयोग श्लोकक रूप में, किछु गीतक रूप में, तो आन भाषा के किछु गीत सेहो समाविष्ट कयल गेल अछि। गंती के किछु आन भाषा के संवाद सेहो एहि में भेटत, मुदा से नाटक के सहज स्वाभाविक पात्रोचित भाषा के प्रयोगक दृष्टिकोण सँ उपयुक्त बुझना जाइत अछि। नाटक के कथावस्तु दुर्गा सप्तशती के भगवतीक चरित्र पर आधारित अछि। नाटक तीन अंक में विभक्त थिक। एकर आरंभ नांदी आ नाट्य प्रस्तावना सँ होइत अछि। सूत्रधार नटी ओ विदूषक के वार्तालाप में अनेक तथ्य सुस्पष्ट होइत जाइत अछि। सर्वप्रथम तँ एकर नामे के लऽ कऽ भ्रम के परिहार भ जाइत अछि। उल्लेखनीय अछि जे नाटक के मूल लक्ष्य महिखासुर संहारक कारणे एकरा महिखासुर वध नाटक के संज्ञा सेहो देल गेल, मुदा प्रस्तावने में एकर नाम दुर्गाचरित होयबाक तथ्य के सूत्रधार सुस्पष्ट कऽ दैत छथि। एहि प्रकारें एकर रचयिता तरौनी ग्रामवासी महामहोपाध्याय परमेश्वर झा थिकाह आ एकर मंचन महाराज रमेश्वर सिंह द्वारा आयोजित इंद्र पूजा के अवसर पर भ रहल अछि, ओहो पहिले पहिल भ रहल अछि सेहो स्पष्ट भ जाइत अछि। हाँ, ई स्पष्ट नहि होइत अछि जे इंद्र पूजा के अवसर पर एहि नाटक के पहिल पहिल प्रयोग भ रहल अछि अथवा नाटके पहिल बेर मंचित भ रहल अछि। नांदी आ प्रस्तावना के बाद मूल नाटक इंद्रक सभा सँ आरंभ होइत अछि। इंद्रक दरबार में आबि कऽ नारद हुनका सचेत कऽ जाइ छथि जे असुर सभ हुनक परम विरोधी छनि, तकरा सम्हारने रहथु आ धर्म नीति के उन्नति करैत रहथु जाहि सँ हुनकर कोनो पराभव नहि होइनि। एहिठाम प्रथम अंक विराम लैत अछि। दोसर अंक केर आरंभ महिखासुर केर दरबार सँ होइत अछि। एहि दरबार में सभटा अनीतिपूर्ण कार्य दृष्टिगोचर होइत अछि। वेश्या केर नृत्य गीत तो होइते अछि। महिखासुर अपन मंत्री चिक्षुर, चामर, उदग्र, महाहनु, असिलोमा, कराल, वाष्कल आ विडाल केर संग माछ मासु केर चखना लऽ कऽ मदिरा पान करैत अछि। महिखासुर केर दरबार में यक्षिणी केर पदार्पण सेहो होइत अछि, ओहो नाचगान करैत अछि। महिखासुर केर एहि बाणी सँ दुखी महिषी अर्थात महिखासुरक पत्नी आबि कऽ अपन दुख अपन वैमत्य चेटी केर माध्यमे प्रकट करैत छथि। हुनका दरबारक सभटा हाल विदूषक कहि आयल छनि जे दरबारक लीला देखि गेल अछि। महिखासुर अपन पत्नी के प्रबोधैत अछि। ताबत नारद पहुँच जाइ छथि आ महिखासुर के ई कहि कऽ इंद्रक विरुद्ध उकसबैत छथि जे महिखासुरक दरबार सँ बेसी सम्पन्नता इंद्रक ओहिठाम छनि आ महिखासुर स्वर्ग पर आक्रमण लेल सन्नद्ध भ जाइत अछि। ओ अपन सेनापति के इंद्र के सूचित कऽ आक्रमण करबा लेल आदेश दैत अछि। एकरा संग दोसर अंक समाप्त होइत अछि आ तेसर अंकक आरंभ इंद्र के महिखासुरक दूत द्वारा युद्धक सूचना सँ होइत अछि। एकर बाद युद्ध, युद्ध में देव सेना के पराजय, महिखासुरक इंद्रक आसन पर विराजमान होयब, पराजित देवगण के ब्रह्मा के संग लऽ कऽ
विष्णु आ महा

0: देव लग जाकऽ दुख प्रकट करब। एहिसँ शिव, विष्णु आ ब्रह्मा तथा आन आन देवगण केर कुपित होयब आ ओहि कोपसँ उत्पन्न तेजसँ दुर्गा केर प्राकट्य देवता लोकनि द्वारा हुनका अस्त्र शस्त्रसँ सुसज्जित करब, आभूषणसँ सज्जित करब, असुरगण केर सङ्ग दुर्गाक युद्ध। एहि युद्धमे चामर, उदग्र, कराल, उद्धत, वाष्कल, अंधक, उग्रास्थ, उग्रवीर्य, महाहनु, विडाल, दुर्घट आ दुर्मुख केर मारल जायब आ अंतमे महिखासुरक स्वयं सेहो युद्ध लेल उपस्थित होयब। महिखासुर रहि रहि कऽ रूप परिवर्तन करैत अछि, एकरा सभक मात्र सूचना देल गेल अछि। महिखासुरक वध मात्रकें नाट्याभिनय कर अंग बनायल गेल अछि। एकरा बाद देवगण भगवतीक स्तुति करै छथि आ हुनका सँ आशीर्वाद प्राप्त करै छथि, तकरा संग नाटक समाप्त होइत अछि। अंतिम अंककें सूचनात्मकता बना देब, कोनो नाट्य निर्देश नहि होयब नाटक केर कमजोर पक्ष थिक। तथापि एहि नाटकक महत्व न्यून नहि होइत अछि। आई सँ लगभग 110-112 वर्ष पूर्व एकर सर्जन होयबे एकरा महत्वपूर्ण बनबैत अछि। दोसर, मैथिली गद्यकें परिनिष्ठित परिमार्जित करबामे नाटक केर भूमिका तँ थिके ताहिसँ नठल नहि जा सकैत अछि। एहिमे प्रयुक्त गीतो सभ अत्यंत सरस ओ रोचक थिक। एकरा संगहि सम्पन्न होइत अछि साहित्य साधक श्रृंखला केर आजुक ई कड़ी।
1: एखन हमरा लोकनि सुनि रहल छलहुँ पोथी परिचय। बंधु लोकनि, अब हमरा लोकनि शब्द विमर्श दिस सेहो चलब, मुदा पहिने ई गीत।

एखन हमरा लोकनि सविता कुमारीक स्वरमे ई गीत सुनि रहल छलहुँ। एगोट कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना अछि। बंधु लोकनि, रक्तदान केर माध्यमसँ ने मात्र जरूरतमंद व्यक्ति सभक जीवन रक्षा कयल जा सकैत अछि, अपितु रक्तदाताके सेहो एहिसँ स्वास्थ्य सम्बन्धी बहुत रास लाभ होइत छनि। रक्तदान किया अछि महादान? जी हाँ बंधु लोकनि, इएह अछि आकाशवाणी दरभंगाक फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगीक अगिला अंकक विषय। विशेषज्ञ हेता डॉक्टर संजीव कुमार, रीजनल ब्लड बैंक DMCH दरभंगा केर इंचार्ज। प्रसारण केर क्रम में कार्यक्रम सँ जुड़बाक लेल हमर सभक फोन नंबर हैत 0627222481। मोबाइल नंबर अछि 9430029353। कृपया हेलो जिंदगी केर जे प्रसारण समय ओकरा मोन राखी। अगिला रवि दिन माने 14 जून 2026 दिन के 11 बजे। आ आब हमरा लोकनि चली शब्द विमर्श दिस। एकटा शब्द अछि निछट, माने नितान्त। नितान्त लेल हमरा लोकनि निछट शब्द के प्रयोग करै छी। आ निठाह, निठाह भेल ठोस, दृढ़। एकटा शब्द अछि निठुर, माने निष्ठुर, निर्दय वा क्रूर लेल हमरा लोकनि निठुर शब्द के प्रयोग करै छी। आ निठोह, निठोह भेल निराश, हताश, वंचित। एहि लेल निठोह शब्द के प्रयोग कयल जाइत अछि। तहिना एकटा शब्द अछि निस्तुकी, माने स्पष्ट, निश्चित। एहि लेल हमरा लोकनि निस्तुकी शब्द के प्रयोग करै छी। देखू ने, कार्यक्रमसँ विदा लेबाक बेर सेहो भऽ रहल अछि, तऽ विदा लेबासँ पहिने अपने लोकनिसँ आग्रह जे कार्यक्रम सिंगरहार अपने लोकनिकेँ केहन लगैत अछि, अपन जे प्रतिक्रिया, अपन जे सुझाव, ओ निश्चित रूपसँ हमरा सभ धरि पठबैत रही।

बंधु लोकनि, अपने लोकनिक जे सुझाव अबैत अछि ओ हमर सभक संबल बनैत रहल अछि। जँ पत्र द्वारा अपन प्रतिक्रिया आकि सुझाव पठबऽ चाहैत छी, एहि लेल हमर सभक पता अछि कार्यक्रम सिंहरहार द्वारा केन्द्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिनकोड अछि 8460004। आकाशवाणी दरभंगा @gmail.com पर सेहो अपने लोकनि ईमेल द्वारा अपन प्रतिक्रिया सुझाव पठा सकैत छी। तऽ आब चलबाक आज्ञा देल जाउ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे मैथिली में हमारा संबोधित कार्यक्रम सिंगरहार। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में NDA की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने NDA सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: NDA के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। NDA के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कूच चक्र से आजाद

0: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
1: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन, एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
0: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
5: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अप-

0: अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, आप थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं, आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
1: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी

0: शर्मा ने चीनी ताइपी की चियू पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला T20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled. Says Vikasit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail project. Also gives nod to infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles, nearly 13,000 crore rupees investment committed. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, development also takes place at a rapid pace. He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
2: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नियत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time.
2: 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल पुथल से भरे हुए थे। इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है। मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूँ, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूँ।
1: Mr. Modi said every citizen of the country is filled with the dream of a Vikasit Bharat, and this dream is no longer limited to any single individual, government or political party. He emphasized that the government's economic and structural reforms are a product of ideological conviction rather than political compulsion.
2: Aaj desh ka har nagrik

0: विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
1: Earlier, the National Democratic Alliance, NDA, today adopted a resolution lauding Prime Minister Narendra Modi on achieving the feat of becoming India's longest-serving elected Prime Minister. During the conclave of NDA at Bharat Mandapam in New Delhi, a special political resolution was moved praising Mr. Modi's leadership. The meeting was held to celebrate the NDA government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected PM of India. Moving the resolution, Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu said it is a historic tribute to India's longest-serving elected Prime Minister Narendra Modi.
2: It is a historic tribute to India's longest-serving continuously elected Prime Minister Sri Narendra Modi ji. The right leader at the right time at the right place, Narendra Modi ji as Prime Minister of this great nation. That is his strength. He is both our anchor and our innovator.

0: projects in Amravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यकीन दिलाया है कि 140 करोड़ भारतीयों की आरजुएं जरूर पूरी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि विकसित भारत हर एक शख्स का ख्वाब होना चाहिए। कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA ने भारत के सबसे तवील अरसे तक फराइज अंजाम देने वाले मुंतखबा वज़ीर-ए-आज़म बनने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सताइश की है। मरकजी काबीना ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले को मंजूरी दी है। काबीना ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को भी मंजूर किया है। हुकूमत ने टेक्सटाइल्स के लिए PLI स्कीम के तीसरे दौर के तहत 96 कंपनियों को मंजूरी दी है। इस दौरान तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का वादा किया गया। वजारत दिफा पैरिया के जहाजों की ऑपरेशनल सेफ्टी में इजाफे के लिए 20 एडवांस्ड जैमर्स खरीदेगी। और बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन में खवातीन के सिंगल्स में PV सिंधु और तन्वी शर्मा दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यकीन दिलाया कि मुल्क की 140 करोड़ शहरियों की उमंगों को यकीनन पूरा किया जाएगा और जोर देकर कहा कि कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA ने हमेशा मुल्क के एतमाद को मुस्तहकम किया है। जनाब मोदी आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में NDA कॉन्क्लेव से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क की आवाम ने कांग्रेस की एतमाद शिकनी के बाद NDA सरकार में अपना एतमाद जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि पहली बार मुल्क की आवाम ने देखा कि जब कोई सरकार सही इरादे से चलाई जाती है तो तरक्की भी तेज़ रफ्तार से होती है। उन्होंने कहा कि NDA सरकार के इन 12 वर्षों के दौरान 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गुर्बत से निकाला जाना इस बात का इजहार है कि NDA की पॉलिसियां दुरुस्त हैं और उनकी सिमत सही है।
2: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नीयत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के आवाम ने कौमी सतह पर सियासी इस्तेहकाम की अहमियत को समझ लिया है। उन्होंने कहा कि ये आवाम की पुख्तगी और शऊर का सबूत है कि उन्होंने मुझे इतने तवील अरसे तक अपनी खिदमत करने का मौका फराहम किया।
2: 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल पुथल से भरे हुए थे। इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है। मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूं, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं।
1: जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क का हर शहरी विकसित भारत का ख्वाब देख रहा है और ये ख्वाब अब किसी एक फर्द, हुकूमत या सियासी पार्टी तक महदूद नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हुकूमत की इक्तसादी और ढांचा जाती इस्लाहात नजरियाती यकीन का नतीजा है, न कि सियासी मजबूरी का।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण।
1: इससे पहले कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA ने आज एक करारदाद मंजूर की जिसमें सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमात अंजाम देने का रिकॉर्ड कायम करने पर वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ की गई। नई दिल्ली के भारत मंडपम में NDA कॉन्क्लेव के दौरान एक खसूसी सियासी करारदाद पेश की गई जिसमें जनाब मोदी की क्यादत को सराहा गया। ये मीटिंग NDA हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर मुसलसल खिदमात अंजाम देने का जश्न मनाने के लिए मुनक़िद हुई थी। करारदाद पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला N. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि भारत के सबसे तवील अरसे तक लगातार मुंतखब

0: प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर ज़बरदस्त तब्दीली रोनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन, नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी के खबरों का शोबा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम नौजवानों को बाख्तियार बनाने की गरज से हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन।
2: 12 वर्षों में हुकूमत ने मुल्क के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की है। भारत की अगले मरहले की असलाहत अब रिफॉर्म एक्सप्रेस में तब्दील हो गई है और नौजवानों की ताकत इसका मरकज है। भारत के नौजवान विकसित भारत की तामीर और तमाम शोबों में मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने में मरकजी हैसियत रखते हैं। 12 करोड़ से ज्यादा नए कारोबारी अफराद ने PM मुद्रा योजना कर्ज से फायदा उठाया है, जिससे नौजवानों के ख्वाबों को परवाज मिली है। हुकूमत नौजवानों को बाइख्तियार बना रही है ताकि रोजगार और खुद इन्हिसारी को आगे बढ़ाया जा सके और नौजवान रोजगार पैदा करने वाले बन सकें, न कि रोजगार हासिल करने वाले। छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक खातून कारोबारी ईशा पटेल ने घर पर खाना बनाने से लेकर एक कामयाब कैफे कारोबार कायम करने तक के अपने शानदार सफर की तफसील बताई।
1: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे PMEGP लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है, तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
2: 60 लाख से ज्यादा नौजवानों ने PM विकसित भारत रोजगार योजना से फायदा उठाया है। 1,60,00,000 से ज्यादा नौजवानों को PM कौशल विकास योजना के तहत तरबियत दी गई है। रोजगार मेलों के जरिए 12 लाख तकरुनामे तकसीम किए गए हैं। 2,20,000 स्टार्टअप्स कायम किए गए हैं, जिनसे रोजगार के 23 लाख मौके पैदा हुए हैं। PM सेतु स्कीम के तहत 1,000 IITs की जदीदकारी के लिए 60,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत की मदद से मुल्क के नौजवानों की ताकत भारत के लिए एक नई सुबह का आगाज कर रही है। अनुपम मिश्रा और सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
0: हुकूमत ने टेक्सटाइल्स के लिए पैदावार से मुंसलिक तरगीबाती स्कीम PLI के तीसरे दौर के तहत 22 नए दरख्वास्त गुजारों को मंजूरी दी है। टेक्सटाइल की वजारत ने बताया कि स्कीम के तीसरे दौर के तहत मजमूई तौर पर 96 कंपनियों को मुंतखब किया गया है, जिन्होंने 12,822 करोड़ रुपये से ज़्यादा की सरमायाकारी का वादा किया है और 58,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा टर्नओवर का अंदाज़ा है। मंजूरशुदा दरख्वास्त गुजार PLI स्कीम के अहम शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनमें मैनमेड फाइबर, MMF फैब्रिक्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स शामिल हैं, जो वैल्यू एडिड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के आलमी हब के तौर पर भारत को कलीदी मकाम दिलाने में मजबूत रोल अदा करेगा। हुकूमत ने इस साल 31 अगस्त या 20,000 करोड़ रुपये की गारंटियों के जारी होने तक माइक्रो फाइनेंस इदारों 2.0 के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम की मुद्दत में तौसी को मंजूरी दी है। वजारत खजाना ने बताया कि आज की तारीख तक इस स्कीम के तहत मजमूई तौर पर 770 करोड़ रुपये के कर्जेजात को मंजूरी दी गई है। वजारत दिफा ने आज भारतीय बहरिया के लिए कम अज़ कम 75% देसी कलपुर्जों वाले 20 ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम GNSS जैमर्स की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए हैं। नई दिल्ली में इस माहदे पर दस्तखत के दौरान दिफाई सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह मौजूद थे। इस निज़ाम की शमूलियत से कसीर खतरा जात वाले माहौल में भारतीय बहरिया के जहाज़ों की ऑपरेशनल सेफ्टी में इजाफा होगा। बैडमिंटन में PV सिंधु और तन्वी शर्मा आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट के खवातीन के सिंगल्स मुकाबले के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। ओलंपिक में 2 बार तमगा जीतने वाली सिंधु ने पेरू की खिलाड़ी को टूर्नामेंट के पहले राउंड में 21-13, 21-11 से हरा दिया। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु का मुकाबला हमवतन खिलाड़ी ईशा रानी बरुआ से होगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यकीन दिलाया है कि 140 करोड़ भारतीयों की आरजुएं जरूर पूरी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि विकसित भारत हर एक शख्स का ख्वाब होना चाहिए। कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA ने भारत के सबसे तवील अरसे तक फराइज अंजाम देने वाले मुंतखबा वज़ीर-ए-आज़म बनने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सताइश की है। मरकजी काबीना ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले को मंजूरी दी है। काबीना ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को भी मंजूर किया है। हुकूमत ने टेक्सटाइल्स के लिए PLI

स्कीम के तीसरे दौर के तहत 96 कंपनियों को मंजूरी दी है। इस दौरान तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का वादा किया गया। और बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन में खवातीन के सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल, प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और के जी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: सदियों पुराना इतिहास और उस इतिहास के पन्नों पर करवट लेता एक आधुनिक महाशक्ति का संकल्प। साल 2014 से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने देश को सिर्फ नीतियां नहीं दी बल्कि एक नया आत्मविश्वास दिया। आज का भारत थमने वाला भारत नहीं है। गांव से लेकर वैश्विक मंच तक, खेतों से लेकर अंतरिक्ष तक, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर नारी सशक्तिकरण तक, भारत ने बदलाव की एक ऐसी कहानी लिखी जिसे दुनिया ने भी गौर से देखा और महसूस किया। आज का भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है बल्कि तेजी से उभरती हुई एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, G20 की सफल अध्यक्षता, रक्षा उत्पादन में नई उपलब्धियां, ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णायक कदम, डिजिटल इंडिया की क्रांति, किसानों और गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजनाएं, इन सब ने एक नए भारत की तस्वीर गढ़ी है। ये है बदलता हुआ भारत, ये है निखरता हुआ भारत। साल 2014 से लेकर अब तक विकास के इस महायज्ञ में भारत ने हर क्षेत्र में जो लंबी छलांग लगाई है, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। और इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ दो बेहद प्रतिष्ठित और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और देश के जाने माने मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर के जी सुरेश। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: सबसे पहले शेखर जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। अगर चर्चा की शुरुआत हम विदेश नीति से करें, एक ऐसा विषय जहां भारत ने पिछले एक दशक में बहुत प्रगति की है, भारत की विदेश नीति में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला है पिछले एक दशकों में। आज का भारत संकट के समय मूक दर्शक नहीं रहता बल्कि यूक्रेन संकट से लेकर पश्चिम एशिया के तनाव तक अपना स्वतंत्र रुख रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की इस स्वतंत्र और मुखर विदेश नीति को कैसे देखते हैं?
3: बिल्कुल आनंद जी, ये पिछले 12 साल में भारत की जो लीडरशिप रही है, नेतृत्व कहा जाए, बड़े बड़े क्राइसिस में भारत की आवाज, भारत की अर्थशेप, भारत की कूटनीति, ये बहुत बदलाव आया है। वो रशिया यूक्रेन युद्ध हो या अभी जो चल रही है ईरान के युद्ध हो, जहां भारत की आवाज, भारत की कोशिश किसी तरह विश्व शांति लाने की बड़ी पैगाम लगी, इसीलिए हो रहा है कि आज की जो भारत है, ये भारत जो विश्व भर में एक प्रकार से देखा जाता है कि ये देश जो लोक कल्याण की बात करती है, केवल भारतीय लोगों की कल्याण नहीं है, विश्व कल्याण और विश्व शांति की हमेशा कोशिश रहती है। कई जगह पर हमने देखा है कि भारत की जो विचार, भारत की जो दृष्टिकोण, ये सारे वर्ल्ड के जितने लीडर्स हैं बहुत गंभीरता से सुनते हैं। वो आपके G7 के एक्सटेंडेड समिट हो, G23 की समिट हो, या जहां पे भी भारत UN जनरल असेंबली की प्रधानमंत्री की भाषण हो, या कोई बायलेटरल समिट हो जहां दोनों देशों के बीच में नेताओं की परस्पर जो बातचीत हो, हर जगह पर भारत की बात सुनने के लिए वर्ल्ड के जो प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट भारत आए, और हमारी प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाते हैं, और भारत की जो आर्थिक चेंज जो हो रहा है, एक प्रकार से सबके सामने एक एग्जाम्पल बन गया है। उदाहरण के लिए जिस तरह हमारी डिजिटल मिशन रहा है, डिजिटल पेमेंट की जो बात, ये G23 में सब नेताओं ने इसको एक मॉडल के रूप में देखा कि विश्व भर में कैसे गरीबों के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए कैसे हम इसको अपना सकते हैं। इस तरह कई चीजें जो है आप देख रहे हैं कि जहां पे स्ट्रेटेजिक विषय हो, जहां पे आपको लग रहा है कि भारत का भूमिका कि विश्व शांति के लिए, उसके लिए जो भूमिका कर सकते हैं, वो सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि पहले इस तरह की भारत की भूमिका नहीं रही हो, लेकिन आज जिस गंभीरता से

0: भारत की भूमिका ली जाती है, ये पहले कभी नहीं हुआ। उसका ज्यादा कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक और क्षेत्र पिछले अगर हम कहें कि 12 वर्षों में बहुत बदलाव के सफर पर आगे बढ़ा, वो है रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र में भारत कभी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में गिना जाता था, लेकिन आज हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, तेजस, ब्रह्मोस और INS विक्रांत जैसे गौरव हमारे पास हैं, और दुनिया के कई देशों में हम निर्यात भी कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के इस सफर को आप कितनी बड़ी रणनीतिक जीत मानते हैं?
2: मैं तो समझता हूं कि अगर इस 12 वर्षों का माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल को देखेंगे तो मैं इसमें 2-3 महत्वपूर्ण आयाम इसमें देखता हूं। जो एक आजादी, एक खुली छूट, या आप इसको कहें कि एक ऑटोनॉमी, स्वायत्तता जो हमारे सेनाओं को दी गई है कि वो विकट परिस्थितियों में उनका हाथ खोल दिए गए हैं, ये चाहे आपने गालवान में देखा हो या पाकिस्तान की तरफ जो सरहदें हैं वहां हमने देखी हो कि हमने हमारे फौजियों के जो हाथ बांध कर हमने उन सरहदों पर खड़ा किया था उनके हाथ खोल दिए हैं, उनको ये अधिकार दिया है कि वो बीफिटिंग मैनर में जो है वो जवाब दे सकते हैं दुश्मन को, उनको कहीं भी हर एक जगह अनुमति लेने के चक्कर में कई दिनों तक आप जो है लोग इंतजार में रहते हैं और तब जाके निर्णय लिया जाता था। आज उनको ये हमारे आत्मरक्षा में कदम उठाने का उनको स्वायत्तता दी गई है, पहली बात। दूसरा, पूरा स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो उसमें CDS जैसे इंस्टीट्यूशन, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है ताकि एक बेहतर समन्वय तीनों सेनाओं में, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, इन सब में जो है एक कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, इसके लिए जो है इंटीग्रेटेड जो कमांड की पूरी एक व्यवस्था की गई है, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से बहुत सारे हमने यहाँ, आपने भी उसका जिक्र किया कि विदेशों में आज कई देश, मैं भी अभी एक हाल ही में एक विदेशी मुल्क का देख रहा था कि वो किस तरीके से उनके परेड में आकाश के मिसाइल्स चल रहे हैं, पृथ्वी चल रहा है, पिनाका चल रहा है, जो पहले हम देखते थे कि हम जो बेचते थे वो सिर्फ एम्यूनिशन, गोलियां बेचते थे, और उसके जगह आज हम अपने एयरक्राफ्ट बेच रहे हैं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे हथियारों की डिमांड पूरे विश्व में बढ़ गई है, और यही नहीं, हमने महिलाओं को जो महत्व दिया है, उनके भागीदारी, बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों अफसर जो वायुसेना और थल सेना के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे पूरे विश्व के सामने, भारत का प्रवक्ता बनकर खड़े हुए थे, वो हमारे महिला सेना के अधिकारी थे। तो महिलाओं को जो महत्व दिया गया है, 26 जनवरी में तो हमने सिर्फ महिलाओं को ही जो है सारा कमांड का नेतृत्व प्रदान करते हुए देखा, ये बहुत जरूरी था। तो मैं समझता हूं कि आमूलचूल परिवर्तन। आप अंत में ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत डिफेंस के महत्वपूर्ण विषयों को पर्यावरण के नाम पर रोक दिया गया था सरहदों में, खासकर जो उत्तर पूर्व में चीन के साथ जो सरहद है, इन सब इलाकों में जो बहुत ही दूर दराज के क्षेत्र थे वहां हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने काफी कम कर दिया था कि पर्यावरण के दृष्टि से, पर्यावरण को बचाते हुए भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सरहद तक अपने सप्लाई लाइंस खुली रहे। अभी परसों ही हमने देखा कि जो जिला का जो आखिरी पॉइंट था उसको भी खोल दिया है, अब वो विश्व का सबसे बड़ा टनल होगा और निश्चित ही वो ऑल वेदर टनल होगा, चाहे कितनी भी सर्दी हो, बर्फबारी हो, आप देखेंगे कि उस टनल से हमारी फौज की सप्लाई बॉर्डर लाइन तक जाएगी। तो किसी भी तरीके से फौज के साथ, हमारे सेना के साथ, उनके जो हथियार है उसके साथ कहीं कोई समझौता नहीं किया गया है। बहुत जगह बहुत सारा अनुसंधान हो रहा है, शोध हो रहा है, नए नए हथियार डेवलप किए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया पर बहुत जोर दिया गया है, निजी क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ावा दिया गया है। तो मैं एक पूरे दृष्टिकोण में एक परिवर्तन पिछले 12 साल में मैं देखता हूं।
1: शेखर जी, अगर हम बात भारत के बदलाव की करें और बात हम नए भारत की करें तो इसमें सबसे अहम कड़ियों में से एक है अन्नदाता किसान। कृषि क्षेत्र में पारंपरिक तौर तरीकों को बदलकर, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करें, फसल बीमा योजना की बात करें, PM किसान सम्मान निधि की बात करें, या फिर जो ड्रोन तकनीक है, जो नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं हैं, उसे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली है, कितना बदलता हुआ किसान को आप देखते हैं पिछले 12 वर्षों में, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव को?
0: देखिए, जो केंद्र सरकार

0: सरकार की जो ये रवैया रही है किसान को लेकर, कि कैसे धीरे धीरे करके अपने किसान को कैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कोशिश है उसी का एक अच्छा कह सकते हैं कि इनिशिएटिव जो रहा है, यानी सरकार की जो पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी रही है, बीज से लेकर मार्केट तक जो शुरू होती है, सीड मार्केट से लेकर, मतलब कैसे बीज से लेकर तो उसके बाद किस तरह किसान को हाथ पकड़ के उनके पैर में खड़े होने के लिए जो कोशिश सरकार की तरफ से, जो हेल्प आपने किसान सम्मान निधि की बात की, किसान क्रेडिट कार्ड है, फिर दूसरी बात फर्टिलाइजर की जो आवश्यकता, और उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की भी बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात है मार्केट एक्सेस, यानी नेट के जरिए मार्केट एक्सेस करना। अब जो शुरू अभी जो आत्मनिर्भर भारत के जो बड़े कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज के एक नेटवर्क बन रही है, उसके साथ साथ आपकी ग्रीन ट्रेन बनी है, यानी उनकी पैदावार को सीधा मार्केट पहुंचाने के लिए, वो कर्नाटक से दिल्ली हो या नासिक से कर्नाटक हो, या उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, या पूर्व भारत से, या पूर्व उत्तर पूर्व भारत से मुंबई तक, इस तरह की जो नेटवर्क बनी है केवल फार्मर की जो पैदावार को ले जाने की। और सबसे बड़ी बात जो इस बार प्रधानमंत्री बहुत जोर दे रहे हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप, यानी जिसका मूल्य मार्केट में ज्यादा है, उसमें कई कई नए नए चीजों की बात हो रही है, साथ में दाल वगैरह का, यानी पल्सेस का प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाया जाए उसकी भी बड़ी कोशिश हो रही है, और एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार की हमेशा यही रहे कि जो कॉस्ट है उसे 150% ज्यादा उसको मिनिमम सपोर्ट देने की, यानी किसान को मार्केट दर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर ना मिले उनके लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म एमएसपी रही है। हर हम देख रहे हैं कि हर साल जैसे इनपुट की कॉस्ट बढ़ती जाती है, सरकार ने एमएसपी को हमेशा रिवाइज करके बदला है। इस तरह की आप देखेंगे कि सॉइल कार्ड जिसकी बात आपने की, उसके साथ साथ जो नई टेक्निक है, जिन्हें आपने ड्रोन की बात की, ये जो सरकार का एक कार्यक्रम रहा है महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन ऑपरेट करने की जो ट्रेनिंग देकर, ड्रोन दीदी जिस तरह की लाखों संख्या में आज ड्रोन दीदियां गांव में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड की स्प्रे करना हो या जितनी फसल हुई है उसकी एस्टिमेट करना हो, ये सारे में साइंस साथ में लेके चल रहा है, उसमें अप टू डेट वेदर इंफॉर्मेशन भी दिया जा रहा है, यानी जो सूचना जो किसान को मिलनी चाहिए कि बारिश की अवस्था क्या है, बारिश होगी कि नहीं होगी, सही समय पर पानी सिंचाई कैसे मिलेगी, मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां प्रधानमंत्री के डायरेक्शन के अनुसार सरकार पॉलिसी ऐसी ट्यून की गई है कि किसान की कहीं भी जो चुनौती आती है वो नेचुरल हो या मार्केट कारण हो उसको सुलझाने में सरकार लगी रही है। और आज हम देख सकते हैं कितने स्कीम्स जो आए हैं, जितने स्कीम्स है वो सारे स्कीम्स में यही कोशिश है कि जो हमारे किसान भाई जो पहले से अभी उनकी जो तकलीफें एक एक करके दूर करने के लिए बहुत कोशिश की गई है।
1: सुरेश जी, पिछले 12 वर्षों में एक और फॉर्मूला काफी जोर पकड़ता नजर आया, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र। प्रधानमंत्री अक्सर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक इस नीति ने देश के आम नागरिकों के जीवन और ईज ऑफ लिविंग को जिस तरीके से प्रभावित किया है, आपको लगता है वो एक नए भारत की नई कहानी की तरह है?
2: बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं भी। ये विदेश से एक राष्ट्राध्यक्ष आए थे और वो साधारण जो बाजार जिसको कहते हैं वहां उतरकर मुंबई में उन्होंने तस्वीरें खींची और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से कि कम आय वाले लोगों में भी छोटे से दुकान में भी, यानी कि रेड़ी पटरी जो लगी हुई थी उसमें भी यूपीआई पेमेंट हो रहा है। आज देश के गांव गांव तक यूपीआई पेमेंट पहुंच चुका है और आप देखेंगे कि आज विदेश में कई मुल्क आज इसमें इस विषय में रुचि ले रहे हैं कि वे अपने देश में इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। अन्य मुल्कों में पेमेंट ट्रांसफर का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है और भारत में यूपीआई और भीम ऐप वगैरह की अपेक्षा से आज अगर देखेंगे तो जीवन कितना सरल हो गया है। खुले पैसे के लिए, पेमेंट के लिए किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टअप्स को इतना महत्व दिया गया है जो आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जीवन इतना आसान, हम कभी हमारे यहाँ से भारतीय मूल के लोग विदेशों में जाके बसते थे तो एक कारण बताते थे कि भाई ईज ऑफ लिविंग है यहाँ। भारत में आज गांव गांव में वही स्थिति है। सब कुछ जो है ई गवर्नेंस को इतना प्रमोट किया गया है, हर राज्य में आज हर तरह के स्टार्टअप्स घर तक आज खाना से लेकर क्या नहीं पहुंचता है। आज डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे एक एक

0: ठीक है, और शायद विश्व का सबसे बड़ा 80 करोड़ के करीब लोगों को जो है आज हम सब्सिडाइज्ड राशन दे रहे हैं। आज जो है सोशल सिक्योरिटी नाम का चीज इस देश में कभी नहीं हुआ करती थी। आम व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया तो वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों के पर टोटली निर्भर होता था, न जहां उसे सहूलियत मिलती थी कुछ नहीं। आज आयुष्मान भारत जैसे योजनाएं पूरे देश में लगभग लागू हो गई है, बंगाल में कई वर्षों से नहीं था, अभी बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां भी लागू हो गई है, जिसके चलते हर व्यक्ति जो है आयुष्मान कार्ड जिसके भी पास है वो किसी भी निजी अस्पताल में जाके अपने कठिन से कठिन समस्याओं का निदान पा सकता है, और सीधे सरकार जो है उन अस्पतालों को जो है उसको पेमेंट करते हैं। इससे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और सबसे बड़ी बात, जो सड़कों का जाल इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैलाया गया उसके चलते आज दूर दराज के क्षेत्रों में कभी सोच नहीं सकते थे, मैं अभी होके आया हूँ, मैं देहरादून कभी 5-6 घंटे लगते थे और आज के तारीख में मैं मात्र 2.5 घंटे में देहरादून और 1.5 घंटे में हरिद्वार होके आया हूँ। आप जरा सोचिए कि ये क्या कभी संभव माना जा सकता था कि आज, लेकिन इतना बड़ा जाल गांव गांव में जो है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एक्सप्रेसवे, कि आज पूरा देश और इसका लाभ किसको मिल रहा है, आज निवेश जो है गांव गांव तक पहुंच रहा है, उद्योगपति जो है आज दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपने उद्योग लगा रहे हैं, किसान अपना जो सामग्री है उसको शहरों तक वो जल्दी से जल्दी पहुंचा सकता है, यातायात की सुविधाएं इतनी बेहतर हो गई है। आप देखेंगे कि रेलवे हो, वंदे भारत जैसे कई नए ट्रेन शुरू हुए हैं जिसके चलते बहुत सारे यातायात की सुविधाएं, प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का जो योजना बनाई, उड़ान स्कीम, छोटे छोटे शहरों को आज
1: जी
0: जोड़ दिया गया हवाई नेटवर्क के माध्यम से। तो मैं समझता हूं कि जीवन काफी सरल हो गया है 12 साल में।
1: जी कुछ और विषय शेखर जी हैं जिस पर हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे, और एक विषय जो है वैश्विक व्यापार और आर्थिक कूटनीति का है। भारत ने हाल के वर्षों में यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन के साथ जो है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है। पहले भारत को वैश्विक व्यापार समझौतों में थोड़ा झिझकने वाला देश माना जाता था। आर्थिक कूटनीति में आए इस आक्रामक और रणनीतिक बदलाव को आप नए भारत के नजरिए से कितना अहम मानते हैं?
2: प्रधानमंत्री जब उन्होंने एक आह्वान दिया कि वोकल फॉर ग्लोबल और पहले लोकल फॉर वोकल, यानी पहले लोकल जो हमारी जो एंटरप्रेन्योर्स की जो कोशिश है उसको पहले देश भर के जो मार्केट में पहुंचाना, उसके बाद विश्व भर जो मार्केट है उस पर पहुंचाना है। आपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात की, अब हर कंट्री के साथ जिस तरह बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई है, यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, इन सब से बात करके कि परस्पर कैसे, देखिए कोई भी ट्रेड अग्रीमेंट की जिक्र होती है तब आपकी ताकत पर होती है, आपके पास क्या है जो विश्व को दे सकते, जिस देश यहाँ सामान बेचना चाहता है उनमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, ऐसी क्या चीज है जो हमारे लिए जरूरत है जो यहाँ पर ना हो। तो ये इस हिसाब से आप देखेंगे जितनी ट्रेड अग्रीमेंट, कम से कम 20 से ज्यादा कंट्री से हमारी अग्रीमेंट हुई है और लगातार हमारी बातचीत जारी है अमेरिका के साथ भी। आपने देखा हुआ पिछले एक साल से जिस तरह भारत और अमेरिका बीच में जो बातचीत रही है, पर पहले टैरिफ को लेकर जो एक समस्या खड़ी हुई, उसके बाद लगातार बातचीत, और दूसरी बात ऊर्जा को लेकर भी, देखिए ऊर्जा भी बड़ी चीज है। आज भारत ऊर्जा जितनी इंपोर्ट भी करती है उतनी स्पेशलाइज प्रोडक्ट बाहर बेचती भी है, मतलब यानी कच्चा तेल भारत आता है और स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम के बनकर बाहर जा रहा है, क्योंकि हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है ये कैपेसिटी आज के तारीख में अमेरिका से भी ज्यादा है, इसलिए अब भारतीय कंपनी जाके अमेरिका में रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ये सारे चीजों देखने से जो ट्रेड की आपने बात किया, ये ट्रेड भारत की जो अंतर शक्ति जो है जिसको कहते हैं इनरेंट स्ट्रेंथ, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी बिजनेस की जो कैपेसिटी, ये सारे सबके लिए एक प्रकार से मौका आ रहा है, और इस मौके को आगे बढ़ाने के सरकार की जो कूटनीति रही है उसकी डिप्लोमेसी में आप देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रहा है कि किस तरह इकोनॉमिक कैसी हमारी बेनिफिट हो, देश को मिले, और हमारे जो जितने इंडस्ट्रीज है वो आपको कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर हैंडलूम तक, टेक्सटाइल से लेकर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, उसको कैसे आगे मार्केट पहुंचाने की काम सरकार लगातार करी आ रही है। उनके लिए कभी भी सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दे सकते में उसमें कोई सीमा ही नहीं है, आपको बैंक लोन हो, बैंक गारंटी हो, ये सारे चीजें देकर आज देखे यूनिकॉर्न की बात हो रही है, बड़े बड़े कंपनी स्टार्टअप बन रहे, ये सारे स्टार्टअप की तो मार्केट तो विश्व मार्केट है। तो इस तरह आप देखेंगे पिछले 12 साल में जो एक कॉन्फिडेंस आई है हमारे इंडस्ट्री में,

0: हमारे बिजनेस कम्युनिटी में कि हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और करेंगे भी, ये दोनों मंत्र को लेकर जो आगे चल रहे हमारी इंडस्ट्री, उसका कारण यही है कि आज की जो सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार, वो बिल्कुल वो जो नारा है मोदी है तो मुमकिन है, ये वाकई आप देखेंगे ये प्रैक्टिकल हो गया है। ये केवल एक स्लोगन नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये वाकई ये सरकार किस तरह कदम लेकर, किस तरह प्रोग्राम चला के हर भारतीय को एक स्कोप दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि जिसमें आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ो, सरकार आपके साथ है। मैं मानता हूं ये 12 साल का उपलब्धि वही है, भारत की इंडस्ट्री पीछे नहीं है, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग चलती रही है। इसलिए तो बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, केवल गरीब या मध्यम वर्ग या इनकी बात नहीं है, या किसान की बात नहीं है, हर वर्ग की बात है, हर शिक्षण की बात है, हर भारतीय नागरिक की बात है एक तरफ। दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण, यानी जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है, इसको देखकर तो बाकी देश भी देख रहे हैं। आज की तारीख में आप देखिए, कई भी बार बाहर होके आइए, आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, जब वापस आते हैं आपको लग रहा है, जैसे दिल्ली पहुंचेंगे एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तभी आपको लगता है कि जो पहले एक प्रकार से एक इंप्रेशन था, भाई बड़े बड़े देश है, इतने डेवलप्ड है, भारत को कब कब वहां पहुंचेंगे, ये वाले चीजें दूर होती जा रही है। आनंद जी, जब भी आप लगता है कि भाई हम कहीं पीछे नहीं है, अब आगे बढ़ रहे हैं। आज के तारीख में 20 से ज्यादा शहरों में हमारी मेट्रो ट्रेन चल रही है, उसकी टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, ये टेक्नोलॉजी जॉइंटली डेवलप्ड हुआ है और ये लेटेस्ट भी है। आज दिल्ली में अगर मेट्रो नेटवर्क इतना बड़ा है, जो मेट्रो डिब्बे जो चल रहे हैं उसमें अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज लंदन में अवेलेबल नहीं है, पेरिस में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, हमारी यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती है। और लगातार जो कोशिश है कि भाई हम जब राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, राष्ट्र स्वाभिमान की बात करेंगे, हम पूरे के पूरे कोशिश, पूरे के पूरे ताकत लगा के, एकजुट होके, सरकार और नागरिक और देश प्रथम, ये मन में रख के काम करने की जो एक माहौल बनी है, उसका कारण है ये 12 साल की प्रधानमंत्री की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक मीडिया और सांस्कृतिक विश्लेषक के तौर पर आपने देखा होगा कि पिछले दशक में भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का भरपूर इस्तेमाल किया है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, वैश्विक मंचों पर आयुर्वेद को बढ़ावा देना हो, या फिर ग्लोबल साउथ की आवाज बनना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी, इस नैरेटिव ने वैश्विक पटल पर भारतीयों की सांस्कृतिक पहचान को किस तरह पुनर्भाषित किया है?
2: देखिए, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब अपना कार्यकाल शुरू हुआ, ज्यादातर देशों में जब वो जाते थे तो वो भगवद गीता की कॉपी देते थे, कुछ भारतीय एक पहचान, भारतीय अस्मिता, भारत की छवि, ये आज इतना भारत सर्वप्रथम हो गया है, भारतीय सर्वप्रथम हो गए हैं। प्रधानमंत्री जिस भी देश में जाते हैं, जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनसे वो मिलते हैं, उनके उस देश में जो भूमिका है उसके बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर में भारतीयों को भी संगठित करके भारत के लिए वे क्या कर सकते हैं, इस दिशा में प्रयास किया है। भारत की संस्कृति को, भारत के संगीत को, भारत के सभ्यता को वैश्विक पटल पर किस तरीके से लाया जाए, आपने जिक्र किया। अभी अगले हफ्ते ही, जल्दी ही हमारे बीच में जून 21 आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और शायद ही विश्व में ऐसा कोई प्रस्ताव है जो सबसे ज्यादा राष्ट्र के लोगों ने एक साथ समर्थन किया और उसको जो है स्वीकार किया। आज पूरे विश्व में जो है योग दिवस मनाया जाता है। भारत जो है अपने पर्यटन के क्षेत्र में, अभी आप देखिए कि चीता जैसे जानवर जो दुर्लभ क्या हमारे देश से बिल्कुल गायब हो गए थे, जिनकी समाप्ति हो गई थी, उनको दोबारा कूनो मध्य प्रदेश में इसको हमने रीइंट्रोड्यूस किया। हमने देश के उस विरासत को, देश के ऐसे कई ग्रंथ, कई मूर्तियां जो पूरे विश्व के म्यूजियम्स में पड़े हुए थे, उनको वापिस ससम्मान, चाहे वो भगवान बुद्ध से संबंधित हो, चाहे देवी देवताओं से संबंधित हो, मंदिरों के, वो उन सब को लेकर आए। और क्या इससे बेहतर काम हो सकता है कि एक बहुत एक विषय जिसको लेकर पूरे समाज में एक तरह से एक कटुता थी, उस विषय को का एक समाधान कोर्ट के जरिए निकालकर उसका शीघ्राधिशीघ्र जो राम मंदिर का

0: अयोध्या में जो निर्माण हुआ वो इसी कार्यकाल में हुआ, जिससे एक बहुत बड़ा लंबित मामला जो समाज और राष्ट्र को और वैश्विक स्तर पर हमारा जो है एक विषय बन चुका था, उसका समाधान, स्थायी समाधान हमने देखा। तो ये मैं समझता हूं कि जिससे भारत की विरासत आज पूरे विश्व में जो है इसको मनाया जा रहा है, पूरे भारत का जो है हम लोग आज भारतीयता पर जो गर्व करते हैं, आज डी कॉलोनाइजेशन औपनिवेशिकतावाद से हटकर आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कॉलोनियल जो हमारे यहाँ, आप चाहे वो एक वॉर मेमोरियल क्यों ना हो, इंडिया गेट हम सब उसको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें विश्व युद्ध के सेनानियों का नाम लगे हुए थे, लेकिन भारत के वो सेनानी जिन्होंने 1947 से लेकर और सब युद्धों में जिन्होंने अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके लिए एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक वो हमने बनाया। इसी प्रकार हमने जो पुराने कॉलोनियल इस शहर को जो कि भी पहचान थी वो ज्यादातर आक्रांताओं द्वारा जो दी गई जो भवन थे या बिल्डिंग थे, उन्हीं पर हम लोग जो है हमारे दिल्ली में हमारी अपनी विरासत क्या थी। तो इसलिए सेंट्रल विस्टा जैसे जहां नया संसद भवन बना, जहां नया सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री का ये बना, और कितने सड़कों का जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे उनका नाम बदलकर जो है हमको जो है हमने देखा कि राजपथ को जो है हमने उसको, चाहे वो प्रधानमंत्री का लोक कल्याण मार्ग हो या हमने जो है सेवा तीर्थ की स्थापना किया हो, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत के अपने पहचान, अपना जो विरासत है
1: जी
0: उसको जो है पुनः स्थापित करने का एक प्रयास किया गया। तो मैं समझता हूं कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी, क्योंकि मैं एक शिक्षाविद भी हूं और शिक्षा से जुड़ा रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसके तहत भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से हम सबको अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को गर्व रहे कि हर विषय को लेकर उसमें भारत का क्या योगदान रहा, जिसको भूला जा चुका था, जिसको ये बताया जा रहा था
1: जी
0: कि
1: सर,
0: सारा ज्ञान पश्चिम से आया है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
1: आखिर में एक बहुत छोटा सवाल शेखर जी आपसे समझना चाहेंगे। जब भी हम स्वर्णिम अतीत की बात करते हैं तो वो मजबूत वर्तमान की तरफ आगे बढ़ता है। जब वर्तमान मजबूत होता है तो हम एक सुनहरे भविष्य की परिकल्पना करते हैं, और यहां परिकल्पना 2047 के विकसित भारत की है। इस नए भारत की मजबूत नींव पर, विकसित भारत की बुलंद इमारत को आप किस तरह देखते हैं? कार्यक्रम में समय कम है, बहुत संक्षेप में।
2: बिल्कुल विकसित भाव, आपने सही कहा कि जो भी फैसले आज लिए जा रहे हैं, जो भी कार्यक्रम आज लागू किया जा रहा है, जो भी नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, वो केवल यही दृष्टि से कि आज की कदम कल की जो दिशा है, जहां मंजिल है वहां पहुंचने की बात है। और सारी चीजें जो बड़ी बात है वो आनंद जी मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री की कोशिश हर पहलू पे एक ईमानदारी से जुड़ा हुआ है, एक सिंसियर एफर्ट है कि भारत कैसे आगे बढ़े, भारतीयों की जीवन कैसे और सरल हो जाए, और भारतीय भविष्य, हर नागरिक का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसकी कोशिश पर सरकार लगा हुआ है बिना एक दिन छुट्टी के।
1: जी, हर युग की अपनी एक पहचान होती है। कुछ युग परिवर्तन के साक्षी बनते हैं और कुछ परिवर्तन के निर्माता। पिछले एक दशक में भारत ने अनेक क्षेत्रों में नई उपलब्धियों के आयाम स्थापित किए हैं। वैश्विक कूटनीति से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक, डिजिटल क्रांति से लेकर बुनियादी ढांचे के विस्तार तक, आत्मनिर्भरता से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक, देश ने एक नई ऊर्जा और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए केजी सुरेश जी आपका और शेखर अय्यर आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल। प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा, इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। लीजिए सुनते हैं लोक गीतों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम लोक माधुरी।

नमस्कार, लोक माधुरी के साथ मैं गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव आप सभी का लोक गीतों के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। विभिन्न गीत संगीत की दुनिया में लोक गीतों का एक अलग स्थान है, एक अलग पहचान है, एक अलग महत्व है। लोक गीत लोक जीवन का एक बड़ा धरोहर है। ये लोक जीवन की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। ये समय और अवसर के अनुसार गूंजते हुए इस जीवन की विभिन्न भावनाओं को व्यक्त करता है। बात हम मिथिला की लोक गीतों की करें तो यहाँ लोक जीवन के हर पर्व त्योहार में, उत्सव उमंग में, विभिन्न मौसम में लोक गीत गूंजता रहा है। मिथिला में हर तरह के लोक गीत भरे पड़े हैं। जन्म से लेकर अंतिम विदाई तक के विभिन्न संस्कार गीत, लोक पर्व त्योहारों से लेकर विभिन्न मौसम में उमड़ने वाली भावनाओं के गीत, ऐसे कई गीत हैं जिसका यहाँ भंडार है, जो समय और अवसर के अनुसार इस क्षेत्र में गूंजता रहा है। यहाँ जन्म के अवसर पर यानी छठी उत्सव पर सोहर बधैया गीतों से घर आंगन गूंजते रहे हैं। मुंडन के अवसर पर मुंडन गीत तो विवाह के अवसर पर विवाह के विभिन्न रस्मों के गीत, विदाई पर विदाई गीत यानी समदौन गीत तो अंतिम विदाई पर निर्गुण गीत गाए जाते रहे हैं। इसी तरह यहाँ के विभिन्न लोक पर्व त्योहारों और विभिन्न मौसम के गीत अपने अवसर के अनुसार गूंजते रहे हैं। जैसे नवविवाहितों के सुहाग का पर्व मधुश्रावणी के अवसर पर बटगवनी गीत, सुहाग के लिए किए जाने वाला पर्व तीज में विशेष रूप से गाए जाने वाले महेशवाणी और नचारे गीत, भाई बहन के प्रेम का पर्व सामा चकवा के अवसर पर गाए जाने वाला सामा चकवा गीत आदि। इसी तरह से फागुन के महीने में फगुआ गीत, चैत के महीने में चैते गीत, सावन भादो के महीने में कजरी गीत तो बारहों महीने के मौसम के अनुसार उमड़ने वाली भावनाओं को व्यक्त करने वाला बारह मासा गीत यहाँ खूब गूंजते रहे हैं। इस तरह मिथिला के क्षेत्र में लोक गीत गूंजने के लिए न गीत की कमी है न अवसर की। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं गीतों की ओर और शुरुआत करते हैं बारह मासा गीत से। बारह मासा मिथिला क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक गीत है। इस गीत के माध्यम से बारहों महीने की विभिन्न मौसम में मौसम के अनुसार उमड़ने वाली इच्छाएं भावनाएं व्यक्त की जाती है। जैसे चैत वैशाख के महीने में आम के टिकुले की चटनी का आनंद लेने की इच्छा, सावन भादो जैसे बारिश के मौसम में झूला झूलने की इच्छा, आसिन कार्तिक के त्योहार भरे महीने में सज धज कर मेला घूमने की इच्छा आदि। ऐसे हर महीने के हर मौसम के अनुसार जो इच्छा मन में जागती है उसे व्यक्त करने का बारह मासा गीत

झूमर गीत यहाँ के प्रसिद्ध लोक गीतों में से एक है। इस गीत के माध्यम से मन की उमंगे, मन में उमड़ने वाली विभिन्न भावनाएं व्यक्त की जाती है। जैसे जब किसी के पिया परदेश बसते हैं और परदेश से वे अचानक अपने घर आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी प्रियसी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, उनका मन मयूर हो नाच उठता है। बहुत दिनों से अपने पिया के दर्शन की प्यासी नैना उन्हें देखकर तृप्त हो जाती हैं। अचानक पिया के घर आने से खुशी इतनी कि उन्हें ये समझ में नहीं आती कि क्या करें, कहाँ बैठाएं, कैसे उनका स्वागत करें। पिया के आने की खुशी की ये बातें, उनके प्रति मन में उमड़ती अनेक भावनाएं किसी से कैसे कहा जा सकता है। पर बिना किसी को कहे रहा भी तो नहीं जाता। सुनिए एक प्रियसी की भावना इस झूमर गीत के माध्यम से।

मिथिला में बच्चों के जन्म उत्सव पर यानी छठी उत्सव पर सोहर बधैया गीत गाने की परंपरा रही है। इस उत्सव के अवसर पर घर एवं आसपास की उपस्थित महिलाएं सोहर बधैया गीत के माध्यम से नवजात को लंबी उम्र के साथ साथ स्वस्थ एवं सफल जीवन का आशीर्वाद देती हैं। नवजात की फुआ और पमरिये ऐसे शुभ अवसर पर बधैया स्वरूप विभिन्न उपहारों की मांग करते हैं। फुआ जहां अपनी भैया भाभी से बधैया की मांग करती हैं, वहीं

पमरिये नवजात को गोद में लेकर नाचते सोहर बधैया गीत गाते घर परिवार के सभी बड़ों से बधैया की मांग करते हैं। चाहे नवजात की फुआ हो या पमरिये, ऐसे शुभ अवसर पर बधैया की मांग करना उनका अधिकार होता है जिसे वे चूकते नहीं।

शिव तीनों लोकों के स्वामी हैं। शिव की महिमा अपरंपार है। अनेक नामों से पुकारे जाने वाले शिव का एक नाम भोला है। वे अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होकर उनकी सभी कामनाओं को पूरा कर देते हैं। मनुष्य जब अपने भौतिकवादी जीवन को जीते हुए अपने सत्य कर्मों को भूल जाते हैं, अपने धर्म से मुख मोड़कर पाप कर्मों को अपनाने लगते हैं, तो उनकी जीवन की नैया अंधकार रूपी भवसागर में डगमगाने लगती है। ऐसी स्थिति में जब अपने किए हुए कर्मों की ओर मनुष्य देखते हैं, तो उन्हें अपनी भूल समझ में आती है और इस भवसागर से अपनी जीवन की नैया को पार लगाने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। इस नैया के पार लगने का जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तब एक ही रास्ता बचता है, वो है शिव की शरण में जाने का रास्ता। जिनकी कृपा से जीवन की नैया को किनारा मिल जाता है।

इसके साथ ही लोक गीतों का विशेष कार्यक्रम लोक माधुरी अब संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में आपने जिन कलाकारों के गीतों को सुना उनके नाम हैं विभा सिन्हा, वीरेंद्र कुमार मिश्र, श्यामा कुमारी और विदुषी शारदा सिन्हा। आलेख और वाचन गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव का था, प्रस्तुतकर्ता थे अमरनाथ प्रसाद। तो अब कार्यक्रम से मुझे यानी गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव को दे अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम लोक माधुरी। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।
1: घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आब रहल छी। एक कई क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर। साथ ही आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। श्रोताओं, लीजिए सुनते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतों के रंग। इसके अंतर्गत हमने सबसे पहला गीत लिया है फिल्म वजह तुम हो से। गायक कलाकार हैं नेहा कक्कड़।

0: अगला गीत हमने लिया है फिल्म सिंदूर से, किशोर कुमार और हरिहरन की आवाज में।
1: ए, बोल, ए, कचुंबर।
2: अरे बोल पाखंडी,
1: तू शुरू करता है क्या?
2: अरे तू ही शुरू कर।
1: अच्छा ठीक है, सुन ले।
2: सुना
1: सरे गा रे गा रे गा पा गा पा गा पा दा पा दा पा दा पा दा सा सा दा पा दा पा गा पा गा रे गा रे सा सा दा सा पा दा गा पा गा रे गा सा

0: भी ना
1: लेट गया। अरे सो गया, एक कुंभकर्ण की औलाद सो गया। तू हार गया, मैं जीत गया। 1 2 3 4
2: कार्यक्रम गीतों के रंग के अंतर्गत अभी हम कुछ फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं। अगला गीत हमने लिया है फिल्म उमराव जान से। गायक कलाकार हैं आशा भोसले।

अभी आप सुन रहे थे जुर्माना फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में। कार्यक्रम के अंत में अब हम सुनते हैं अनुपमा फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: फिल्म अनुपमा के गाए लता मंगेशकर की आवाज़ में इस गीत के साथ ही फिल्म संगीतों पर आधारित कार्यक्रम गीतों के रंग अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आप अपने रेडियो सेट के अलावे हमें न्यूज़ ऑन AIR ऐप के भी माध्यम से सुन सकते हैं। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक

0: गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित तो प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेल लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिनचियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized